मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, सक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 6 जून सन 2026 प्रातः के 5:58 और 38 सेकंड हो रहे हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों बाद आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी, सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमेरिका से 3,567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगहारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। श्रोताओ, कार्यक्रम वंदना में आप सभी का स्वागत है। आज इस प्यारी सुबह में हम सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार करते हैं। श्रोताओ, आज शनिवार है और शनिवार प्रिय होता है श्री शनिदेव को। शनिदेव जो न्याय के देवता है, वे किसी के साथ ना तो अन्याय करते हैं और ना ही अन्याय होने देते हैं। उनकी दया जिस पर हो जाती है उसका जीवन सफल हो जाता है।

हरिहरन और अनुराधा पोडवाल के स्वर में अभी आप ये शनि भजन सुन रहे थे। श्रोताओं, ये जो जन्म मिला है, मानव जन्म, ये सबसे अमूल्य है। इस संसार में हमने जन्म लिया है अच्छे कर्म करने के लिए, एक दूसरे का सहारा बनने के लिए। तो श्रोताओं, हमें चाहिए कि हम उस ईश्वर का भजन करते रहें और एक दूसरे को सहारा लगाते रहें, क्योंकि सुख दुख तो आनी जानी चीज है, हर समय टल जाता है। और उस प्रभु से विनती करनी चाहिए कि हे ईश्वर, हमें यदि जन्म दिया है तो हमें अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करते रहना।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना, और अभी आप सुन रहे थे हरिओम शरण की आवाज में ये भजन। और आइए अब आपको सुनवाते हैं भाई गोपाल सिंह रागी की आवाज में ये शब्द। श्रोताओं, इस संसार में ईश्वर नाम ही ऐसा माध्यम है जिससे हम इस भवसागर रूपी संसार के उस पार जा सकते हैं। तो आइए, ईश्वर के हर रूप को हम नमन करते हैं और उसका नाम जपते हैं।

भाई गोपाल सिंह रागी की आवाज में अभी आप ये शब्द सुन रहे थे। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आगे चलते हैं और सुनवाते हैं आपको इफ्तिकार अहमद और साथियों के स्वर में ये नात।

इफ्तिखार अहमद और साथियों के स्वर में अभी आप ये नात सुन रहे थे। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब अंत में आपको सुनवाते हैं मन्ना डे के स्वर में ये प्यारा सा शनि भजन।

मन्ना डे के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये भजन। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन और सुरेश वाडेकर के स्वर में श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग।

राम लक्ष्मण को छोड़ जब सीता को भी किसी भांति गंगा तट से लौटा लाने की मंत्री सुमंत्र की सभी युक्तियां निष्फल रहीं, तो उन्होंने रथ को अयोध्या की ओर हांका। राम से बिछुड़ते हुए रथ में जुटे अश्वों की हिनहिनाहट रूपी विकलता देख पास खड़ा निषाद समूह सिर धुन-धुन कर पछताने लगा। गंगा पार करने के लिए नाव की आवश्यकता थी। राम ने नाव मांगी, किंतु केवट नाव नहीं लाता। कहता है, मैंने तुम्हारा भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के बारे में सभी कहते हैं कि वो मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। यदि उसकी नाव भी मुनि पत्नी की भांति उड़ गई तो उसके परिवार की तो रोजी मारी जाएगी। लक्ष्मण यदि उसे तीर भी मार दें तो भी वो बिना राम के चरण पखारे उन्हें नाव पर नहीं चढ़ाएगा। कैसा विलक्षण दृश्य है! एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं। जिन्होंने वामनावतार लेकर जगत को तीन पग से भी छोटा कर दिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र गंगा पार कराने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं, और फिर गंगा पार ले जाकर वही केवट उतराई नहीं लेता। कहता है, नाथ आज मैं कहा न पावा।

0: सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन और सुरेश वाडेकर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 6:40 हो रहे हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: मैंने जीवन से प्यार किया है और यद्यपि कई अदृश्य बाधाएं मेरे चारों ओर खड़ी रहीं, फिर भी जीने की अभिलाषा मुझे बाध्य करती रही कि मैं जीवन से खेलूं, उसको किनारे से झांक कर देखूं और कभी उसका दास बनकर न रहूं। मनुष्य को अपनी जीवन यात्रा एकाकी करनी होती है, इसीलिए किसी भी महत्वपूर्ण विषय में किसी दूसरे पर निर्भर रहना संभव नहीं है। दूसरों पर निर्भर रहना निराशा को आमंत्रित करना होता है। लोग प्राय कर्म से बचते हैं क्योंकि उन्हें परिणामों का भय होता है। कर्म का अर्थ है जोखिम और खतरा। विपत्ति दूर से भयंकर लगती है, लेकिन यदि आप विपत्ति को निकट से देखें तो वो इतनी अप्रिय नहीं रहती। अक्सर वो एक आनंद वर्धक सहचरी सिद्ध होती है, जीवन के उत्साह और उल्लास को बढ़ाने वाली हुआ करती है। संभवतः ये कर्म और कर्म का विचार है जिससे मैं परिव्याप्त रहता हूं, और जब कर्म के अवसर से वंचित होता हूं तब मैं ये कल्पना करता हूं कि मैं कर्म के लिए उद्दत हो रहा हूं। जब किसी पिछले क्षण में विचार और कर्म के बीच पूर्ण सामंजस्य रहा तब विचार कर्म में परिणित होकर अपनी पूर्णता को प्राप्त हुआ है। कर्म फिर विचार को उद्दीप्त करके अधिक सम्यक बोध का कारण बना है। तब अस्तित्व के उस क्षण में मैंने जीवन में एक विशेष परिपूर्णता और गहन संप्राणता का अनुभव किया है। सुख जिस अनुभूति का नाम है वो बाहरी मौसम पर बहुत कम निर्भर करता है। मुख्य रूप से यह एक आंतरिक स्थिति है और इसकी उत्पत्ति इस बात से होती है, व्यक्ति के विचार और कर्म में जितना अधिक परस्पर संबंध और समन्वय होगा उतना ही अधिक प्रभावकारी होगा और उतना ही अधिक वो व्यक्ति सुखी होगा। तब कोई आंतरिक विरोध या द्वंद नहीं रहेगा। जीवन बहुत समृद्ध और विविधता पूर्ण है, यद्यपि उसमें बहुत सी दलदल और कीचड़ भरे स्थान हैं, तदापि उसमें विस्तृत समुद्र भी है, पर्वतमालाएं हैं, हिमप्रपात हैं, समुद्र हैं, तारों भरी रातें हैं, घरवालों और मित्रों का प्रेम है, किसी सामान्य उद्देश्य में सहकर्मियों का साथ है, संगीत है, पुस्तकें हैं और विचारों का साम्राज्य है। मैंने जीवन को जितना ही अधिक देखा है उसे साहसपूर्ण कार्य और अत्यधिक दिलचस्पी से भरा पाया है, जिसमें सीखने और करने के लिए बहुत कुछ है। संभवतः संघर्ष ही जीवन को अधिक महत्व प्रदान करता है। अंतिम परिणाम इतना नहीं, नई नई चीजें पैदा करना ही जिंदगी का प्रमाण है। किसी चीज को दोहराना या नकल करना नहीं है। जिंदगी खुद एक अजीब मेल है, जिस रूप में है उसी रूप में हमें उसे लेना चाहिए और तब इसे समझना होता है और सुधारना होता है।
0: जीवन से प्यार, अभी आप ये चिंतन सुन रहे थे। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 6:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्यधारा, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं रामेश्वर प्रसाद सारस्वत का ये काव्य पाठ।
2: प्रस्तुत है एक गजल

0: काव्यधारा कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रामेश्वर प्रसाद सारस्वत का ये काव्य पाठ। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों बाद आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, पहले संस्कृत में, उसके बाद हिंदी में।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा।

0: मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की दर से बढ़ी है। दमण में कल 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर आगे बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 50 गीगावाट अकेले गुजरात की है। वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना का कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग है। इंडोनेशिया की विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगाहारा में कल सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत की अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आज हमारी जानकारी का विषय रहेगा स्वास्थ्य वर्धक फल अनन्नास।
3: प्रकृति कितनी उदार है इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। प्रकृति ने हमें बहुत सारे उपहार दिए हैं। प्रकृति ही हमें भोजन और वस्त्र देती है। विभिन्न प्रकार की उपयोगी और मूल्यवान वस्तुएं हमें प्रकृति ने ही तो प्रदान की हैं। गेहूं, चावल, जौ जैसे अन्न तथा अनेक फल प्रकृति ही तो प्रदान करती है। आज की स्वास्थ्य चर्चा में हम चर्चा करेंगे स्वास्थ्य के लिए उत्तम फल अनानास की। रसीले फलों में अनानास श्रेष्ठ माना गया है। खट्टा, मीठा, सोंधा और तीखे स्वाद वाला ये फल अपनी तासीर और फायदों के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रायः गर्मी और वर्षा के बीच बड़ी तादाद में उपलब्ध रहता है। कहते हैं जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका की अपनी द्वितीय समुद्री यात्रा पर निकला तो मार्ग में वेस्ट इंडीज के गवाडलप द्वीप के लोगों को उसने ये फल खाते देखा। देवदारू वृक्ष के शंकु फलों की तरह दिखाई देने के कारण उसने इस फल को इंडीज के देवदारू कहा और इस तरह पहली बार शेष दुनिया को इस फल के बारे में जानकारी मिली। सुंदर दिखने वाला ये रसीला फल वास्तव में 100 से 200 तक की संख्या में परस्पर जुड़े लघु फलों के संयोग से बना होता है। कहते हैं कि अनानास के जितने उपयोग होते हैं उतनी ही इसकी आंखें भी होती हैं। स्वादिष्ट होने के साथ साथ ये विटामिन ए और सी तथा कुछ हद तक विटामिन बी का भी उत्तम स्रोत है। इसका रस पाचन शक्ति में सहायक होता है तथा अम्लजनित बदहजमी में राहत पहुंचाता है। अनानास के रस में स्थित क्लोरीन शरीर के भीतरी विषों को बाहर निकाल देता है। पका हुआ अनानास मूत्रल, कृमिघ्न एवं पित्तनाशक होता है। ये रुचिकर, पाचक, हृदय के लिए हितकर तथा पेट की तकलीफों जैसे पीलिया एवं पांडु रोग में गुणकारी है। अनानास का सेवन खाली पेट ना करें। अनानास कृमिनाशक है। अनानास के रस में प्रोटीन युक्त पदार्थों को पचाने की क्षमता होती है। अनानास का स्वादिष्ट पेय बनाने हेतु आप अनानास तथा सेब का मिश्रित रस बना लें। अब उस रस में 1 चम्मच शहद, 1/4 चम्मच अदरक का रस मिलाकर पिएं। इस रस के सेवन से आंतों में से म्यूकस यानी कि अम्लता बाहर आ जाती है तथा उच्च रक्तचाप, दमा, खांसी, अजीर्ण, मासिक धर्म की अनियमितता दूर हो जाती है। टॉन्सिल तथा गले में सूजन होने पर अनानास का सेवन लाभप्रद है। रोहिणी यानी कि डिप्थीरिया में इसका सेवन एक प्रमुख औषधि के रूप में कार्य करता है। ताजे अनानास में पेप्सिन होता है, इससे गले की खराश में लाभ होता है तथा रस पीने से शरीर के अस्वस्थ तंतु ठीक हो जाते हैं। अनानास की फाक पर नमक और काली मिर्च डालकर खाने से अजीर्ण दूर हो जाता है। परंपरागत घरेलू दवा के तौर पर बच्चों के पेट में उत्पन्न होने वाले कृमियों को नष्ट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अनानास का मुरब्बा भी बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। अनानास एक शक्तिदायक फल है। इसके सेवन से शरीर पुष्ट होता है तथा दिल और दिमाग को ताकत मिलती है। यदि शरीर की सूजन के साथ पेशाब कम आता हो, एल्ब्यूमिन मूत्र में जाता हो, यकृत बढ़ जाता हो, मंदाग्नि हो, नेत्रों के आसपास तथा चेहरे पर सूजन हो तो नित्य पके हुए अनानास का सेवन करें। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रकृति ने हमें अनेक ऐसे फल और शाक प्रदान किए हैं जो हमें मौसमी बीमारियों से निजात दिलाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम इसके महत्व को समझें और मौसम में उपलब्ध होने वाले प्रत्येक फल और शाक का सेवन करें और रोगों से मुक्त रहें।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:10 हो रहे हैं। अब हमारे किसान भाई सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें।
4: किसान भाइयों राम राम। खेती की बातें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, खेती की बातें कार्यक्रम में आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं धान की नर्सरी की देखभाल के बारे में। किसान भाइयों, खरीफ का मौसम शुरू हो चुका है और हमें बरसात लगते ही यानी कि जुलाई का महीना आते ही धान की रोपाई शुरू करनी है और धान की रोपाई करने से पहले किसान भाइयों हमें धान की नर्सरी तैयार करनी पड़ती है, और हमारे किसान भाइयों ने धान की नर्सरी की बुआई कर दी है, धान की नर्सरी लगा दी है और अच्छी पौध हम तैयार कर सकें, इसके लिए किसान भाइयों हमें अच्छे तरीके से नर्सरी की देखभाल करनी है जिससे कि हमें धान की नर्सरी अच्छी मिल सके और हम समय से धान की रोपाई कर सकें। तो किसान भाइयों आइए बात करते हैं कि हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है और किस तरीके से हमें धान की नर्सरी की देखभाल करनी है। तो किसान भाइयों इस समय हम धान की नर्सरी को तैयार कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें अच्छे तरीके से खेत को तैयार करना है और जहां हम नर्सरी लगा रहे हैं तो उसमें गोबर की कंपोस्ट खाद डालनी है और पाटा लगाने के बाद खेत को समतल करने के बाद हमें खेत में पानी भरना है और पाटा लगाने के बाद जब पानी हमारा शांत हो जाए तो फिर हमें बीज की बुआई करनी है, बीज को हमें बिखेरना है, बुरकाव करना है। किसान भाइयों बीज बुआई से पहले बीज का उपचार करना बहुत ही आवश्यक है और हमें ये देखना है कि हमारा जो बीज है वो प्रमाणित बीज होना चाहिए और जिस प्रजाति को हम लगा रहे हैं, जिस किस्म को हम लगा रहे हैं, ये हमें देखना है कि ये हमारा बीज उसी प्रजाति का है, इसमें किसी तरह की मिलावट तो नहीं है। किसान भाइयों बीज उपचार, क्यारियों में सही नमी, उचित तापमान और समय पर खाद का प्रबंधन बहुत ही बेहद जरूरी है जिससे कि हम धान की अच्छी नर्सरी तैयार कर सकें। बुआई के 20 से 25 दिन बाद हमारे पौधे रोपाई के योग्य हो जाते हैं। अच्छी नर्सरी हम तैयार कर सकें इसके लिए सिंचाई और जल प्रबंधन करना बहुत ही आवश्यक है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा शाम के समय ही हमें अपनी नर्सरी में पानी भरना है, क्योंकि अगर सुबह के समय यानी कि दोपहर से पहले अगर हम नर्सरी में पानी भरते हैं तो पानी हमारा गर्म हो जाता है और जो हमारे नर्सरी के पौधे होते हैं, धान के जो पौधे होते हैं, जो हमारी नर्सरी उगती है, वो पौधे बहुत ही मुलायम होते हैं और गर्म पानी अगर होता है तो उससे विपरीत प्रभाव हमारी नर्सरी पर पड़ता है। तो इसलिए किसान भाइयों हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम अपने खेत में पानी लगाएं, अपनी नर्सरी में पानी लगाएं, तो इसके लिए हमें शाम के समय ही नर्सरी में पानी लगाना है और सुबह को अगर हम देखते हैं कि नर्सरी में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है तो फालतू पानी की निकासी भी हमारे किसान भाई कर सकते हैं जिससे कि दोपहर में पानी गर्म होने से बच जाए और हमारी नर्सरी पर, हमारे जो धान के पौधे हैं, उन पर कोई भी विपरीत प्रभाव इसका ना पड़े। किसान भाइयों बुआई के 10 से 12 दिन बाद यदि पौधों की बढ़वार कम आपको दिखाई दे रही है या पौधों का रंग हमें पीला सा दिखाई दे रहा है तो प्रति एकड़ नर्सरी क्षेत्र में लगभग 1 किलो यूरिया और 100 ग्राम जिंक सल्फेट का छिड़काव हम कर सकते हैं, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। साथ ही सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग करना भी बहुत ही जरूरी है। इसके लिए हल्की या रेतीली मिट्टी में लोहे, आयरन या जिंक की कमी से पत्तियां पीली हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में विशेषज्ञों की सलाह पर फेरस सल्फेट या जिंक सल्फेट का छिड़काव करना चाहिए और इस तरीके से किसान भाइयों हम आयरन और जिंक उपलब्ध करवाकर अपनी नर्सरी को हम स्वस्थ कर सकते हैं ताकि हम समय पर अपनी नर्सरी से धान की रोपाई हम कर सकें। किसान भाइयों जब पौधे लगभग 2 सेंटीमीटर के हो जाएं तब क्यारियों में पानी भरना शुरू करें। बाद में क्यारियों में 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर तक पानी की गहराई बनाए रखें। तो इस तरीके से किसान भाइयों हमें जल प्रबंधन करना है और ये हमें देखना है कि हम जब पानी भरते हैं तो समय का हमें ध्यान रखना है। हमेशा शाम के समय ही हमें धान की नर्सरी में पानी लगाना है और इस बात का हमें ध्यान रखना है। और किसान भाइयों जो हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है तो उसमें हमें ध्यान ये रखना है कि लगभग 21 से 25 दिन की जो हमारी नर्सरी है उसकी हमें रोपाई करनी है और उसी हिसाब से किसान भाइयों हमें नर्सरी तैयार करनी है, क्योंकि अगर हम जल्दी अपनी नर्सरी की बुआई कर देंगे, जल्दी नर्सरी लगा देंगे और धान की रोपाई अगर हमें बाद में करनी है तो हमारी नर्सरी ज़्यादा उम्र की हो जाएगी और ज़्यादा उम्र की हमारी पौध हो जाती है तो फिर हमें जो फसल अच्छी नहीं मिलती है। तो ऐसे में किसान भाइयों हमें यह ध्यान रखना है कि कब तक हमारा खेत खाली हो सकता है, ये अनुमान लगाने के बाद ही हमें धान की नर्सरी लगानी है। तो किसान भाइयों इस तरीके से हमें अपनी धान की नर्सरी की देखभाल करनी है, ये सारी सावधानियां बरतनी है और इसी के साथ हमारा आज का खेती की बातें कार्यक्रम संपन्न होता है। कल आपके लिए हम कुछ और बातों के साथ में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सब बहन भाइयों को राम राम।
2: अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज की सभा के प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में संक्षिप्त जानकारी। आज संध्या 5:10 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार से सम्मानित सरपंच रामजी भगत के नेतृत्व वाली ग्राम पंचायत सरडीही। आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती और रात्रि 10 सुनिएगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

0: सुगम संगीत कार्यक्रम में आज संध्या 7:32 पर सुनिएगा सुनील मुखर्जी के गाए भजन। विविध कार्यक्रम में आज संध्या 6:45 पर आप सुनेंगे 90 साल बेमिसाल रेडियो प्रसारण के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में विशेष भेंट वार्ता, जिसमें आप सुनेंगे संतोष सिंह नेगी से रेणु कोटनाला की बातचीत। धरती गाती है कार्यक्रम में आज प्रातः 9:25 पर हम आपको सुनवाएंगे योगेश कुमारी के गाए रोहिलखंडी लोकगीत बात आसपास की। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज प्रातः 9:50 पर, जिसमें वाचन स्वर और संकलन होगा साद अहमद का। भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में कार्यक्रम सुहाना सफर सुनिएगा आज प्रातः 10:00। व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्म संगीत का कंपेयर्ड कार्यक्रम जिंदगी लाइव, इस कार्यक्रम का समय रहेगा आज दिन में 12:05 पर। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में आज दिन में 1:45 पर सुनिएगा सुभाष पांडे के गाए गढ़वाली लोकगीत। एक ही गीतकार कार्यक्रम में आज दिन में 2:30 पर हमारे मेहमान कलाकार होंगे जाने माने गीतकार राजेंद्र किशन। ये रिश्ता है खास, आकाशवाणी के 90 सालों के उपलक्ष्य में कार्यक्रम नजीबाबा से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आज संध्या 5:00। आज संध्या 6:05 पर हमारे किसान भाई सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत, जिसमें आज आप सुनेंगे सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व, इस विषय पर चर्चा। साथ ही सुनिएगा लोकगीतों और रागनियों पर आधारित सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो लोकमंजरी। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के प्रमुख कार्यक्रमों के संदर्भ में। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:18 हो चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी लखनऊ से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: मनन करना, मनन में ही उसे आना है।

0: सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम महाभियान का किया शुभारंभ। प्रदेश में 2741 करोड़ रुपए की स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना भी हुई शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का किया शुभारंभ। कहा, गन्ना आधारित बायोप्लास्टिक का इस्तेमाल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। बलिया का सुरहाताल प्रदेश का 13वां रामसर साइट घोषित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्धि पर जताई खुशी। और वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक समाप्त। अंतिम दिन ब्रिक्स सदस्य देशों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को मजबूत बनाने पर दिया जोर। अब समाचार विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत कल बड़ी संख्या में पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व बैंक के सहयोग से 2741 करोड़ रुपए की लागत वाली देश की पहली एयर शेड आधारित उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना यूपी कैंप का शुभारम्भ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री की मौजूदगी में विश्व बैंक और प्रदेश सरकार के बीच MOU का हस्तांतरण हुआ। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लखनऊ की कुकरेल रेंज में पौधरोपण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महर्षि चरक औषधि वन की भी स्थापना की। यहां उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 35 करोड़ पौधरोपण वृक्ष के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम पौधरोपण महाभियान 2026 की शुरुआत करते हुए इसके लोगो का भी अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें और पेड़ लगाकर प्रकृति का संरक्षण करने का संकल्प लें।
1: 5 संकल्प हम सबको इस अवसर पर लेने होंगे। एक, हर नागरिक एक पेड़ माँ के नाम पर अवश्य लगाएगा, कम से कम एक पेड़, यह हर नागरिक का दायित्व है। दूसरा, पेड़ लगाना ही नहीं, उसकी सुरक्षा का दायित्व भी लेना है, हर एक ओर से उसे बचाना है। तीसरा, जल संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। चौथा संकल्प होना चाहिए, सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह रोके, उससे भी हमें पर्यावरण को होने वाले नुकसान के साथ हमें वो करना पड़ेगा। और अंतिम जो संकल्प है वह प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली को अपनाना।
0: इस अवसर पर श्रावस्ती स्थित गुलरा केन नाला को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में विकसित किए जाने की भी घोषणा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ के अपने 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ किया। यह पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायोप्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में गन्ने के मूल्य में अच्छी बढ़ोतरी की गई है और बायो इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गन्ना आधारित बायोप्लास्टिक के इस्तेमाल से न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण होगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम होगा।
1: यूपी में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना थके डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों के चेहरे पे खुशहाली ला रही है। बहन और बेटियों के स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है। व्यापारी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से आज हर जनपद विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बलरामपुर में 294 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश की पहचान निवेश और सुरक्षा के माहौल के लिए हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार हर जनपद के समग्र विकास के लिए काम कर रही है।
1: यूपी में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना थके डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों के चेहरे पे खुशहाली ला रही है। बहन और बेटियों के स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है। व्यापारी को बेहतर सुविधा

0: की मुख्य धारा के साथ जुड़ा है।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। पर्यावरणीय स्थिरता के बीच सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुरहताल प्रदेश का 13वां रामसर साइट है। लखनऊ में विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वन राज्य मंत्री डॉ अरुण कुमार सक्सेना ने सुरहताल के रामसर साइट बनने का प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। वाराणसी में आयोजित ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का कल समापन हो गया। आखिरी दिन ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को और मजबूत बनाने पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब समेत 11 देशों ने भाग लिया। संस्कृति मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव अमिता प्रसाद सरभाई ने बताया कि बैठक में भारत की मूल्यवान धरोहरों को वापस लाने पर चर्चा हुई। इस दौरान विकास और संस्कृति के समन्वय के साथ आगे बढ़ने को लेकर भी मंथन हुआ।
2: हमेशा यही कोशिश रही हो सरकार की और स्पेशली संस्कृति मंत्रालय की, तो हमारे जो भी स्टोलन आर्टिफैक्ट्स हैं या जो स्मगल करके ले गए जाए गए या उसके पहले कॉलोनियल टाइम्स में ले जाए गए, उनको कैसे वापस लाया जाए कि वो हमारी धरोहर, तो उसी के ऊपर चर्चा हुई है और कैसे डेवलपमेंट और कल्चर साथ साथ हो, विरोधाभास ना हो उसमें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र ने एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर कल से विशेष अभियान की शुरुआत हो गई है। अभियान के तहत प्रदेश में भी 21 जून तक सभी जनपदों के प्रभारी मंत्री और जनप्रतिनिधि समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद स्थापित करेंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि चौपालों का आयोजन कर जन समस्याओं का निस्तारण करेंगे। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में वृक्षारोपण समेकित जन कल्याण और जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है।
3: भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने 5 जून से 21 जून के बीच में कार्यक्रम निर्धारित किया है। एक पेड़ माँ के नाम, यही कहूंगा 12 वर्ष नहीं, इसी तरह 2047 जो उनका सपना है कि 2047 में हमारा विश्व में देश हमारा बहुत आगे रहे, पूरी दुनिया को दिशा दे और आगे बढ़े और गरीबों की सेवा करते रहे।
1: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ में अकादमी सम्मान समारोह में वर्ष 2021 से 2024 तक के लिए चयनित कलाकारों को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित इस समारोह में 51 विशिष्ट कलाकारों को संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाओं के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए यह सम्मान प्रदान किए गए। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज भी पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कुछ जनपदों में तेज हवा और बारिश का अनुमान जताया है। पूर्वी जनपदों में बिजली गिरने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम महाअभियान का किया शुभारंभ। प्रदेश में 2741 करोड़ रुपए की स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना भी हुई शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बायोरूप ग्रीन कमांड 2026 का किया शुभारंभ। कहा, गन्ना आधारित बायोप्लास्टिक का इस्तेमाल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। बलिया का सुरहताल प्रदेश का 13वां रामसर साइट घोषित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्धि पर जताई खुशी। और वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक समाप्त। अंतिम दिन ब्रिक्स सदस्य देशों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को मजबूत बनाने पर दिया जोर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए या धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:31 हो चुके हैं। प्रस्तुत है ज्ञान और मनोरंजन से भरा कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

परिंदों की चहचहाहट से गूंज उठा ये आसमान है, आपके आने की खबर से महका ये गुलिस्तान है। पलके बिछाकर बैठे हैं हम आपके इंतजार में ऐसे कि आप आए तो लगा कि अब मुकम्मल हर अरमान है, अब मुकम्मल हर अरमान है। जी हाँ श्रोताओं, आपके आने से ही हमारी ये सुबह और भी सुहानी और खुशनुमा हो जाती है। और एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। कार्यक्रम सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं को रविकांत वर्मा का प्यार भरा नमस्कार, सलाम, आदाब और सत श्री अकाल। आशा करते हैं हमारे सभी श्रोतागण स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे कार्यक्रम में व्यस्त होंगे। जी हाँ श्रोताओं, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए ये कार्यक्रम जो लाते हैं, जो रोज नई जानकारियों और मनोरंजन से भरा होता है। श्रोताओं, आज है 6 जून और आज के दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है विश्व कीट दिवस। और श्रोताओं, आपको बता दें कि विश्व कीट दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य कीटों यानी चूहों, मच्छरों, दीमक, मकड़ियों आदि से होने वाली नुकसान, बीमारियों और कीट प्रबंधन के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करवाना है। श्रोताओं, आप जानते ही हैं कि इन कीटों द्वारा कितनी जानलेवा बीमारियां हमारे देश में कई लाख लोगों की मौत का कारण बनती है। यही कीट और इनसे फैलने वाली गंदगी से प्रतिवर्ष लाखों बच्चे, बूढ़े और जवान अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ये दिवस है इन जानलेवा बीमारी फैलाने वाले कीटों का प्रबंधन किस प्रकार करें, इस विषय में जागरूकता फैलाने का। क्योंकि श्रोताओं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा, टाइफाइड ऐसी बीमारी हैं जिनमें व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता डाउन हो जाती है और व्यक्ति का स्वास्थ्य गिरता चला जाता है। श्रोताओं, इन कीटों के पनपने का मुख्य कारण है गंदगी। यदि हम जागरूक बने, सफाई का विशेष ध्यान रखें, अपने घर की सफाई के साथ साथ अपने आसपास की सफाई का भी ध्यान रखें, तो इन कीटों के प्रबंधन में काफ़ी मदद मिल सकती है। श्रोताओं, ये कीट पर्यावरण को भी हानि पहुंचाते हैं। इनके कारण फसलों, भंडारित अनाज आदि को भी भारी नुकसान पहुंचता है। पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने और कीट प्रबंधन की वैज्ञानिक तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए भी ये दिवस बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको बता दें कि इस दिवस को मनाने की शुरुआत आधिकारिक तौर पर वर्ष 2017 में चीनी कीट नियंत्रण संघ यानी CPCA द्वारा वैश्विक भागीदारों के सहयोग से की गई थी। इसके बाद ये दिवस प्रतिवर्ष 6 जून को दुनिया भर में कीट प्रबंधन के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता रहा है, ताकि कीटों का प्रबंधन कर मानव जाति को आर्थिक नुकसान, फसलों के नुकसान और रोगों के प्रसार से बचाया जा सके।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: श्रोताओ, जानकारी, मनोरंजन और जरूरी संदेशों के बाद एक बार फिर आपका कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में स्वागत है और आपको लिए चलते हैं इतिहास के उन पन्नों की ओर जहां से पता चलता है कि क्यों है आज का दिन कुछ खास। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज ही की तिथि यानी 6 जून सन 1995 को पाकिस्तान में बाल अपराधियों को कोड़े मारने और उनकी फांसी की सजा को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया था। आज ही की तिथि 6 जून सन 1997 को बैंकॉक में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड ने बिस्टेक नामक आर्थिक सहयोग समूह का गठन किया था। 6 जून सन 2005 को ईरान गैस पाइप योजना, जिसे IPI यानी ईरान, पाकिस्तान और इंडिया गैस पाइप योजना और शांति पाइपलाइन योजना जैसे नामों से जाना जाता है, ईरान के प्राकृतिक गैस भंडार को पाकिस्तान और भारत पहुंचाने की एक योजना थी, जिसे 6 जून 2005 को यानी आज ही की तिथि को सहमति मिली थी। और श्रोताओं, आपको बताते हैं कि किन महान हस्तियों ने आज के दिन जन्म लेकर इस दिन को बनाया और भी खास। बात करें हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार राजेंद्र किशन की, तो इनका जन्म भी 6 जून 1919 को जलालपुर जट्टन जिला गुजरात पाकिस्तान में हुआ था। इन्होंने फिल्म खानदान, जो कि 1965 में आई थी, उसका गीत तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार जीता था। ये हिंदी सिनेमा के अनमोल गीतकार माने जाते हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि 6 जून 1968 को दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री तथा प्रसिद्ध भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता श्री अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ था। 6 जून यानी आज ही की तिथि वर्ष 1936 को जन्म हुआ था डी राम नायडू का, जो कि एक प्रसिद्ध हिंदी फिल्म निर्माता माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी और तेलुगु मलयालम भाषाओं में कई फिल्में बनाई। हिंदी भाषा में इनकी फिल्मों में प्रेमनगर, दिलदार और बंदिश आदि फिल्में प्रमुख हैं। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। 6 जून 1939 को जन्म हुआ था भारत के प्रसिद्ध एथलीट खिलाड़ी गुरबचन सिंह रंधावा का। ये ओलंपिक खेलों में फाइनल में भाग लेने वाले दूसरे भारतीय थे। इन्हें वर्ष 1961 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और श्रोताओं, अब आपको बताते हैं कि किन महान हस्तियों ने आज ही की तिथि यानी 6 जून को इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। 6 जून सन 1967 को निधन हुआ था कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह का, जो कि एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे। ये स्वतंत्रता की लड़ाई में वर्ष 1921 से लेकर 1942 तक के आंदोलनों में लगभग 4 वर्षों तक जेल में बंद रहे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब विंध्य प्रदेश अलग राज्य बना, तो ये उसके प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में भी निर्वाचित हुए थे। श्रोताओं, बात करें हिंदी और बंगाली सिनेमा के जाने माने पटकथा लेखक और निर्देशक बासु चटर्जी की, जिन्हें बासुदा के नाम से भी जाना जाता है। इनका निधन भी 6 जून सन 2020 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने ही भारतीय टीवी को पहला बिना टोपी वाला जासूस दिया। ये सीरियल था 1993 में आया नाटक व्योमकेश बख्शी। रजित कपूर ने इस सीरियल में व्योमकेश का किरदार निभाया था। इन सभी महान हस्तियों को हमारा शत शत नमन। श्रोताओं, जानकारी के इस क्रम को और आगे बढ़ाते हैं और आपको एक महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बताते हैं।

जिसका नाम है घल्लू धारा दिवस। ये दिवस सिख इतिहास में हुए सामूहिक नरसंहार को और बलिदान की याद में मनाया जाने वाला एक बहुत ही यादगार दिवस है। ये विशेष रूप से जून सन 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर, जिसे श्री हरि मंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है, और श्री अकाल तख्त पर हुए सैन्य हमले की याद में मनाया जाता है। इस हमले को ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से भी जाना जाता है। इस घल्लूदारा शब्द का अर्थ है भारी तबाही या नरसंहार होता है। जून 1984 में भारत सरकार द्वारा पंजाब में खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए स्वर्ण मंदिर परिसर में यह ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। इस सैन्य कार्यवाही में भारी जानमाल का नुकसान हुआ था। सिख समुदाय इस घटना के शहीदों की स्मृति में 6 जून को प्रतिवर्ष घल्लू धारा दिवस मनाता है। इस दिन श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर में विशेष अरदास और श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किए जाते हैं। सिख इतिहास में मुगलों और अफगानों के अत्याचारों के दौरान हुए 2 बड़े नरसंहारों को भी घल्लू धारा के रूप में याद किया जाता है। छोटा घल्लू धारा वर्ष 1746 को मुगलों द्वारा गुरदासपुर के काहनुवान के जंगलों में हजारों सिखों की हत्या का साक्षी बना, और बड़ा घल्लू धारा यानी बड़ा नरसंहार वर्ष 1762 को 5 फरवरी के दिन अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली द्वारा संगरूर पंजाब के कुल पुरोहिरा में लगभग 25,000 से 50,000 सिखों की निर्मम हत्या का साक्षी बना था। इस नरसंहार में महिलाएं, बच्चे और हजारों नौजवान बेरहमी से मौत के घाट उतार दिए गए थे। 6 जून को 1984 में मारे गए हजारों मासूम लोगों और सिख योद्धाओं की याद में अरदास की जाती है और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। ये दिवस यानी घल्लू धारा दिवस प्रतिवर्ष 6 जून को मुख्य रूप से श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर पंजाब में मनाया जाता है। श्रोताओ, हमारी ओर से भी उन हजारों मासूम लोगों और वीर सिख योद्धाओं को शत शत नमन। नफरत

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: श्रोताओं, प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेता सुनील दत्त को कौन नहीं जानता। सुनील दत्त भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और राजनेता थे। मदर इंडिया फिल्म में, जो कि वर्ष 1957 की एक बड़ी प्रसिद्ध देशभक्ति फिल्म थी, उसमें सुनील दत्त ने बिरजू के रूप में इनकी ऐतिहासिक भूमिका ने इन्हें अमर बना दिया। इन्होंने आज ही की तिथि यानी 6 जून 1929 को झेलम जिला पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में है, उसमें जन्म लिया था। जब ये मात्र 5 वर्ष के थे, तभी इनके सिर से इनके पिता का साया उठ गया था। इन्होंने अपनी आजीविका चलाने के लिए बस में कंडक्टर का भी काम किया था। इनका वास्तविक नाम बलराज दत्सा था। फिल्मों में शुरुआत से पहले मुंबई में जय हिंद कॉलेज से पढ़ाई करने के दौरान इन्होंने रेडियो सिलोन पर एक उद्घोषक के रूप में भी कार्य किया था। श्रोताओं, अगर बात करें इनके फिल्मी कैरियर की, तो बतौर अभिनेता इनकी पहली फिल्म 1955 में रेलवे प्लेटफॉर्म थी। वर्ष 1957 की ब्लैक बास्टर फिल्म मदर इंडिया से इन्हें स्टारडम मिला। जब इस फिल्म के सेट पर आग लगी थी, तब इन्होंने वहां अपनी भावी पत्नी नरगिस को आग से बचाया था। इनकी बेहद प्रसिद्ध फिल्मों में साधना, सुजाता, मुझे जीने दो, खानदान, पड़ोसन आदि फिल्में शामिल है। श्रोताओं, आपको बता दें कि वर्ष 1964 में इन्होंने यादें फिल्म का निर्देशन, निर्माण और अभिनय अकेले ही किया था, जिस फिल्म का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। श्रोताओं, फिल्म अभिनेता सुनील दत्त एक सच्चे समाजसेवी भी थे, जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ शांति यात्राएं निकाली और मुंबई में दंगों के समय शांति स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1968 में इन्हें पद्मश्री, 1995 में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीव भेंट पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। और वो दिन भी आ गया था जब 25 मई 2005 को नींद में ही दिल का दौरा पड़ने से इस महान फिल्म अभिनेता का निधन हो गया था। आज इस महान अभिनेता की जन्म दिवस पर हम इन्हें शत शत नमन करते हैं। और श्रोताओं, अब घड़ी इशारा कर रही है कि जल्दी से आपको आज के चंद अखबारात की चंद सुर्खियों से रूबरू करवा दिया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं अमर उजाला अखबार की, जो कि लिखता है कि युद्ध, टैरिफ जैसी वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था 7.7% तक बढ़ी, भारत का बेहतर प्रदर्शन। विदेशी निवेशकों के लिए कैपिटल गेन टैक्स अब होगा समाप्त। विदेशी निवेश जुटाने और रुपए को सहारा देने के लिए सरकार का ये बड़ा फैसला। 55,000 जवान और खुफिया एजेंसियां करेंगी दर्शन भल्यत्रियों पर नजर। अमरनाथ यात्रा अब रहेगी हर पल महफूज। अंडमान सागर में मिले गैस भंडार के संकेत। ऊर्जा आत्मनिर्भरता को अब मिल सकती है नई ताकत। कई स्थानों पर तेज बारिश, कुछ जगह हल्की बूंदाबांदी। मिली भीषण गर्मी से कुछ राहत। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि भारत संग बनाएंगे 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट सुखोई 57। टेक्निक भी करेंगे साझा। रूस निर्मित 200 विमान खरीदने की तैयारी कर रहा है भारत। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 18 से अधिक राज्यों में आज आंधी और बारिश का अलर्ट। बात करते हैं दैनिक जागरण अखबार की। कल विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 2741 करोड़ की स्वच्छ वायु प्रबंधन योजनाओं का शुभारंभ किया। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर केदारनाथ के पुराने पैदल मार्ग पर आवाजाही प्रतिबंधित। बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षकों का जल्द बनेगा कैशलेस चिकित्सा कार्ड। और स्कूल खुलते ही जुलाई से बच्चों को अखबार पढ़ने पर रहेगा जोर। एआई से बनी सुपर वैक्सीन हर वायरस से बचाव के लिए एआई की वैक्सीन होगी रामबाण। अंडर 18

पुरुष एशिया कप हॉकी के फाइनल में पाकिस्तान को पटखनी देकर भारत तीसरी बार फाइनल में पहुंचा, ये खबर है हिंदुस्तान अखबार की। और ब्रिटेन स्थित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एआई की मदद से दुनिया की पहली सुपर वैक्सीन तैयार की, ये वैक्सीन हर वायरस के लिए होगी कारगर। और श्रोताओं, कार्यक्रम को लिए चलते हैं अंतिम पड़ाव की ओर और सुनवाते हैं फिल्म अभिनेता सुनील दत्त पर फिल्माया ये प्यारा सा गीत।

0: तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम सूरज के साथ साथ अब यहीं पर संपन्न करने की मुझे यानी रविकांत वर्मा को अनुमति दीजिए।
1: सूरज के साथ साथ
0: अभी आप सुन रहे थे ज्ञान और मनोरंजन से भरा कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को हैं। आपसे कुछ ही पलों बाद आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी।

0: कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ

0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूप से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा, क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,045 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
3: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
4: With Nepal, we have an expansive agenda.
5: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
4: Partnership that we have with Nepal.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
7: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
6: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
8: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
9: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
10: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इसराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इसराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
0: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में

0: 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोईकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विंसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमेरिका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संघ SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारतीय महीशत आलमी इक्तसादी बुहरान के बावजूद गैर मामूली तौर पर मजबूत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरमाए को रागिब करने के लिए सरकारी तमस्सुकात में गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के लिए जाब्तों में नरमी की है। कीमियावी खादों के मुतवाजन इस्तेमाल और पायदार जिरात के लिए 9,42,000

0: 1000 से ज्यादा किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए हैं। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे बयानिए फैलाने के मकसद से अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की आर्जी रुकनियत का गलत इस्तेमाल करने पर उसकी मजम्मत की है। भारत के महकमे मौसमियात ने केरलम के शिमाली जिलों में 9 जून तक इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने तारीख रकम की है, वो नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारतीय मईशत की बुनियाद गैर मामूली तौर पर मजबूत है और आलमी सतह पर इक्तसादी बहरान के बावजूद मुल्क में माली साल 2025-26 के दौरान 7.7% की जबरदस्त शरह तरक्की रिकॉर्ड की गई है। कल शाम दमन में तकरीबन 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाले बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करने के बाद एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशतों में कायम है। उन्होंने शहरियों को यकीन दिलाया कि मुल्क बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की तरक्की और गरीबों के लिए फलाही स्कीमों को तरजीह देते हुए अपनी तेज रफ्तार इस्लाहात के साथ आगे बढ़ेगा।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तवानाई के शोबे में खुद किफालत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया एक सरसब्ज मुस्तकबिल की जानिब बढ़ रही है और भारत माहौलियाती तहफ्फुज के साथ इक्तसादी तरक्की को मुतवाजन बनाकर इस रास्ते पर कायदाना किरदार अदा कर रहा है। इससे पहले जनाब मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले बुनियादी ढांचे के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का आगाज किया। इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम ने इशारा दिया कि भारत की काबिल तजदीद तवानाई की 250 गीगावाट की सलाहियत में से गुजरात अकेले ही 50 गीगावाट फराहम करता है, जो भारत की माहौल के लिए साजगार तवानाई का एक अहम पांचवां हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि रियासत शमसी तवानाई से माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन और अमोनिया की तरफ मुंतकिल होने में एक बड़ा रोल अदा करने के लिए तैयार है, जो तवानाई के मैदान में खुदकफील बनने के लिए लाजमी है।
1: दुनिया अब हरित युग की तरफ, ग्रीन फ्यूचर की तरफ बहुत ही सावधान हो चुकी है। भारत भी ग्रीन ग्रोथ पर बहुत अधिक काम कर रहा है और इसमें भी गुजरात राज्य है जिसने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सरकार में क्लाइमेट चेंज का अलग डिपार्टमेंट बनाया था और गुजरात के चारणका गांव में भारत का पहला सोलर पार्क भी बनाया गया था।
0: सूरत में यकसर तब्दीली के बारे में इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने शहर के जज्बे और इसकी सरसब्ज शहर में मुंतकली की तारीफ की। उन्होंने सूरत के सर्कुलर आबी मईशत के मॉडल और कचरे से दौलत बनाने की पहल को सराहा, जो पिछले 12 साल में एक अवामी तहरीक बन गई है। सूरत पहुंचने के बाद वजीर आजम ने सबसे पहले हजीरा का दौरा किया और सनती नीज बुनियादी ढांचे के कामकाज का जायजा लिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने उन जाब्तों को मजीद आसान बनाया है जिनके तहत सरकारी तमस्कुत में गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियां FPIs सरमाया लगाती हैं। इस ताजा फ्रेमवर्क का मकसद गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के लिए सरमायाकारी को मजीद आसान बनाना और अमल दरामद की पेचीदगियों को कम करना है। तफसील मुंबई के हमारे नामनिगार से।
2: इस ताज़ा फ्रेमवर्क के तहत जो गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियां सरमाया लगा रही हैं उन्हें मजीद सहूलत दी जाएगी क्योंकि बहुत सी बंदिशें खत्म कर दी गई हैं। RBI ने आम और तवील मुद्दती सरमायाकारी के मौजूदा जुमरों को मरकजी सरकारी तमस्कुत और रियासती सरकारी तमस्कुत को एक दूसरे में जम कर दिया है। माली साल 2026-27 के लिए मरकजी सरकारी तमस्कुत के लिए सरमायाकारी की हद साल की पहली छमाही के लिए 4,62,490 करोड़ रुपए पर और साल की दूसरी छमाही के लिए 4,77,600 करोड़ रुपए तय कर दी है। रियासती सरकारी तमकसात के लिए जवाबी हदूद 1,53,043 करोड़ रुपए और 1,64,242 करोड़ रुपए भी तरतीब मुकर्रर किए हैं। ये ताज़ा हिदायत फौरी तौर से लागू हो गई हैं। मुंबई से अंकिता आप्ते की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए میں مجیب اختر.
0: زراعت اور کسانوں کی بہبود کی وزارت نے کہا ہے کہ ملک میں 9,42,000 سے زیادہ کسان جون کے مہینے تک کھیت بچاؤ ابھیان میں شامل ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے کیمیاوی کھادوں کے متوازن استعمال کی یہ مہم ایک ملک گیر عوامی تحریک بن گئی ہے. اس مہم کا آغاز زراعت اور کسانوں کی بہبود کی مرکزی وزارت نے کیا ہے، جس کا مقصد کیمیاوی کھادوں کے متبادل استعمال کو فروغ دینا، مٹی کی زرخیزی کو برقرار رکھنا اور مستقل زرعی طور طریقوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. ایک رپورٹ.
3: زراعت کی وزارت نے بتایا کہ اس مہم کے تحت ابھی تک 17,800 سے زیادہ بیداری پروگرام منعقد کیے جا چکے ہیں، جن میں تقریباً 6,98,000 کسانوں نے حصہ لیا. اس کے علاوہ تقریباً 3,700 تربیتی پروگرام منعقد کیے گئے، جن میں 1,57,000 سے زیادہ کسانوں کو کیمیائی کھادوں کے متوازن استعمال، مٹی کی زرخیزی کو برقرار رکھنے اور سائنسی زراعت کی تکنیکوں کے بارے میں جانکاری دی گئی. وزارت نے بتایا کہ اس تربیت کا مقصد مٹی کی طویل مدتی زرخیزی اور کیمیائی کھادوں پر زیادہ انحصار میں کمی لانا ہے. جگیاسا پانڈے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
0: ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے نمبروں کی تصدیق اور جوابی پرچوں کی دوبارہ جانچ کے لیے درخواست دینے کی تاریخ میں توسیع کر کے اسے 7 جون تک کر دیا ہے. سوشل میڈیا پر دی گئی ایک پوسٹ میں بورڈ نے کہا کہ طلبہ اب اتوار کی رات تک اپنی درخواست داخل کر سکتے ہیں. سی بی ایس ای کے مطابق اس نے طلبہ کے مفاد کی خاطر یہ فیصلہ کیا ہے کہ تاکہ درخواست کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے انہیں مزید وقت فراہم کیا جا سکے. اس سے پہلے اس کی آخری تاریخ کا ثبوت تھی. اس سے پہلے اس کی آخری تاریخ 6 جون تھی. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج نئی دلی میں نیپال کے وزیر خارجہ ششیر کھنال کے ساتھ بات چیت کریں گے. نیپال کی وزارت خارجہ نے کہا کہ میٹنگ کے دوران دونوں

तुझ संग प्रीत लगाई सजना। ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म कामचोर से। आवाजें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। शब्द रचना इंदिवर की थी और इस गीत के लिए संगीत दिया था राजेश रोशन ने।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं सदाबहार गीतों का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी के युगल स्वर में। फिल्म का नाम है बहू बेगम। गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने और इस गीत के लिए संगीत दिया है रोशन ने।

0: इंसानों हर पल चंदन का एहसास।
1: आन मिलो सजना, इस फिल्म में आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वर में ये प्यारा सा गीत। शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आन मिलो सजना। अभी आप इस फिल्म में सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को। श्रोताओं, कार्यक्रम गोल्डन हिट्स इस समय आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म आप आए बहार आई से। आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इस गीत के लिए धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म आ पाए बहार आई का ये प्यारा सा गीत। और श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत की ओर, जिसे हमने लिया है फिल्म प्रेम बंधन से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इस गीत के लिए धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर में अभी आप सुन रहे थे प्रेम प्रेम बंधन का ये प्यारा सा गीत। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम गोल्डन हिट्स अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 9:15 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों बाद आकाशवाणी लखनऊ से आप सुनेंगे जिले की हलचल, जिसमें आज आप सुनेंगे फिरोजाबाद
1: जिले की हलचल।
2: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए फिरोजाबाद और जौनपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं फिरोजाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है लियाकत अली का।
3: फिरोजाबाद में जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर बखबू सारंग के मार्गदर्शन में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में चिकित्सकों ने तंबाकू के सेवन से होने वाली गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय रोग और फेफड़ों की समस्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी और लोगों को इससे दूर रहने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर प्राधिकरण की सचिव सुश्री योगेश शिवा ने जोर देकर कहा है कि नशे की लत न केवल इंसान के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है बल्कि उसके परिवार, आर्थिक स्थिति और सामाजिक जीवन को भी बुरी तरह से प्रभावित करती है। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। फिरोजाबाद के विकास भवन सभागार में माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के जनपद स्तरीय मेधावी छात्र छात्राओं के लिए एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस गौरवमयी कार्यक्रम का मुख्य अतिथि सदर विधायक मनीष ससीजा, मेयर कामनी राठौर और ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर लक्ष्मी नारायण यादव के साथ प्रशासनिक स्तर पर जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी शत्रुघ्न वैश एवं अपर जिलाधिकारी मोहन लाल गुप्ता ने मेधावियों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। समारोह में जिले के टॉप 10 में स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को 21,000 रुपए का चेक, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किया गया। फिरोजाबाद में शासन के निर्देशों पर 1 जून से 30 जून 2026 तक भूमि विवादों के पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान के लिए एक विभिन्न का अभियान शुरू किया गया है। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार पिछले एक वर्ष में आए एक भूमि विवाद को दोबारा खोला गया जिसके निस्तारण से शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं थे। इनमें जसराना, फिरोजाबाद, शुकावास, सिरसागंज और टूंडला के मामले शामिल हैं, जिन्हें पुनः स्थलीय सत्यापन के लिए उप जिलाधिकारियों को पोर्टल पर भेज दिया गया है। अभियान के तहत केवल कागजी कार्रवाई न करके राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीमें मौके पर जाकर साक्ष्यों के आधार पर अवैध कब्जे हटाने, पट्टे राजस्व अभिलेखों में सुधार, रास्ता, पैमाइश व वरासत से जुड़े विवादों का स्थायी समाधान करेंगी। साथ ही प्रत्येक सप्ताह विकास खंड स्तर पर न्याय पंचायत वार ग्राम चौपालों में भी आयोजित की जाएंगी। फिरोजाबाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें जिले के स्वास्थ्य योजनाओं और चिकित्सा सुविधाओं की व्यापक समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने खराब प्रदर्शन करने वाले प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों की जवाबदेही तय करने, स्वास्थ्य केंद्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और बेहतर काम करने वाले कर्मियों को सम्मानित करने की बात कही। मौसम विभाग की हीट वेव अलर्ट को देखते हुए उन्होंने सभी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कूलर, ORS, घोल और ठंडे पानी से युक्त कूलिंग सेंटर सक्रिय करने तथा सरकारी डॉक्टर द्वारा बाहर की दवाएं लिखने पर पूरी तरह से रोक लगाकर फार्मेस्ट काउंटर पर दवाओं की सूची प्रदर्शित करने के कलेक्टर निर्देश दिए हैं। फिरोजाबाद में पर्यटन विकास को गति देने के उद्देश्य जिलाधिकारी ने 2 महत्वपूर्ण पर्यटक गए स्थलों का निरीक्षण कर विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। जिलाधिकारी सबसे पहले सिरसागंज में 24.24 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन आर संस्कृत संकुल पहुंचे, जहां उन्होंने मल्टीपर्पज हॉल में सुव्यवस्थित स्टेज बनाने और भवन की मजबूती व तकनीकी सटीकता सुनिश्चित करने के लिए किसी प्रतिष्ठित संस्था के इसका स्ट्रक्चर ऑडिट कराने के निर्देश दिए।
2: फिरोजाबाद जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं जौनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राहुल यादव का।
1: जौनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम जौनपुर में सामूहिक आयोजन कर सुना गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य और प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक ने कहा कि जनपद के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक व अस्मरणीय क्षण बन गया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात से सीधे जौनपुर से लाइव जुड़े। राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ सीधे जुड़ने और जौनपुर का मान बढ़ाने के लिए वह उनका धन्यवाद करते हैं। जनपद के प्रत्येक नागरिक के लिए अत्यंत प्रेरणादायक व गौरवपूर्ण है। इससे स्थानीय स्तर पर विकास, सांस्कृतिक और जन भागीदारी एक नई ऊर्जा मिलेगी। जौनपुर के जिलाधिकारी सैमुअल पाल के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में जन समस्याओं को त्वरित और प्रभावी निस्तारण तथा जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित गांव की समस्या गांव में समाधान कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड महाराजगंज के ग्राम पंचायत बिरवा में मुख्य विकास अधिकारी धू खड़िया की अध्यक्षता में जन चौपाल का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि जन चौपाल में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में ग्रामीणों की समस्याओं और शिकायतों का गंभीरता सुना गया तथा उनके गुणवत्तापूर्ण और संबंधपूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा का अनुरूप प्रत्येक पात्र व्यक्ति तथा योजनाओं को लाभ पहुंचाना तथा ग्रामीण की समस्या को स्थानीय स्तर पर प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाए। शासन स्तर पर विभिन्न कोर्ट से लंबित वादों के लिए निस्तारण के आधार पर मई की रैंकिंग जारी की गई। मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अवंत ने कहा कि शासन स्तर पर जारी रैंकिंग में जनपद को प्रदेश में पहला स्थान मिला। यहां 5 कोर्ट मिलकर कुल 250 वादों को कम से कम निस्तारण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष सभी 5 कोर्ट से कुल 466 वादों का निस्तारण किया गया, जबकि मैनपुरी में 407 वाद हल किए गए, जबकि तीसरा स्थान पर आजमगढ़ जनपद रहा जहां 418, बलिया में 147, गाजीपुर में 160, मऊ जनपद को अलग अलग कोर्ट में कुल 187 वाद निस्तारित किए गए। जौनपुर जिले के रामपुर क्षेत्र के सदिरंगन गांव में 33/11 केवी क्षमता के विद्युत उपकरण का निर्माण कराया जाएगा। इससे 7.92 करोड़ खर्च किया जाएगा, जिसकी स्वीकृति शासन की ओर से मिल गई। नए उपकरण बनने से 50 गांव और 21,000 से अधिक उपभोक्ताओं को निर्विरोध निर्बाध बिजली की मिलेगी। वर्तमान में सदिरंगन के आसपास के क्षेत्रों के रामपुर पावर हाउस से बिजली आपूर्ति की जाती है। इससे उपकेंद्र पर लोड अधिक होने से बिजली ट्रिपिंग फॉल्ट और लो वोल्टेज की समस्या से उपभोक्ता परेशान थे। इसके मद्देनजर अपना दल इसके विधायक मड़ियाओं के विधायक डॉक्टर आर के पटेल ने नए उपकेंद्र के निर्माण के लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव भेजा था, जिसकी स्वीकृति मिल गई है। रामपुर के सदरनगंज में 33/11 केवी का उपकेंद्र बनने के लिए जगह चिन्हित कर लिया गया। इसके निर्माण में 7,92,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। ग्रामीणों का कहना कि इसके बिजली आपूर्ति स्थिरता आएगी और क्षेत्रीय विकास में गति मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब सभी लाभार्थी किसानों के लिए वर्ष में एक बार EKYC करना अनिवार्य कर दिया गया। कोई भी किसान निर्धारित अवधि में EKYC नहीं करता तो किस्त अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। ऐसे किसान जिन्होंने 2025 से मार्च 2026 के बीच PM किसान योजना में EKYC नहीं कराई है, वह 30 जून के पूर्व अपनी EKYC प्रक्रिया पूरी करें, जिससे योजनाओं को आगामी किस्त प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। जानकारी देते हुए उप परियोजना निदेशक आत्मा कृषि प्रसाद डॉक्टर रमेश यादव ने बताया कि EKYC पूरे होने के बाद ही किस्त जारी की जाएगी। किसान घर बैठे स्वयं फैक्सियल EKYC कर सकते हैं। उप परियोजना निदेशक आत्मा कृषि प्रभार ने बताया कि योजना का अधिक पारदर्शी, प्रभावी, वास्तविक पात्र किसानों को सीमित रखने के उद्देश्य से वार्षिक EKYC अनिवार्य कर दी गई। PM किसान मोबाइल ऐप से किसान घर बैठे अपने स्वयं फैक्सियल EKYC कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसान निकटतम जनसेवा केंद्र पर जाकर अपना बायोमेट्रिक EKYC भी कर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड और आधार से लिंक मोबाइल नंबर आवश्यकता होगी। जौनपुर के निगोह से जरौना तक जाने वाली 7.5 किलोमीटर लंबी सड़क चौड़ीकरण के लिए मछलीसर से सभा विधायक रागनी सोनकर ने भूमि पूजन किया। विधायक ने कहा कि लंबे समय से इस मार्ग के चौड़ीकरण की मांग की जा रही थी। सड़क सक्रिय और जर्जर होने के कारण राहगीरों को आवागमन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। 11 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह सड़क 5.5 किलोमीटर चौड़ी होगी। सड़क किनारे पूर्ण होने के बाद निगोह, जरौना सहित आस पास के कई गाँव के लोगों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ क्षेत्र के व्यापार और विकास में गति मिलने की उम्मीद है।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
4: जिले कार्यक्रम समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम धरती गाती है, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं योगेश कुमारी के गाए रोहिलखंडी लोकगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम धरती गाती है इस समय आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं और आज हम आपको सुनवा रहे हैं योगेश कुमारी के स्वर में रुहेलखंडी लोकगीत।

0: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: श्रोताओं, ये प्यारा सा रोहिलखंडी लोकगीत आप सुन रहे थे योगेश कुमारी के स्वर में। और अब चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम रोहिलखंडी लोकगीत की ओर, जिसे आवाज दी है योगेश कुमारी ने।
1: और

0: योगेश कुमार की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये रुहेलखंडी लोकगीत। और श्रोताओं, इसी के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:50 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बात आसपास की, जिसमें आज वाचन स्वर और संकलन रहेगा साद अहमद का।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं साद अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का हम सबके पसंदीदा कार्यक्रम बात आसपास की में। श्रोताओं, कहते हैं हम दुनिया को जैसे देखते हैं वैसी ही हमारी दुनिया बनती है। हर रंग, हर चेहरा, हर एहसास हमारी आंखों के जरिए ही हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता है। लेकिन सच ये भी है कि हम अपनी आंखों का उतना ख्याल नहीं रखते जितना हमें रखना चाहिए। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं आंखों की देखभाल, सही आदतें और जागरूकता की, ताकि हमारी यह अनमोल रोशनी लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। आज की जिंदगी में मोबाइल, टीवी, लैपटॉप ये सब हमारे सबसे ज्यादा करीब हो चुके हैं। सुबह उठते ही स्क्रीन और रात को सोने से पहले भी स्क्रीन। इसी बीच हमारी आंखें लगातार काम करती रहती है और धीरे धीरे शुरू होती है छोटी छोटी समस्याएं, आंखों में जलन, ड्राइनेस और धुंधलापन। लेकिन हम इन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आंखों से जुड़ी समस्याओं और उनकी गंभीरता को समझने के लिए हमने बात की एक नेत्र चिकित्सक से।
2: जी, मैं अथर नसीम, फाउंडर डॉक्टर अथर चैरिटी आई हॉस्पिटल करतपुर। समस्या है ड्राई आई, जिसको बोलते हैं खुश्की आंखों की, आंखों का सूखापन जिसको कहते हैं। ये इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आजकल नॉर्मल इंसान का लाइफ स्टाइल चेंजेस है, जैसे आप यूं समझे कि आंख के अंदर नया पानी बनता है। अब जब आप कोई सिस्टम लाइक लैपटॉप, मोबाइल या डिजिटल स्क्रीन कोई देख रहे होते हैं तो उस वक्त आप ब्लिंक नहीं करते, तो ब्लिंक नहीं कर रहे, जाहिर सी बात है जो प्रोसेस था आपका नया पानी बनने का वो हो ही नहीं पा रहा, तो उसकी वजह से खुश्की हो रही है। हर साल चेक कराना जरूरी है, चाहे कोई आंख में परेशानी हो या ना हो, एक बार जो भी आपके करीबी आंखों के डॉक्टर हैं उनसे आंख जरूर चेक कर।

0: आदमी को फील होती है, इंसान को फील होती है, तो उनको जरूर जाना चाहिए डॉक्टर के पास। वो ये है जैसे सर में दर्द हो रहा है मानिए किसी के, तो उसको चाहिए कि वो एक बार आंख जरूर चेक कराए। किसी इंसान को धुंधला दिख रहा है, उनको चाहिए वो जरूर आंख चेक कराए। मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी स्कूल्स को संदेश देना चाहूंगा कि वो अपने जो भी करीबी आई डॉक्टर है उनसे एक टाई अप कर लें कि आपको हर साल हमारे यहाँ पर एक कैंप लगाना है जिसमें आपको स्क्रीनिंग करनी है बच्चों की आंख की। मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है, मैं अक्सर जो हमारे एरिया में स्कूल है सबसे मेरा टाई अप है, मैं सभी जगह जाके आई चेक करता हूँ बच्चों की। तो अगर किसी स्कूल में गैदरिंग 2000 की बच्चों की है और हमने 2000 बच्चों की आंख चेक की है, तो अभी तक का एवरेज ये है कि 80% बच्चों की आंख में परेशानी कुछ ना कुछ मौजूद है।
1: डॉक्टर की बातों से साफ है कि अगर हम समय रहते ध्यान नहीं देते तो छोटी समस्याएं भी आगे चलकर बड़ी बन सकती हैं। अक्सर हम सोचते हैं जब तक ज्यादा दिक्कत ना हो जांच कराने की जरूरत ही नहीं, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती होती है। आंखों की नियमित जांच, समय पर सही नंबर का चश्मा और शुरुआती लक्षणों को समझना बहुत जरूरी होता है। आज के समय में आंखों की समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं और ऐसे में केवल इलाज ही नहीं बल्कि समय पर सही जांच भी उतनी ही जरूरी हो जाती है। अक्सर हम छोटी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं जो आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती है। आंखों की नियमित जांच, सही नंबर का चश्मा और शुरुआती लक्षणों को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमने बात की एक ऑप्टोमेट्रिस्ट से।
2: सबसे पहले तो आप बताइए कि जो आंखों का टेस्ट होता है, जो जांच होती है, उसकी प्रक्रिया कैसे होती है, क्या होता है इस टेस्ट में?
3: आंखों की जांच के लिए कम से कम 12 फीट की दूरी होनी चाहिए, वो मिरर के अंदर देखा जाता है उससे, और 6x6 विजन होना चाहिए उसमें। विजन जांच के लिए पास की निगाह और दूर की निगाह का विजन लिया जाता है। चश्मे का सही नंबर के लिए 6x6 का विजन चाहिए होता है। अगर आंख में कोई प्रॉब्लम होती है तो 6x9 या 6x18 का विजन हो जाता है।
2: आपके पास मतलब जो लोग आते हैं उनमें सबसे ज्यादा समस्या किस तरह की रहती है नजर को लेकर के?
3: सबसे ज्यादा नजर की जो समस्या होती है वो दूर की निगाह की ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आजकल मोबाइल वगैरह हम चलाते हैं तो उसकी लेजर्स की वजह से ज्यादा।
2: तो अब मोबाइल लैपटॉप ज्यादा हम इस्तेमाल देख रहा है तो ये कैसे आज के टाइम में प्रभावित कर रहा है आंखों को, नजरों को, इसको बताइए।
3: इसके अंदर जो ग्लेयर्स होती हैं, एंटी ग्लेयर्स, जो हमारे लैपटॉप से जो ग्लेयर से निकलती है वो हमारी आंखों तक जाती है, तो हमारे जो है रेटिना पे जोर पड़ता है,
2: अच्छा,
3: उसकी वजह से आईसाइट ज्यादा वीक।
2: तो इससे बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं मतलब जो प्रोफेशनल है, वर्किंग प्रोफेशनल, लैपटॉप पे 8-8 घंटे रहना होता है या मोबाइल पर,
3: तो उसके लिए आपको जो है एक ब्लू कट लेंस आता है वो आपको यूज करना पड़ेगा, उसकी जो लेजर होती हैं वो रोक लेता है वो लेंस। बच्चों की जो जांच है वो बच्चों की हो या उसमें बड़ा हो कम से कम 3 महीने में एक बार जांच करा लेनी चाहिए। बच्चा जो है या बड़ा बुक्स वगैरह जो देखता है वो पास से देखता है या आंखें मीचना चुनियाना जो जिसे कहते हैं उस तरीके से फिर आंख जांच करानी चाहिए।
2: अच्छा, लोगों में ना एक मिथ ये भी है, लोग ऐसा मानते हैं बहम में लोगों में कि चश्मा पहनने से ना उनकी आंखें और कमजोर हो जाएगी।
3: नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बल्कि चश्मा पहनने से उनको विजन पूरा मिलेगा और जो आजकल स्क्रीन वाली ज्यादा चीजें हैं मोबाइल लैपटॉप वगैरह उनसे बेनिफिट रहेगा।
2: तो इसके अलावा और आम इंसान जो है अपनी आंखों को कैसे देखभाल रख सकता है जिससे वह स्वस्थ रहे उसकी आंखें?
3: देखिए, डोर टू डोर जो है बंदे को जो है हर 3 महीने के बाद आई साइट चेक करानी चाहिए, और स्क्रीन की जो आजकल लैपटॉप वगैरह है उससे हमें जो है बचाव करना चाहिए, कम यूज करना चाहिए, आपको जो है धूप से आपको बहुत बेनिफिट।
1: यानी साफ है कि सही समय पर जांच और सही सलाह आंखों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। अब सवाल आता है, क्या सिर्फ इलाज से ही आंखें स्वस्थ रह सकती हैं? जवाब है नहीं। हमारा खान पान, हमारी नींद और हमारी दिनचर्या, इन सब का सीधा असर हमारी आंखों पर पड़ता है। अगर हम अपनी डाइट में हरी सब्जियां, फल और पर्याप्त पानी शामिल करते हैं तो आंखों की सेहत काफी हद तक बेहतर बनाई जा सकती है। आंखों की सेहत में खान पान की भूमिका को समझने के लिए हमने बात की एक डाइटिशियन से।
4: मेरा नाम अल्पिशा है, मैं एक डाइटिशियन हूँ। हमारी आंखें हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं उसका सही से देखभाल नहीं करते। असल में आंखों की सेहत का संबंध सीधा हमारे खान पान लाइफस्टाइल से होता है। अगर हम अपनी डाइट सही रखते हैं तो काफी हद तक आंखों की समस्या से बच सकते हैं, ठीक है। और आंखों के लिए विटामिन ए, सी, ई और ओमेगा 3 जैसे न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके लिए हमें रोज़ खाने में हरी सब्जियां, गाजर और जो है फल

0: दूध, ड्राई फ्रूट जरूर शामिल करना चाहिए, ठीक है? वहीं दूसरी तरफ जंक फूड कम करने चाहिए, ठीक है? उतना बेहतर है, क्योंकि अक्सर धीरे धीरे हमारी आंखों भारी प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि देखो क्या होता है, एक और बहुत ज़रूरी बात, हाँ, पानी अगर हम दिन भर में पीते हैं, कम पीते हैं, ठीक, तो आँख की ड्राइनेस और जलन, दिक्कत, ये सब बढ़ जाती है। और इसके लिए बॉडी को हाइड्रेट रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? और सही, देखो बच्चों के लिए तो यह बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या होता है ना, उनकी आँखों की डेवलपमेंट हो रही है अभी, और आजकल मोबाइल स्क्रीन इन सब का इस्तेमाल बढ़ गया है, तो सही से खान पीन तो बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है? साथ ही हमें अच्छी नींद, नींद तो बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है? अगर नींद ही पूरी नहीं होगी तो आँख में थकान, भारीपन और इरिटेशन महसूस होती रहती है। बस रोज़ थोड़ा ध्यान रखना है, अच्छा खाए, पानी पिए और आँखों का आराम दे। ये छोटी आदत हमारी आँखों की रोशनी लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते।
1: डाइटिशियन के अनुसार छोटी छोटी आदतें, सही खाना, पर्याप्त पानी और अच्छी नींद आंखों की सेहत को लंबे समय तक बनाए रख सकती है। और जब बात आती है अनुभव की, तो मरीज की कहानी हमें सबसे ज्यादा सिखाती है।
2: हेलो सर, मेरा नाम अंजलि है। मेरे ना शुरुआत में बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होता था, तो मैं इस बात को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देती थी और सोचती थी ऐसे ही आ रहा है। बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होने लगा तो मैंने इससे बहुत ज़्यादा इग्नोर किया। फिर मैंने एक बार जब इसके ज़्यादा सिर में दर्द होने लगा तो मैंने अपने एक डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मुझे एक टेस्ट बताया, फिर वो मैंने टेस्ट करवाया तो उसमें मेरी आंखें कमज़ोर आई। तो इस कारण की वजह से मेरी आंखों में होता था सिर में दर्द भी मेरी आंखें कमज़ोर होने की वजह से। फिर मैंने चश्मा बनवाया, वो इसलिए कि मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। इस समस्या को मैं पहले देख लेती तो आज ये नौबत ना आती।
1: आंखों की देखभाल कोई मुश्किल काम नहीं है, बस जरूरत है थोड़ी सी जागरूकता की। दिन भर में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना, आंखों को आराम देना और अच्छा खाना, समय पर जांच, ये सब हमारी आंखों को स्वस्थ रखने के आसान तरीके हैं। आंखें हमारी जिंदगी की रोशनी है, इनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी भी है और जरूरत भी। तो श्रोताओं, आज के इस हमारे कार्यक्रम में हमने बात की सही जांच, सही चश्मे और हमारी आंखों को हम किस तरीके से स्वस्थ बनाकर रख सकते हैं। तो श्रोताओं, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए अंक में। मैं साद अहमद आपसे इजाजत लेता हूँ। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे पूर्व प्रसारित कार्यक्रम बात आसपास की, जिसमें वाचन स्वर और संकलन था साद अहमद का। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम सुहाना सफर का आज का ये अंक।

0: हवाओं में घुली यादों का एक शहर ला रहे हैं। हवाओं में घुली यादों का एक शहर ला रहे हैं। पुरानी बंदिशों में भी एक नया पहर ला रहे हैं।
1: नौ दशकों का गौरव और सुरों का ये नजराना आकाशवाणी की लहरों पर आज फिर सुहाना सफर ला रहे हैं। नमस्कार प्यारे श्रोताओं, आकाशवाणी की इस बेहद खास तरंग पर आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त शिवा शुक्ला।
0: और मैं हूं आपका हमसफर रविकांत वर्मा। हमारे तमाम सुनने वालों को इस प्यार भरे सफर यानी आपके पसंदीदा कार्यक्रम सुहाना सफर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को हमारी ओर से प्यार भरा
1: नमस्कार। रविकांत, आज का ये सफर आम दिनों जैसा नहीं है। आज हमारी धड़कने कुछ ज्यादा तेज हैं और दिल में गर्व का एहसास भी दुगना है।
0: बिल्कुल शिवा, आखिर मौका ही इतना ऐतिहासिक है। भारतीय दिलों की धड़कन सूचना और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी हमारा अपना आकाशवाणी अपने गौरवमयी 90 साल पूरे कर रहा है।
1: क्या बात है, 9 दशक का ये सफर दादी के रेडियो से लेकर आज के स्मार्टफोन तक आकाशवाणी ने हर पीढ़ी को जोड़ा है। और इसी जश्न के मौके पर आज हम अपने सुहाना सफर कार्यक्रम में अपने श्रोताओं को ले चलेंगे फ्लैशबैक में, यानी साल 2024 के उस यादगार साल में जिसकी हर बड़ी खबर को आकाशवाणी ने सीधे आप तक पहुंचाया था।
0: तो देर किस बात की शिवा, चलिए मुड़कर देखते हैं साल 2024 के उन पन्नों को। और आज इस अंक में हम साल 2024 की हर बड़ी हलचल को समेटेंगे, चाहे वो विज्ञान का चमत्कार हो, खेल के मैदान का रोमांच हो, सिनेमा का जादू, या फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। और सबसे बड़ी बात, इन तमाम खबरों को सबसे पहले सबसे प्रमाणिक रूप से आप तक पहुंचाने का माध्यम भी यही आकाशवाणी रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं यादों का ये सुहाना सफर। लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन सबसे पहले हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत, जिसे हमने लिया है 2024 में आई फिल्म भूल भलैया 3 से। आवाजें हैं पिटबुल, दिलजीत दोसांझ और नीरज श्रीधर की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: गीत के बाद स्वागत है सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सुहाना सफर में। आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और आज के इस सुहाना सफर कार्यक्रम में श्रोताओं, हम आपसे बात कर रहे हैं सन 2024 के बारे में। रविकांत, साल 2024 की शुरुआती इतनी भव्य हुई कि पूरा देश उत्सव के माहौल में डूब गया। जनवरी 2024 में अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसे आकाशवाणी ने सीधे प्रसारण के जरिए देश के कोने कोने तक पहुंचाया।
1: सिर्फ इतना ही नहीं शिवा, 2024 लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव लेकर भी आया। भारत में 18वीं लोकसभा के आम चुनाव हुए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की इस चुनावी हलचल, नतीजों और नई सरकार के गठन की पल पल की प्रमाणिक खबर आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन्स ने जनता तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचाई।
0: अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी 2024 बहुत उथल पुथल और बदलावों का साल रहा। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ऐतिहासिक वापसी की। इसके अलावा रूस, यूक्रेन और मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट के तनावों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया।
1: इन तमाम वैश्विक परिस्थितियों और कूटनीतिक मोर्चों पर भारत के बढ़ते कदमों को आकाशवाणी के स्पॉटलाइट और समसामयिकी कार्यक्रमों ने हमेशा बेहद सरल भाषा में हमारे श्रोताओं के सामने रखा।
0: विज्ञान की बात करें, रविकांत, तो 2024 में भारत के वैज्ञानिकों ने दुनिया में अपनी धाक जमाए रखी। गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा इसी साल हुई, जिसने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया।
1: जी हाँ शिवा, और इसरो ने साल की शुरुआत में ही 1 जनवरी 2024 को एक्सपोसेट का सफल प्रक्षेपण किया था। इसके साथ ही सूर्य मिशन आदित्य L1 अपनी सही कक्षा में स्थापित हुआ। विज्ञान की इन जटिल उपलब्धियों को आकाशवाणी ने अपने विशेष विज्ञान कार्यक्रमों के माध्यम से गांव-गांव के बच्चों और युवाओं तक पहुंचाया, ताकि उनमें वैज्ञानिक चेतना जाग सके।
0: और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की ऐसी तस्वीरें भेजी जिन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान की समझ को ही बदल दिया। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी 2024 में अभूतपूर्व क्रांतियां देखी गईं। और इस कार्यक्रम में रविकांत, आगे भी हम बात करेंगे अपने श्रोताओं से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले क्यों ना सुनवा दें सन 2024 में ही रिलीज हुई फिल्म अमर सिंह चमकीला का ये गीत। आवाज है याशिका सिक्का की।

0: श्रोताओं, स्वागत है आपका एक बार फिर से कार्यक्रम सुहाना सफर के आज इस अंक में। और श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं वर्ष 2024 की। और शिवा, अब रुक करते हैं उस मैदान का जहां धड़कनें थम जाती हैं और रोमांच चरम पर होता है। खेल जगत के लिए 2024 एक स्वर्णिम वर्ष रहा। वेस्टइंडीज की धरती पर भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब अपने नाम किया। रोहित शर्मा की कप्तानी में मिली ये जीत हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान दे गई थी।
1: रविकांत, उस मैच का आंखों देखा हाल जब आकाशवाणी पर गूंज रहा था तो हर घर स्टेडियम बन गया था। और इसके बाद पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 का रोमांच आया। मनु भाकर, नीरज चोपड़ा और हमारे पैरालंपिक एथलीटों ने पेरिस की धरती पर तिरंगा लहराकर नया इतिहास रचा।
0: हाँ शिवा, बिल्कुल सही कह रही हो। जीत हो या हार, खेल भावना को बनाए रखते हुए आकाशवाणी ने पेरिस से सीधे प्रसारण और विशेष खेल समीक्षाओं के जरिए देश के खेल प्रेमी को कभी भी मैदान से दूर नहीं होने दिया।
1: बिल्कुल रविकांत, चलिए अब थोड़ा रुक करते हैं कला, साहित्य और मनोरंजन की दुनिया की तरफ। 2024 में भारतीय सिनेमा ने वैश्विक और घरेलू स्तर पर नए कीर्तिमान स्थापित किए। कल्कि, 2898 AD, स्त्री 2 और फाइटर, शैतान, सिंघम अगेन जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। तो वहीं ऑस्कर और कान फिल्म फेस्टिवल में भारतीय निर्देशकों और कलाकारों की गूंज रही।
0: और हाँ शिवा, आकाशवाणी द्वारा विभिन्न FM और क्षेत्रीय स्टेशनों पर फिल्म के अभिनेताओं, निर्देशकों और तकनीकी टीम के साक्षात्कार भी प्रसारित किए गए थे।
1: बिल्कुल, क्षेत्रीय भाषाओं और कलात्मक सिनेमा को प्रमोट करने के लिए आकाशवाणी ने विशेष वार्ता, चर्चा और समाचार बुलेटिन में भारतीय सिनेमा की उपलब्धियों को स्थान दिया।
0: क्रिएट इन इंडिया जैसी पहलों और वेब्स यानी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट से जुड़ी जानकारियों को भी आकाशवाणी के बुलेटिन में शामिल किया गया। और शिवा, क्यों ना अब गीत सुनवा दिया जाए हमारे श्रोताओं को।
1: बिल्कुल, है सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को फिल्म स्त्री 2 का गीत। हाँ। गायक कलाकार है विशाल मिश्रा और सचिन जिगर।
0: तो आइए सुनते हैं फिल्म स्त्री 2 का ये प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में। और रविकांत, आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं सन 2024 के बारे में। और आपको पता ही होगा कि हमारी लोक कलाओं और क्षेत्रीय सिनेमा को भी इस साल राष्ट्रीय पुरस्कारों में भरपूर सराहना मिली।
1: हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं।
0: कला के साथ साथ साहित्य की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हस्तियों की घोषणा और विभिन्न साहित्य उत्सवों ने देश की भाषाई समृद्धि को दर्शाया। आकाशवाणी ने हमेशा अपने साहित्यिक कार्यक्रमों के जरिए नए लेखकों और कवियों को एक बड़ा मंच दिया है।
1: हाँ बिल्कुल शिवा, और शिक्षा के क्षेत्र में भी 2024 ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP के जमीनी क्रियान्वयन में तेजी देखी गई। नए जमाने के डिजिटल कौशल, स्किल डेवलपमेंट और परीक्षाओं के तनाव को दूर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का प्रसारण भी आकाशवाणी द्वारा देश के दूर दराज के छात्रों तक पहुंचाया गया। और इस कार्यक्रम से पता है छात्रों ने बहुत ही लाभप्रद उपाय सोचे और परीक्षा पे जो चर्चा थी उसके तनाव को दूर करने में भी इन्हें बहुत राहत मिली। और क्यों ना शिवा, फिर से एक बार मनोरंजन करवा दिया जाए, है ना।
0: जी हाँ, तो सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को ये अगला गीत।
1: हाँ, फिल्म का नाम है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। आवाजें हैं राघव तनिष्क बागची और आशीष कौर की। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: वक्त का पहिया कितनी तेजी से घूमता है श्रोताओं, आज के इस विशेष सुहाना सफर कार्यक्रम में हमने 2024 के उन सभी खट्टे मीठे, रोमांचक और ऐतिहासिक पलों को जिया जिन्होंने हमारे कल को संवारा है।
1: और देखो शिवा, ये आकाशवाणी का 90 सालों का सफर कितनी सुहाना तरह से बीत गया है ना।
0: बिल्कुल जी।
1: और इस पूरे सफर में आकाशवाणी हमेशा की तरह आपका सबसे विश्वसनीय साथी रहा, चाहे आपदा की घड़ी में सही सूचना पहुंचाना हो या देश की जीत का जश्न आप तक लाना हो। 90 वर्षों का ये सफर आपके विश्वास के बिना अधूरा था।
0: बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के ध्येयवाक्य के साथ आकाशवाणी की ये तरंगे श्रोताओं आगे भी इसी तरह सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का उजाला फैलाती रहेंगी। साल 2024 की इन यादों को समेटकर अब आगे बढ़ने का वक्त है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले, आपसे विदा लेने से पहले, चलते चलते सुनवाते हैं आपको अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म लापता लेडीज का ये गीत।

0: तो श्रोताओं, अरिजीत सिंह के गाए फिल्म लापता लेडीज के इसी गीत के साथ ही आज के इस विशेष कार्यक्रम सुहाना सफर के इस अंक में अपने दोस्त रविकांत वर्मा और
1: अपनी दोस्त शिवा शुक्ला को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे भारत में रेडियो प्रसारण के 90 सालों के उपलक्ष्य में कार्यक्रम सुहाना सफर का आज का ये अंक। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। श्रोताओं, कार्यक्रम गीत तुम्हारे में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका साथी रविकांत वर्मा, और आज इस कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में उपस्थित है
1: शिवा शुक्ला।
0: आप सभी को हम दोनों की ओर से प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में आप अपनी पसंद का कोई भी गीत सुन सकते हैं अपने नाम के साथ। तो सबसे पहले हम आपको अपना नंबर बता देते हैं जिस पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी पसंद का कोई भी गीत। हमारा नंबर है 9457078288। नंबर एक बार आपको फिर बता देते हैं
1: श्रोताओ, नंबर है 9457078288।
0: तो जल्दी से इस नंबर पर आप हमें मैसेज कीजिए। और देखिए, यहाँ हमने अपना नंबर बताया और हमारी स्क्रीन पर कितने सारे मैसेज आ गए हैं ना शिवा।
1: बिल्कुल रवि,
0: तो बताओ भाई, पहला मैसेज हमारे पास किन का आया है?
1: पहला मैसेज हमें मिला है गांधी बाग अंकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, धनंजय कटनकर की ओर से। और अगला मैसेज है
0: परिमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, मीरसराय बदायूं से आफरीन खान और जमीर खान भी इस गीत को सुनना चाहते हैं।
1: नेहरू चौक पैठण से हमें मैसेज मिला है डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव की ओर से। और जालना शहर से फरमाइश करता है सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव, संगीता जाधव।
0: और इसी गीत को सुनना चाहते हैं पाकड़ कबड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे और धनश्री बुरांडे। जसपुर रोड ग्राम दूल्हापुर जिला मुरादाबाद से ही हमें मैसेज किया है। लिखने वाले हैं महबूब दुकानदार, साहिबा महबूब और अल्फिशा परवीन।
1: चकला बाजार समाना शहर पंजाब से लिख भेजा है अपनी फरमाइश को पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक, सुनीता रानी, आरजू, पप्पू हसमुख जिंदल, बुलबुल शक्ति, संजीव बंटी और इनके परिवार के सभी सदस्य।
0: इसी गीत को सुनना चाहा है गांव कैरो जिला तरन ताड़ा पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और इनका पोता गुरशबद। शाही मार्केट सिहारा जिला बिजनौर से ही हमें मैसेज करते हैं आसिफ चौधरी, अराफा चौधरी, कादिर चौधरी और बेगम रिहाना चौधरी।

0: सनावत से मैसेज भेजा है शेख मूसा मोहसिन की ओर से। अगला मैसेज मिला है मोहल्ला अफगानान शेरकोट से। नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम, अदीम, अब्दुल गनी, अलमीर, मोहम्मद जैन, जन्नत की ओर से।
1: तो आइए श्रोताओं, इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म कटी पतंग का ये प्यारा सा गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इस गीत के लिए धुन तैयार की है RD बर्मन ने।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: श्रोताओं, गीत संगीत और जरूरी संदेशों के बाद कार्यक्रम गीत तुम्हारे में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और शिवा, देखो जरा हमारे श्रोता कौन सा गीत सुनना चाहते हैं।
7: रविकांत श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म लव इन टोक्यो का गीत, जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। मोल हसरत जयपुरी के हैं और संगीत शंकर जयकिशन का। और इस गीत के लिए हमें मिली है बहुत सारी फरमाइशें। व्हाइट फील्ड बेंगलोर से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण, संस्कृति पौरुष और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, कुलदीप कंवल की ओर से। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे।
6: और इसी गीत को सुनना चाहा है ग्राम दूलापुर जिला मुरादाबाद से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान और नरगिस खातून ने।
7: खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक।
6: और ये पत्र मेरे हाथ में है जो आया है ग्राम जुझेला थाना शिवाला कला बिजनौर से। लिखने वाले हैं राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशा, आयशा, आलिया, सायना, महवेश, मोहम्मद अफान और

0: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत तुम्हारे, जो कि आपके व्हाट्सएप मैसेजेस की फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम है। हमारे नए जुड़ने वाले श्रोताओं को हम अपना नंबर बता दें, 9457078288। जो श्रोता हमसे अभी जुड़े हैं वो इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी पसंद और अपने नाम के साथ में। और इस कार्यक्रम में श्रोताओं, हमने लिया है अगला गीत फिल्म चांदनी से, लता मंगेशकर और बावला मेहता की आवाजों में, बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत शिव हरि का। और इस गीत को सुनने के लिए हमें मिली है फरमाइश ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और इनके पूरे परिवार की ओर से।
1: इसी गीत के लिए हमारे पास ये मैसेज आया है साहिबाबाद जिला गाजियाबाद से, विजय वर्मा, मंजू वर्मा, अर्पित और वैष्णवी वर्मा।
0: वर्डिंग खेड़ा पंजाब से फरमाइश करता है मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा।
1: इसी गीत को सुनना चाहा है मोहल्ला धर्मदास चौक बाजार नजीबाबाद जिला बिजनौर से, रूपा वर्मा, तनु वर्मा, विशाल, आराध्या, अगम्य, शिवांश, सुरेंद्र वर्मा, प्रभा वर्मा, पूजा, स्वाति, तुषार और युवराज वर्मा।
0: उत्तम नगर दिल्ली से सुनना चाहते हैं इस गीत को कमला रानी, मोहनराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश।
1: और इसी गीत को सुनना चाहा है पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, बेगम शबनम नाज, असमा नाज अंसारी और बेगम प्रमिला जाटव।
0: जेल रोड बक्सर से राज अंसारी, शिल्पी राज, उमा राज।
1: इंदिरा बिहार दिल्ली से वसीम अंसारी, बेबी अंसारी और यामिनी राज।
0: जेल रोड रायगढ़ से नरेंद्र यादव, महेंद्र और जानवी यादव।
1: इसी गीत के लिए हमारे पास ये मैसेज आया है लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली, युवान और आर के राजा।
0: अगले फरमाइश करता है गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से, फरमाइश करता है राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन कौर और इनके परिवार के सभी सदस्य। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मैसेज मिला है मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, सास्ता रानी, हीना कौसर की ओर से। और
1: जिला अमरोहा नई बस्ती फतेही खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, बिटिया अलीशा सिद्दीकी, शकील, फहीम और मोहम्मद यासीन अंसारी इसी गीत को सुनना चाहते हैं।
0: और अगली फरमाइश है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती गौरी और शिवानी सुरलकर की ओर से।
1: तो चलिए श्रोताओ, आप सभी की पसंद पर सुनते हैं लता मंगेशकर और बाबला मेहता के युगल स्वर में फिल्म चांदनी का ये प्यारा सा गीत।

0: और श्रोताओं, हम बढ़ चले हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत की ओर, जिसे हमने लिया है फिल्म लावारिस से। आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की। इस गीत को सुनना चाहा है ग्राम फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी ने। इसी गीत को सुनना चाहा है
1: बक्सर बिहार से, और नहीं, ये अगला मैसेज है आकोट से, विनायक बैंडे, श्रीमती मंगला बैंडे, विजय शुभम बैंडे, पवन जरिए, संजीव डाबेराव की ओर से।
0: इसी गीत को सुनना चाहा है पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सांबले, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश ने।
1: सुनना चाहते हैं इसी गीत को जेल रोड नजीबाबाद से राधिका जाटा, प्रभा रानी जटोलिया, शहर दिल्ली से मनमोहन चुग, मीठी और खट्टी चुग, डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, राज अंसारी और फातिमा नाज अंसारी, पदमपुर जिला श्री गंगा नगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा।
0: इसी गीत को सुनना चाहते हैं और हमें ये मैसेज किया है शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप, संजय सोनी, अरुण कंजोनिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रंजन, रजक, लालू, सोना, मोना, हनी, यस और उनके मम्मी पापा। अगला मैसेज हमारे पास आया है
1: कस्बा उगहती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज गुप्ता, पंकज गुप्ता, प्रिंस कुमार, प्रशांत गुप्ता, कार्तिकेय की ओर से।
0: इसी गीत को सुनना चाहा है ग्राम हीरावाली फजिलका पंजाब से, लिखने वाले हैं सुभाष गोदारा, बिमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं।
1: कनेरा मोहल्ला पटियाला से हमें फरमाइश मिली है मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका की और वंश बत्ता की ओर से।
0: इसी गीत को सुनना चाहा है आर्यनगर कोहका भिलाई से, लिखने वाले हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष और इनके नंदनी जंघेल।
1: गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से फरमाइश आई है राधेश्याम शर्मा, इंद्रा शर्मा, सार्थक शर्मा की।
0: इसी गीत को सुनना चाहे पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू और गुड्डू। और ये मैसेज हमारे पास आया है
1: कस्बा रेहड़ जिला बिजनौर से बादशाह फरीदी की ओर से।
0: ये मैसेज हमारे पास आया है मोहल्ला बारादरी से, लिखने वाले हैं महमूद खां रामपुर से, भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, बहन फिरोजा, मुस्कान और अफसर अली, इन्हीं के साथ इस गीत को सुनना चाहते हैं नगमा नाज मंसूरी। तो आइए श्रोताओं, इन सभी की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, जिसे हमने लिया है किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वर में। फिल्म का नाम है लावारिस।

0: तो श्रोताओं, लावारिस फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत तुम्हारे अब यहीं पर संपन्न करने की मुझे यानी रविकांत वर्मा को दीजिए अनुमति, और कार्यक्रम में आगे आपके साथ बने रहेंगी शिवा शुक्ला जी।
1: अभी आप सुन रहे थे पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे है, श्रोताओं प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: अभी आप सुन रही थी सोनू निगम और श्रेया घोषाल की युगल आवाजों में फिल्म मैं हूं ना का ये गीत। गीत के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने और संगीत बनाया था अनु मलिक ने।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: श्रोताओ आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म दिलवाले से। बोल हैं समीर के और धुन नदीम श्रवण की।

आइए श्रोताओं, सुनते हैं ये अगला गीत फिल्म बागवान से। गायक कलाकार हैं उदित नारायण और अलका याग्निक। शब्द रचना समीर की है और धुन बनाई है आदेश श्रीवास्तव ने।

अभी आपने सुना फिल्म नायक का ये गीत, आवाजें थी शंकर महादेवन और अलका याग्निक की, बोल थे आनंद बख्शी के और धुन ए आर रहमान की। श्रोता आप सुन रही हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज दिन में 12:05 पर कार्यक्रम रहेगा जिंदगी लाइव, जो कि कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित कार्यक्रम है। श्रोता इस कार्यक्रम में आप भेज सकते हैं हमें अपनी मैसेजेस। आज के इस कार्यक्रम का विषय रहेगा बच्चे गर्मियों की छुट्टियों का कैसे करें उपयोग। आपके पास जो सुझाव हों, कुछ उपाय हों, या किस तरह से बच्चे उपयोग कर रहे हैं आपके घर के, इस बारे में हमें लिख भेजिएगा आप अपने व्हाट्सएप मैसेजेस पर। और हम बता दें अपने श्रोताओं को कि इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9457078288। नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 9457078288। तो ज़रूर इस कार्यक्रम में आप अपने मैसेजेस भेजिए, हमें रहेगा इंतज़ार, क्योंकि कार्यक्रम है हमारी और आपकी ज़िंदगी से जुड़ा, जिंदगी लाइव। समय याद रखिएगा आज दिन में 12:05 पर। इस वक्त आप सुन रही हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से कार्यक्रम चित्रपट संगीत, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म आज का अर्जुन सिंह। आवाजें लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की हैं, बोल अनजान के और संगीत बप्पी लहरी का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म है कभी हाँ कभी ना। बोल हैं मजरू सुल्तानपुरी के, संगीत जतिन ललित का और गायक कलाकार हैं कुमार सानू और अलका याग्निक।

श्रोताओं, कार्यक्रम की अगली पेशकश उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में फिल्म दिल से है। गीतकार हैं समीर और संगीतकार आनंद मिलिंद।

श्रोताओं, अभी आपने सुना ये गीत फिल्म यस बॉस से। गायक कलाकार थे अभिजीत और अलका याग्निक। आइए आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत जो हमने लिया है फिल्म टू स्टेट से। गायक कलाकार हैं अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

श्रोताओं, आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती और रात्रि 10 बजे सुनिएगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज शाम 7:32 पर सुनिएगा सुनील मुखर्जी के गाए भजन।

फिल्म संगीत का कंपेयर्ड कार्यक्रम जिंदगी लाइव का समय रहेगा अब से कुछ ही देर में यानी 12:05 पर। श्रोताओं, लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में आज दिन में 1:45 पर सुनिएगा सुभाष पांडे के गाए गढ़वाली लोकगीत।

रिश्ता ये खास है। आकाशवाणी के 90 सालों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आज शाम 5 बजे।

आज शाम 6:05 पर हमारे किसान भाई सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत, जिसमें आप सुनेंगे सूक्ष्म पोषक तत्वों का महत्व विषय पर चर्चा। साथ ही हमारे किसान भाई सुनेंगे लोकगीतों व रागनियों का फरमाइशी सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी।

बहनें सुनेंगी कार्यक्रम महिला जगत दिन में 1:15 पर, जिसके अंतर्गत चर्चा की जाएगी स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ समाज विषय पर। साथ ही आधी आबादी क्रम में आप सुनेंगे विजेता त्यागी से प्रियंका त्यागी की बातचीत। बातचीत का विषय रहेगा मेरी पाकशाला। और साथ ही सुनेंगे आप फिल्म संगीत और वैज्ञानिक डॉक्टर टेसी थॉमस के बारे में।

श्रोताओं, आज दिन में 2:30 पर एक ही गीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में गीतकार राजेंद्र कृष्ण के गीत। युवा श्रोता सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम युववाणी आज शाम 5:25 पर। और विविधा कार्यक्रम में शाम 6:45 पर आपको सुनवाएंगे संतोष सिंह नेगी से रेणु कोटनाला की बातचीत। बातचीत का विषय रहेगा 90 साल बेमिसाल रेडियो प्रसारण के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में। ये विशेष भेंटवार्ता है श्रोताओं, जो आप सुनेंगे विविधा कार्यक्रम में आज शाम 6:45 पर। तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम जिंदगी लाइव। नमस्कार, प्रणाम मेरे सभी श्रोताओं को। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आपकी होस्ट शिवा शुक्ला। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके इस पसंदीदा शो में जो है कार्यक्रम जिंदगी लाइव। श्रोताओं, बाहर सूरज देवता अपनी पूरी रंगत में है, पारा चढ़ रहा है दिन पर दिन, और इसके साथ ही हमारे घरों में नन्हे मुन्ने बच्चों का शोर शरारत और खिलखिलाहट का पारा भी हाई है ना, क्योंकि स्कूल बंद हो चुके हैं और बच्चों की चल रही हैं गर्मियों की छुट्टियां। तो सवाल ये उठता है कि इन छुट्टियों में बच्चे दिन भर सिर्फ टीवी मोबाइल या वीडियो गेम्स में ही खोए रहें, बल्कि कुछ ऐसा भी करें जिससे उनका हुनर निखर कर आए उनका हुनर। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में श्रोताओं, हमारा टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है कि बच्चे गर्मियों की छुट्टियों का सही और रचनात्मक उपयोग कैसे करें। आप अपने सुझाव, अपने विचार और अपने घर के नुस्खे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9457078288 पर मैसेज करके साझा कर सकते हैं। आपके मैसेजेस इस कार्यक्रम में श्रोताओं में लाइव पढ़ूंगी। लेकिन चलिए, इस गर्मा गर्म दोपहर में ठंडक घोलने के लिए सुनते हैं बच्चों की प्यारी सी आवाज में ये पहला गीत।

गीत के बाद फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम जिंदगी लाइव में। श्रोताओं, जिंदगी लाइव का मतलब ही है जिंदगी के हर रंग को खुलकर जीना, मुस्कुराना और हर मौसम का स्वागत करना। बाहर सूरज ज्यादा भले ही थोड़े कड़क मिजाज में है, लेकिन हमारे घरों में छुट्टियों की जो रौनक है उसने माहौल को बिल्कुल गुलजार कर दिया है। जी हाँ, स्कूल की घंटियां कुछ दिनों के लिए खामोश हैं और बच्चों की शरारतों का वॉल्यूम फुल है। तो जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा कि जिंदगी लाइफ में हमारा आज का जो टॉपिक है वो यही है कि बच्चे गर्मियों की छुट्टियों का सही, रचनात्मक और मजेदार उपयोग कैसे करें। आप अपने घर के अनुभव, बच्चों की एक्टिविटीज और मजेदार सुझाव हमारे व्हाट्सएप नंबर पर साझा कर सकते हैं। और हमारे नंबर जो हमारा व्हाट्सएप का इनबॉक्स है वो खुल चुका है, श्रोताओं और संदेश आने भी शुरू हो गए हैं। चलिए तो लेते हैं हम अपने कार्यक्रम का ये पहला संदेश जो हमें मिला है जिला हरिद्वार से मदन गिरी की ओर से। वो लिखते हैं कि नमस्कार, आपने अच्छा विषय चुना, बच्चे गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें।

वैसे तो हर बच्चा ये चाहता है कि वो इन छुट्टियों में मौज मस्ती करे, शिमला जाए या नैनीताल जाए, मसूरी जाए, देहरादून जाए, उसकी यही इच्छा होती है। लेकिन अभिभावकों का ये कर्तव्य बनता है कि वो इन छुट्टियों में बच्चों की पढ़ाई का भी ध्यान रखें, घूमने फिरने भी जाएं। छुट्टियों में बच्चों का ये हक भी बनता है, लेकिन पढ़ाई के लिए कुछ समय ज़रूर निकालें और एक टाइम टेबल बनाएं कि हमें इस समय खेलना है, कूदना है और पढ़ाई करनी है। बहुत ही अच्छी बात कही आपने मदन गिरी जी कि छुट्टियों का आनंद तो लेना ही है, लेकिन साथ ही साथ बच्चों को एक टाइम टेबल से भी चलना है और नियम से चलेंगे तो हर काम पूरा हो जाएगा, मस्ती भी रहेगी और जो छुट्टियों में बच्चों को काम मिले हैं वो भी हो जाएंगे। अगला मैसेज हमें भेजा है जिला मुरादाबाद, गांव दूल्हापुर, उत्तर प्रदेश से। ये लिखते हैं मोहम्मद फरहान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून की ओर से ये मैसेज आया है। लिख रहे हैं कि बहुत ही गर्मी हो रही है, इस समय सभी बच्चों से यही कहूंगा कि अपना ध्यान रखें, घर से बाहर ना निकलें, अगर बाहर निकलें तो ज़रूरत पड़ने पर ही निकलें और अपने माता पिता का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी देखभाल भी करें और साथ में अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखें। ये नहीं कि मोबाइल उठा के मोबाइल देख लिया, टीवी देख लिया या खेलने चले गए, ऐसा ना करें, अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दें। इन्होंने भी बहुत ही प्यारा सा संदेश दिया है, साथ ही इन्होंने कहा कि अपने जो घर में माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान करें। बिल्कुल, जैसे छुट्टियों का समय है तो बच्चे अपने परिवार के साथ रहते हैं, अपने माता पिता के साथ अधिक समय बिताते हैं और यही समय है कि उनके अंदर संस्कारों का भी विकास शुरू से ही होता रहे, वो देखें कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं हमें उनका भी ख्याल रखना है। और ये अगला मैसेज है जिला मुरादाबाद, गांव दूल्हापुर, उत्तर प्रदेश से। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह की ओर से ये लिखते हैं कि छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं देना है, उन्हें बाहर घूमने ले जाना है, घर बैठकर पुराने किस्से सुनाए, समय पर पढ़ने को भी कहें, हरी सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा खाने को दें। इन्होंने खान पीन की बात करी कि हरी सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा खाने को दें, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जो हमारे घर में बच्चे होते हैं ना, वो ऐसी चीज़ों को कम पसंद करते हैं कि सब्जियां क्यों दे रहे हैं या कुछ भी घर का बनाया हुआ, क्योंकि बच्चे अभी मासूम हैं, वो नहीं जानते कि हमारे लिए क्या चीज़ उपयोगी है। तो यही वो समय है कि जब हम बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, छुट्टियाँ हैं, तो उन्हें खाने का, घर के खाने की चीज़ों का क्या फ़ायदा है वो बताएं। और जैसा कि गर्मी बहुत है तो ऐसे में अगर बच्चे फास्ट फूड का प्रयोग करते हैं या हम लोग बड़े ही करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि गर्मी के मौसम में ये चीज़ें डाइजेस्टिव नहीं होती, हमारी पाचन क्रिया को भी प्रभावित करती हैं। तो थोड़ा सा हम खाने का में अगर कुछ स्पेशल भी बना रहे हैं तो घर में ही बना कर खाएं तो और भी अच्छा रहेगा। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं जिंदगी लाइव आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से और मैं हूं आपके साथ शिवा शुक्ला। लगातार आपके मैसेजेस आ रहे हैं और जो श्रोता हमारे साथ नए जुड़े हैं उन्हें भी मैं बताना चाहूंगी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, जो हमारा नंबर है वो है श्रोताओं 9457078288। हमें इंतज़ार है आपके मैसेजेस का और आपके सुझावों का, और आप क्या कर रहे हैं अपने घर में, जो आपके बच्चे हैं उनकी छुट्टियों को किस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं, इस विषय पर आपके क्या विचार हैं, वो हम आपके विचार इस कार्यक्रम में साझा करते रहेंगे। और साथ ही सुनवाते हैं आपको ये अगला गीत जो हमने लिया है फिल्म मासूम से।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: संदेश के बाद फिर से स्वागत है श्रोताओं आप सभी का कार्यक्रम जिंदगी लाइव में। हमारे व्हाट्सएप इनबॉक्स में मैसेजेस आ रहे हैं लगातार, और ये मैसेज मिला है हमें सुनीता जी का। वो लिख रही हैं कि मैंने अपने बच्चों को इस बार समर कैंप में डाला है जहां वो पेंटिंग और स्केटिंग सीख रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि पेंटिंग सीख रहे हैं, और हमें भी ये लगता है कि शारीरिक और मानसिक विकास बच्चों का दोनों साथ साथ तभी होता है जब वे इन एक्टिविटीज़ में भी शामिल होते हैं। क्योंकि जब पेंटिंग करता है बच्चा, ड्राइंग बनाता है, तो एक नई तरह का उत्साह, एनर्जी उसके मन में आती है। साथ ही साथ वो जब पेंटिंग प्रकृति से जुड़ी अगर बनाता है तो एक जुड़ाव हो जाता है आसपास के वातावरण से भी, और बच्चों में आपस में जब बैठकर ग्रुप में इस तरह एक्टिविटीज़ में जाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अगला मैसेज आया है हमें ये मुरादाबाद से लिखने वाले हैं रमेश। लिखते हैं कि बच्चों को इस समय अपनी दादा दादी नानी के घर भेजना चाहिए। ये लिख रहे हैं कि दादी नानी के घर भेजना चाहिए ताकि वो अपनी संस्कृति और पारिवारिक रिश्तों को करीब से समझ सकें। बहुत ही अच्छी बात कही आपने, और

पुरानी यादें ताज़ा करती हैं। जब हम भी छोटे थे तो अपनी नानी के घर हम जाया करते थे और ज़िद करा करते थे छुट्टियां शुरू होने से पहले ही कि जल्दी से जल्दी अपना बैग लगाएं और घूमने निकल जाएं, क्योंकि जो छुट्टियों का असली मज़ा है श्रोताओं, वो ननिहाल दादीहाल अपने दादी के घर जाने में और नानी के घर जाने में ही असली मज़ा आता है। और भी श्रोताओं, हम आपसे कहेंगे कि अपने आप सुझाव भेजते रहिए, तब तक आनंद लेते हैं किशोरदा की आवाज़ में इस सदाबहार समर स्पेशल गीत का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी लाइव आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।

श्रोताओं, हमें अगला मैसेज मिला है विलेज एंड पोस्ट राहु नगली आचार्य सत्यवीर सिंह अलका चौहान अक्षय चौहान भूमिका चौहान राघव चौहान की ओर से। ये लिखते हैं, नमस्कार। गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे अपने टैलेंट को निखारने का काम कर सकते हैं, अपना हॉलीडे होमवर्क करें, इंडोर गेम्स कैरम बोर्ड चेस खेल सकते हैं, ड्राइंग पेंटिंग्स बना सकते हैं, जिनके यहाँ बाग या बगीचा है उसकी देखभाल कर सकते हैं, जैसे पेड़ पौधों को पानी देना। और साथ ही साथ इन्होंने एक दिनचर्या भी बना कर दी है कि बच्चे इसको फॉलो कर सकते हैं कि सुबह 6 बजे वे उठ जाएं, अपना दैनिक कार्य करें और 6:30 बजे योगासन करें, फिर जलपान करें, फिर हॉलीडे होमवर्क करें, 11 बजे चेस खेलें और 12 बजे लंच लेकर 1 से 4 बजे तक रेस्ट करें, 4 से 5 तक फिर से कैरम खेलें और 5 बजे हल्का फुल्का जलपान लेकर 5:30 बजे से 7 बजे तक आउटडोर गेम्स में रहें और फिर अपना रात का 8 बजे भोजन वगैरह करके स्टडी करके सो जाएं। बहुत ही अच्छा इन्होंने सुझाव दिया बच्चों को कि एक टाइम टेबल बनाकर, एक दिनचर्या बनाकर अपनी छुट्टियों को ये पूरा करें बच्चे। और ये अगला मैसेज है उत्तम नगर दिल्ली से, लेकिन इन्होंने कोई सुझाव कोई संदेश इस कार्यक्रम में अभी नहीं लिखा, तो हम कहना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम है श्रोताओं जिंदगी लाइव और आज हम बातचीत कर रहे हैं कि गर्मियों की छुट्टियों का बच्चे कैसे करें उपयोग। इस विषय पर हमारा जो आज का ये बातचीत का विषय है, हम बातें कर रहे हैं और आप साथ ही साथ शामिल कर रहे हैं आपके मैसेजेस को। और इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए श्रोताओं, आप कर सकते हैं हमें व्हाट्सएप मैसेज, नंबर है 9457078288। हम कर रहे हैं आपके मैसेजेस का इंतजार और तब तक सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत फिल्म मासूम से, आवाज आदित्य नारायण की है।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी लाइव। आप जुड़े हैं आकाशवाणी नजीबाबाद के साथ। इस कार्यक्रम में हमें अगला मैसेज मिला है नगीना से अनिल विनोचा का। ये लिखते हैं कि बच्चे तो सबसे पहले मौज मस्ती के लिए नानी के घर जाना पसंद करते हैं। वहां वो राजा होते हैं। एक डिमांड पर मामा हर फरमाइश पूरी करते हैं। ये समय आउटिंग का भी है, नेचर का आनंद भी लेना चाहिए जिससे माइंड फ्रेश होता है, बॉडी के सारे सेल नए हो जाते हैं, माइंड भी अच्छा रहता है, हेल्थ गेन करता है बच्चा, जो कि ज़रूरी है। पेंटिंग्स करें, बागवानी करें, साइकिल भी सीखें, पर्यावरण के बारे में सीखें, गेम भी खेलें, चाहे आउटडोर हो या इंडोर हो, अपनी रुचि को भी पूरा करें जिससे बॉडी को नई ऊर्जा मिले। फिजिकल फिटनेस पर टिप्स लें, समय का मैनेज करना सीखें, होमवर्क स्कूल से मिला है उसे भी थोड़ा समय निकालकर पूरा करें, कोई दूसरी भाषा भी सीखें, अपनी एज के हिसाब से अपनी गतिविधियों को साकार करें और आगे बढ़ें, बड़ों का सम्मान और अपनी संस्कृति को जानें, मर्यादा में जीने के गुण सीखें, बाकी एंजॉय करें, मस्त रहें और इन हॉलीडेज में मस्ती जरूर करें। बस बहुत ही अच्छी बातें इन्होंने हमें लिखी, अनिल विनोचा ने। साथ ही साथ बच्चों के लिए संदेश भी था और उनकी जो समर वैकेशंस चल रही हैं उनमें मस्ती करने के लिए भी बात इन्होंने करी। अगला मैसेज है जिला बिजनौर ग्राम अथाई जमरुद्दीन से, अमीर हसन, समीर हसन और कमर हसन की ओर से। ये भी लिखते हैं कि बच्चे अपनी रीडिंग स्किल्स को सुधारें,

और कुछ जैसे कहानियों की किताबें होती हैं, पंचतंत्र, प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह है, और भी कई चीजें हैं, उन्हें भी पढ़ें जिससे वो सामाजिक तौर पर जो समाज से भी जुड़ते हैं और उनमें जो पढ़ने की आदत है वो भी सुधरती है। बिल्कुल श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी आगे भी हम मैसेजेस लेंगे जो हमें लगातार मिल रहे हैं, लेकिन सुन लेते हैं ये गीत फिल्म रंग दे बसंती से।

श्रोताओं, हमें मैसेज मिला है शाही मार्केट सिहारा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी बेगम रिहाना चौधरी की ओर से। ये लिखते हैं कि काम ऐसा करो जो दुनिया को अच्छा लगे, बुरे काम नहीं जो बच्चों को कोई बुरा कहे। गर्मियों का महीना चल रहा है, परिंदों को पानी रखें, उनका ख्याल रखें, दाना डालें और अच्छे काम करते रहें। बहुत ही अच्छा संदेश इन्होंने दिया। अगला मैसेज है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से। लिखने वाले हैं मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हीना कौसर। ये भी लिखते हैं कि गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, साथ ही साथ संदेश दे रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं जो छुट्टियों का आनंद तो ले रहे हैं, आकाशवाणी के कार्यक्रम भी

सुन रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये कहते हैं कि अपने बड़ों का कहना माने। जी हाँ, पहले भी हमने ये बात कही, अपने बड़ों का सम्मान करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है बच्चों। पढ़ाई तो हमारे जीवन में हमें आगे लेकर जाती ही है, लेकिन जो हमारे संस्कार हैं वो हमें जीवन में सफलता दिलाती है। और इतनी ही प्यारे से संदेश के साथ कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं श्रोताओं। और जैसे कि गर्मी चल रही है, तो क्यों ना कुछ गर्मी का ही एक गीत हो जाए जेठ की दोपहरी में। और आवाज़ें हैं पूर्णिमा कुमार सानू की, फिल्म है कुली नंबर 1।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो जिंदगी लाइफ। हमारे व्हाट्सएप इनबॉक्स में ये अगला मैसेज आया है। गोरखपुर से लिखने वाली हैं सीमा रॉय। वो लिखती हैं कि इस बार छुट्टियों में मैंने अपने बच्चों को एक बहुत ही संवेदनशील काम सिखाया है। वो रोज सुबह और शाम को छत पर मिट्टी के बर्तनों में बेजुबान पक्षियों के लिए दाना और पानी रखते हैं। वाह सीमा जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात, अपने बच्चों को में आप संस्कार डाल रही हैं। बच्चों में करुणा और दया के भाव जगाने का ये जो आपका तरीका है, काफी काबिले तारीफ है। आपकी इस बात से मुझे हमारे बचपन की वो दोपहरें याद दिला दी, जब हम आंगन में चिड़ियों की चहचहाहट सुना करते थे। चलिए इसी सुंदर सोच के साथ सुनते हैं ये अगला गीत, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। बच्चों का ये ऑल टाइम फेवरेट और सदाबहार गीत है। फिल्म है अब दिल्ली दूर नहीं।

0: भी आया छुन छुन करती आई चिड़िया।
1: श्रोताओं स्वागत है आपका इस गीत के बाद कार्यक्रम जिंदगी लाइफ में। हमें मैसेज मिला है अगला मोहल्ला अफगानान शेरकोट से, नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी और अब्दुल गनी की ओर से ये लिखते हैं कि बच्चों की आजकल छुट्टियां चल रही हैं, मैं कहना चाहूँगा कि

मोबाइल कम से कम देखें और दूसरे खेलों में ज़्यादा ध्यान दें। अपना घर से बाहर अपने घर से बाहर कम निकलें। गर्मी आजकल बहुत हो रही है, मौसम बदल रहा है। सभी गार्जियन से कहना चाहूँगा कि बच्चों को बाहर कम से कम निकालें, बच्चों का ध्यान रखें। बहुत ही अच्छी बात आपने कही। और अगला मैसेज है लखनऊ से, लिखने वाले हैं आलोक। ये लिखते हैं कि छुट्टियों का मतलब सिर्फ घर में बैठना नहीं है, मैं इस वीकेंड अपने बच्चों को प्रकृति के करीब ले जाने के लिए एक छोटी सी रोड ट्रिप पर जा रहा हूँ, जहाँ वो पहाड़ों और पेड़ों को करीब से देख सकें। बिल्कुल आलोक जी, छुट्टियों में नई जगहों को खोजना और सफर का आनंद लेना बच्चों के मानसिक विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये अगला मैसेज है बरेली से, लिखने वाली है मीनू। ये लिखती हैं कि दोपहर की इस भयंकर गर्मी और उमस से तो हम बड़े ही परेशान हो जाते हैं, ऐसे में बच्चों को घर में संभालना किसी चुनौती से कम नहीं है। मैं तो बस यही दुआ कर रही हूँ कि जल्दी से थोड़ी सी बारिश हो जाए ताकि मौसम सुहाना हो। बिल्कुल मीनू जी, आपकी बात से हर माँ इत्तेफाक रखेगी रखती होगी। इस कड़कती हुई धूप में हम सबको बस पहली बारिश की फुहारों का ही इंतजार रहता है। हालांकि बारिश हो गई है एक दो, लेकिन फिर भी जब गर्मी होती है तो यही होता है कि इस उमस से हमें छुटकारा मिले, फटाफट से हल्की फुल्की बारिश हो जाए। और बिल्कुल हम भी इंतजार कर रहे हैं, और आपके इस इंतजार को इस गीत से थोड़ा सा चलते हैं हल्का, मतलब आपकी जो इंतजार है बारिश का वो तो समय पर ही होगा, लेकिन थोड़ी सी ठंडक डाल देते हैं इस सदाबहार और सुपर हिट नगमे को सुनवाकर, जो हमने लिया है फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से, स्वर है लता मंगेशकर का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम जिंदगी लाइव। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। दिन के 1 बजने को हैं, कुछ ही पलों में श्रोताओं दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज स्लोवेनिया के नवनियुक्त विदेश मंत्री टॉन काजर को बधाई दी और उनके साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। पूर्व राजनयिक टॉन काजर ने स्लोवेनिया में प्रधानमंत्री जिनेश जानशा के नेतृत्व वाली नवगठित दक्षिणपंथी गठबंधन सरकार में आधिकारिक तौर पर शपथ ली। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन का हिस्सा होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। भारत अमेरिका सेना के अधिकारियों की वार्ता को 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीतिक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमांड जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वोवेल ने की।

अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल में आज भारतीय आम के प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रमुख भारतीय फल आयातकों ने हिस्सा लिया। इसमें महाराष्ट्र के अल्फांसो और केसर, आंध्र प्रदेश के बंगनपल्ली और हिमायत, उत्तर प्रदेश के लंगड़ा दशहरी और गुजरात के पके राजपुरी आम शामिल हैं। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों की का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही पूरा नहीं करता, बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पिछले वर्ष जुलाई में सिएटल में भारतीय आम की शुरुआत की थी। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत हमारी सभी श्रोता बहनों का कार्यक्रम महिला जगत में जानकारी और मनोरंजन के साथ। और बहनों, आज मैं हूँ आपका साथ देने के लिए आपकी रेडियो सखी प्रियंका त्यागी। बहनों, आज है शनिवार और इस दिन होता है कुछ ना कुछ खास। और आज खास है हमारा क्रम मेरी पाकशाला, जिसमें हमारी बहनें सुनेंगी समर स्पेशल रेसिपीज, जो आधारित रहेगा स्थल रिकॉर्डिंग पर। तो बहनों, कार्यक्रम में बनी रहेगा हमारे साथ अंत तक। अब देखिए बहनों, अच्छा भोजन, स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ जीवन शैली, ये सभी कारक मिलकर हमें एक स्वस्थ जीवन देते हैं। हमारा मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य बहुत कुछ हमारे आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है। शुद्ध हवा और हरा भरा वातावरण शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। स्वच्छ पर्यावरण ही स्वस्थ जीवन का आधार है, क्योंकि बहनों, प्रकृति से ही हम सभी को जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन मिलता है, जो कि आज बढ़ते जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण की वजह से शुद्ध नहीं रह गया है और मानव स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। बहनों, स्वच्छ जल और शुद्ध हवा हमारे जीवित रहने के लिए सबसे जरूरी संसाधन है, जिन पर संपूर्ण समाज का जीवन टिका है। और आज बढ़ते औद्योगीकरण, जनसंख्या, रासायनिक खेती, वनों की कटाई, प्लास्टिक का उपयोग जैसे कुछ मुख्य कारण हैं, जिनसे जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है। कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ जैसी स्थिति हो चली है। और बहनों, आप जानती ही हैं कि कहीं अगर ऐसा होता है तो कितनी जनधन की हानि होती है। अगर समय रहते अब भी हमने प्रकृति संतुलन, स्वच्छ पर्यावरण के बारे में सार्थक कदम नहीं उठाए, तो हम कैसे एक स्वस्थ समाज की कल्पना कर सकते हैं? प्राकृतिक वातावरण में संतुलन एक स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करता है। बहन, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण एक निरोगी काया और समृद्ध समाज की पहली आवश्यकता है। तो हम सभी को मिलकर अपने पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त, स्वच्छ, सुंदर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी

0: चंदन का एहसास।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: सभी बहनों का फिर से स्वागत है कार्यक्रम महिला जगत में। और बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है हमारे क्रम आधी आबादी का, जो प्रेजेंट करता है महिलाओं की सशक्त भूमिका समाज और देश के विकास में। बहनों, आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहां महिलाएं अपने कार्य कौशल और बुद्धिमता का परिचय ना दे रही हो। तो बहनों, ऐसी ही हमारे देश की एक सशक्त महिला के बारे में आपसे हम आज जानकारी साझा कर रहे हैं हमारे क्रम आधी आबादी में। तो आइए जानते हैं कौन है हमारी आज की आधी आबादी की नायिका। जिस प्रकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, उसी प्रकार आधी आबादी की शान डॉक्टर टेसी थॉमस को मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया और भारत की अग्निपुत्री कहा जाता है। बहनों, बता दें कि भारत की लगभग 3,500 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि-4 मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद से ही रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की महिला वैज्ञानिक डॉक्टर टेसी थॉमस अग्निपुत्री के नाम से प्रसिद्ध हुई, क्योंकि इन्होंने इसी मिसाइल परियोजना में अग्नि मिसाइल के लगभग सभी संस्करणों को जन्म दिया है। बहनों, हमारे देश की महान वैज्ञानिक डॉक्टर टेसी थॉमस ने विज्ञान और तकनीकी की दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, जिससे हमारे देश की रक्षा क्षमता को काफी मजबूती मिली है। तो बहनों, शुरुआत करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन से। डॉक्टर टेसी थॉमस का जन्म केरल के अल्लापुझा प्रांत में हुआ था। जब डॉक्टर टेसी लगभग 13 वर्ष की थी, तभी इनके पिता को स्ट्रोक आने की वजह से उनके शरीर का एक हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था। इनकी माता, जो कि एक अध्यापिका थी, इस हादसे के बाद परिवार की देखभाल के लिए गृहिणी बन गई। लेकिन बहनों, बहुत सी पारिवारिक समस्याओं के बाद भी इनके माता पिता ने सभी भाई बहनों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। डॉक्टर टेसी थॉमस का बचपन थुम्बा रॉकेट स्टेशन के निकट बीता, जिसकी वजह से मिसाइल प्रोग्राम में उनकी रुचि यहीं से शुरू हुई। बहनों, डॉक्टर टेसी जब स्कूल में पढ़ा करती थी, उन दिनों नासा का अपोलो यान चांद पर उतरने वाला था। वो इससे प्रेरित हो रही थी कि वे भी एक दिन ऐसा एक रॉकेट बनाए जो इसी तरह आसमान की ऊंचाई को छू सके, और उन्होंने अपने इस सपने को हकीकत में बदल कर इतिहास रच दिया। अब बहनों, बात करें इनकी शिक्षा की, तो डॉक्टर टेसी थॉमस ने त्रिचूर इंजीनियरिंग कॉलेज कालीकट केरल से बीटेक किया, और इसके बाद ये एमटेक के लिए पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की प्रवेश परीक्षा पास करने वाले 3 छात्रों में एक थी, और वह भी पहली महिला। इनकी इसी प्रतिभा के कारण इन्हें गाइडेड मिसाइल एंड वेपन टेक्नोलॉजी के विशेष कोर्स के लिए चुना गया, और सन 1985 में राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में प्रथम आकर उन्होंने 21 वर्ष की आयु में ही देश के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान यानी DRDO में कदम रखा, और बहनों, इस क्षेत्र में मात्र पुरुषों के वर्चस्व को भी तोड़ा। तो बहनों, जानते हैं डॉक्टर टेसी थॉमस से DRDO के बारे में।
4: आई जॉइंड DRDO व्हेन इट वाज इन द ट्रांसफॉर्मेटिव फेस ऑफ इंडियाज डिफेंस टेक्नोलॉजीज। वी ऑल स्टार्टेड वर्किंग ड्यूरिंग द टेक्नोलॉजी डेनियल रेजिम वेयर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स टेक्नोलॉजी वॉज नॉट एट ऑल अवेलेबल। सो DRDO इटसेल्फ हैड टू गोइंग थ्रू द इंटीग्रेटेड गाइडेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। The whole 5 missile programs were taken up, and where we were evolving technologies step by step, learning, designing, developing the systems, developing the algorithms. It was a starting phase, and then matured into the development and testing. So it was a journey of full-fledged knowledge, starting from system knowledge to a designer and production part technology know-how and know-why, and reaching to an indigenous capability. And that satisfaction is always there, because from the very beginning of the design to the development phase, learning by ourselves within DRDO and

0: other scientific organization like ISRO and all. Then establishing an expertise in systems was really a breakthrough.
1: बहनों अपनी प्रतिभा मेहनत और लगन के दम पर डॉक्टर टेसी भारत की मिसाइल परियोजना में शामिल हुई। उस समय बहनों डॉक्टर अब्दुल कलाम इस परियोजना का नेतृत्व कर रहे थे। डॉक्टर टेसी डॉक्टर कलाम को अपना गुरु मानती हैं। डॉक्टर टेसी हमेशा डॉक्टर कलाम की प्रतिभा लगन देश प्रेम से हमेशा प्रेरणा लेकर आगे बढ़ती रही। उनके नेतृत्व में मिसाइल परियोजना में डॉक्टर टेसी ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। बहनों अग्नि 4 अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण करना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। भारत के लिए मात्र यह एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी बल्कि देश की सामरिक शक्ति और रक्षा कवच का भी पूरे विश्व को परिचय दिया गया था। एज ए प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर टेसी थॉमस क्या बताती है इस मिशन के बारे में सुनते हैं।
0: ब्रिंगिंग इन द टेक्नोलॉजी व्हेन इट केम टू अग्नि 4 एंड 5 देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल जंप इन टेक्नोलॉजीज व्हिच वाज अर्लियर यूज्ड एज मेटालिक स्टील रॉकेट मोटर केस वी हैड टू टेक इनटू अ कंपोजिट रॉकेट मोटर केसिंग लॉट ऑफ वेट एडवांटेज इट हैज लॉट ऑफ रेंज कैपेबिलिटी एनहांसमेंट सो एडवांस्ड कंपोजिट मटेरियल्स एंड नोइंग द मटेरियल डिजाइनिंग इट That was one part. There is a sea change in the electronics and the avionics structure. If you think about, we started with missile designing with 8086 Intel processors, which was at the time of Agni 4. Those were already obsolete, and we had to switch over to the new technology. Building onboard computers with those technology, the separation stages, all this mattered a lot from raw material itself. Choosing for the new class of missiles, world-class setup made for the Agni 4 and 5. So that is the technological part of movement and re-entry structure also we had to modify because it is getting back to the earth with more velocity and

की स्ट्राइक रेंज 5000 किलोमीटर की मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो हमारे देश के नागरिकों को सुरक्षित रखने में सक्षम है, और इसका श्रेय जाता है डॉक्टर टेसी थॉमस को। अग्नि मिसाइल परियोजना देश की एक बहुत ही बड़ी वैज्ञानिक परियोजना है, जिसमें महिला वैज्ञानिकों की संख्या भी काफी है। बहनों, यह प्रयोगशाला हैदराबाद में एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे संवेदनशील प्रयोगशालाओं में गिनी जाती है। डॉक्टर टेसी एक महान वैज्ञानिक के साथ साथ ही बहुत विनम्र और देश रक्षा में अपना जीवन देने वाली अद्भुत महिला है। देश को सामरिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने वाली मिसाइल वुमेन डॉक्टर टेसी थॉमस को उनके कार्यों के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले, जिनमें वर्ष 2008 में DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, वर्ष 2011 और 2012 में DRDO परफॉर्मेंस एक्सीलेंस अवार्ड, वर्ष 2009 में इंडिया टुडे वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, वर्ष 2012 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार, 2016 में सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया पुरस्कार और वुमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग द्वारा उत्कृष्ट महिला उपलब्धि पुरस्कार शामिल है। हमारे देश को लाभान्वित ही नहीं बल्कि गौरवान्वित कराने वाली मिसाइल वुमेन डॉक्टर टेसी थॉमस हम सभी के लिए प्रेरणा है, एक मिसाल है। बहनों, अभी हम मिसाइल वुमेन डॉक्टर टेसी थॉमस के दृढ़ हौसलों, कठिन परिश्रम और सफलता की कहानी सुन रहे थे हमारे क्रम आधी आबादी में, जो कि हम सभी के लिए प्रेरणा है, एक मिसाल है। और बहनों, कार्यक्रम में विषय को थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि अब हम जा रहे हैं रसोई घर की ओर। जी हाँ बहनों, देखिए बहनों, गर्मियों का मौसम और हमारा खान पान बहुत कुछ हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, और अक्सर आपने सुना भी होगा कि जैसा अन्न वैसा मन। जी हाँ बहनों, जैसा आहार हम लेते हैं और जिस तरह की हमारी जीवन शैली होती है, उसका हमारे मन पर, व्यवहार पर पूरी तरह प्रभाव पड़ता है। और बहनों, जैसे कि अब गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो ऐसे में अगर कार्यक्रम के माध्यम

0: लेकिन केक इस खुशबू का क्या राज है वो तो जानेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हमारी श्रोता बहनें भी आपका परिचय जानना चाह रही होंगी।
1: मैं विजेता बात कर रही हूँ।
0: अच्छा विजेता जी, आपके हमारे क्रम मेरी पाकशाला में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोपहर का टाइम है और आप शायद से लंच बना रही थी, तो क्या स्पेशल बनाया आज आपने?
1: लंच तो मैं बना रही थी, लेकिन आप इतनी गर्मी में चल के आई हैं तो मैं सोची हूँ कि आपको कुछ ठंडा ठंडा पिलाऊं बना
0: अरे
1: के।
0: वाह, ऐसे मौसम में कोई ठंडा ठंडा पीने के लिए दे तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो क्या खास ड्रिंक बनाई है आपने?
1: मैं आपके लिए अब मैंगो लस्सी बनाने जा रही हूँ।
0: तो हम आपके साथ मैंगो लस्सी का स्वाद जरूर लेंगे, लेकिन जो हमारी श्रोता बहनें हैं कार्यक्रम सुन रही हैं, तो क्या आप उनके साथ इसकी रेसिपी शेयर करेंगी?
1: हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं, एकदम क्विक रेसिपी है, कोई भी बनाइए पीजिए।
0: हाँ तो बताइए क्या खास है इस मैंगो लस्सी में?
1: देखिए मैंने 1 कप पका हुआ आम लिया है और 1 कप
0: जी
1: ताजा मीठी वाली गाढ़ी दही ली है और 2-3
0: जी
1: बड़े चम्मच चीनी, आधा चम्मच इलायची पाउडर और थोड़े से बर्फ के टुकड़े। बस पके हुए आम के टुकड़ों को और दही को हम मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और उसमें आइस क्यूब्स डाल देंगे, थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे, चीनी डालेंगे, सारी चीजें मिला के मिक्स कर देंगे, ब्लेंड कर देंगे और बर्फ के टुकड़ों के साथ इनको सर्व करेंगे।
0: अरे वाह, ये तो झटपट बनने वाली रेसिपी है। और देखिए अभी तो मैंने टेस्ट तो नहीं की है, लेकिन लग रहा है कि ये बहुत टेस्टी होने वाली है,
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: जरूर
1: आपको
0: आप।
1: बहुत अच्छी लगेगी, मैं एकदम आपके लिए ये बना के लाती हूँ, फिर आप मुझे बताइए आपको कैसी लगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपके इस ड्रिंक का टेस्ट जरूर करेंगे। लेकिन एक बात बताइए विजेता जी, आज हम आप बात कर रहे हैं समर स्पेशल रेसिपीज की, तो
1: हाँ
0: आपके
1: जी,
0: खाने खजाने में हमारी श्रोता बहनों के लिए और क्या क्या खास रेसिपीज हैं?
1: समर के लिए तो बहुत सारी रेसिपीज है मेरे पास, लेकिन मैं आज आपको एक चीज और टेस्ट कराऊंगी, नींबू पुदीना शरबत, जो बिल्कुल ठंडक देता है इतनी गर्मी में, जैसे आप चल के आई हो तो आपको
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: ठंडक देगा और पी के ना आप एकदम मस्त वाला अनुभव करोगे।
0: अरे वाह वाह विजेता जी, आज दिल
1: जी
0: खुश हो गया आपसे बात करके और आपके घर आकर, तो इसकी भी रेसिपी जानना चाहेंगे हम।
1: हाँ जी, ये भी बहुत इजी है, आपको बस फ्रेश ताजा वो पुदीने के पत्ते चाहिए, एकदम ग्रीन वाले, कोई भी पत्ता गला
0: जी
1: सड़ा नहीं होना चाहिए उसमें, एकदम फ्रेश होने चाहिए सब, और 3-4 बड़े चम्मच नींबू का रस और 4-5 चम्मच चीनी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधा छोटा चम्मच काला नमक, 1 चुटकी सादा नमक और ठंडा पानी, आइस क्यूब,
0: अरे
1: इन
0: वाह,
1: सबको मिला के हम ब्लेंड कर देंगे और फटाफट ठंडा ठंडा सर्व करेंगे।
0: बहुत अच्छा विजेता जी, आपने तो बड़ी ठंडी ठंडी बड़ी अच्छी अच्छी रेसिपीज बना रखी हैं गर्मियों के लिए, और जो हमारी श्रोता बहनें कार्यक्रम सुन रही हैं शायद वो भी जरूर ट्राई करें।
1: हाँ जी बिल्कुल,
0: और देखिए विजेता जी, गर्मियों का सीजन चल रहा है, छुट्टियां चल रही हैं और मेहमानों का आना जाना भी लग ही रहा है आजकल, और देखिए गर्मी में घंटों तक किचन में खड़े होकर काम करना भी बड़ा मुश्किल पड़ता है इन दिनों, तो क्या
1: हाँ
0: कुछ
1: जी
0: ऐसी क्विक रेसिपीज हैं जो हम गेस्ट के लिए भी सर्व कर सकते हैं?
1: हाँ जी बिल्कुल है, आप बताइए, आप मैं आपको बताऊँ मेथड उसको कैसे बना सकते हैं आप।
0: हाँ हाँ बिल्कुल।
1: देखिए, या तो जैसे हमारे पास राइस बच जाते हैं ना, जैसे हमने बनाए दाल चावल और राइस बच गए, हम उनको भी यूज कर सकते हैं, राइस नहीं है तो हम अपना फटाफट से फ्रेश भी बना सकते हैं राइस, अगर आपके पास बचे रखे हैं तो उनसे भी हम कर्ड राइस बना सकते हैं।
0: अच्छा, तो आप
1: और
0: दही चावल की रेसिपी
1: हाँ
0: बताने
1: जी
0: वाली हैं?
1: हाँ जी हाँ जी, दही चावल की रेसिपी बहुत हेल्दी भी होती है, हमारा वो B12 भी बढ़ाती है और टेस्टी भी लगती है, ठंडक भी देती है, और क्या चाहिए गर्मियों में इससे
0: हाँ
1: बढ़िया।
0: जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो
1: हाँ
0: विजेता
1: जी,
0: जी, इसकी सामग्री के लिए क्या क्या चाहिए और क्या विधि है इसको बनाने की?
1: अच्छा, इसके लिए आपको 1 कप उबले हुए मैश किए हुए थोड़े से चावल चाहिए और ताजा
0: जी
1: और मीठी दही चाहिए आपको 1.5 कप, ठीक है,
0: जी
1: दही आप थोड़ा कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो या आपके जितने फैमिली मेंबर्स हैं आप उस हिसाब से चावल और दही का रेशियो ले सकते हो,
0: जी जी
1: अगर आपको दही ज्यादा खट्टी लग रही है तो थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हो, नमक चाहिए और मेन इसमें तड़का है,
0: तड़के में क्या स्पेशल है?
1: तड़के में इसको आपको सरसों का तेल या देसी घी लेना है, जो आपकी मर्जी हो आप ले लीजिए, सरसों के बीज, साबुत जीरा आधा छोटा चम्मच, 10 से 12 कड़ी पत्ता, हरी मिर्च 2 बारीक कटी हुई, 1 चुटकी हींग और बस ये आप कर दीजिए, और आप चाहें तो इसमें मूंगफली ऐड कर सकते हैं। और आपको
0: जी
1: क्या
0: जी
1: करना है मैं एक और आपको बताती हूँ, अगर आपके पास कोई मिट्टी की हांडी टाइप है ना छोटी, तो आप उसमें ये बनाइए, ये बहुत टेस्टी लगती है, उसमें आप चावल दही फेंटिए मिट्टी की हांडी में और उसमें आप चावल भिगो के रख दीजिए कुछ देर, और उसके बाद आप ये तड़का तैयार करिए और उसमें डाल दीजिए आप बारीक कटा हुआ प्याज टमाटर और ये हरा धनिया भी डाल सकते हैं और उसको
0: जी
1: अच्छे से
0: जी
1: मैश करिए, और आप तड़के में चाहें तो उड़द की दाल भी डाल सकते हैं, सूखी लाल मिर्च डाल दीजिए, जितना अच्छा आपको वो बनाना है तड़का उतना आप बनाइए, मस्त खाइए एकदम गर्मियों में।
0: बहुत बढ़िया विजेता जी, बहुत आनंद आ रहा है आपसे बात करके।

0: अब देखिए वो ये ना कि कई बार जो हम तड़का लगाते हैं तो परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं सबकी अपनी अलग अलग पसंद होती है,
1: हाँ
0: तो हम
1: जी
0: उसमें अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं मतलब कुछ।
1: जी जी जी बिल्कुल, जो आप चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। कुछ लोगों को मूंगफली दाना नहीं पसंद होता तो आप मत डालिए, कुछ लोग कच्चा प्याज नहीं खाते तो आप मत मिक्स करिए दही राइस में कच्चा प्याज। जो
0: जी
1: आपको
0: जी
1: पसंद
0: जी
1: हो आप एक गाजर ग्रेट करके डाल सकते, जैसे
0: हाँ
1: आपको
0: तो ये
1: पसंद हो वैसे कर लीजिए। एकदम
0: जी
1: झटपट
0: जी
1: बनने वाली रेसिपी है और ठंडक देती है, गर्मियों में B12 बढ़ाती है।
0: बहुत अच्छी रेसिपी आपने हमारे साथ साझा की जो कि गर्मियों के लिए बहुत ही उत्तम है। और इसके साथ साथ विजेता जी क्या है आपकी मेरी पाकशाला में?
1: मैं ना आपको एक कच्चे आम की और राइस की एक बहुत अच्छी रेसिपी बताने वाली हूँ, आप सब उसको ट्राई कर सकते हैं।
0: देखिए वैसे भी आम का सीजन है और इन दिनों हम देख रहे हैं कि हमारी बहनें कच्चे आम से ढेरों रेसिपीज, अचार, चटनी सब बना रही हैं, और आप हमें बता रही हैं आम के साथ चावल की रेसिपी। जी तो जानना चाहेंगे।
1: उसके लिए भी आपको पके हुए चावल लेने हैं, अगर आपके पास रखे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उबाल सकती है, उनको ज्यादा टाइम नहीं लगता। और
0: जी
1: एक कच्चा खट्टा आम जिसको आपको छीलने के बाद ग्रेट करना है, कद्दूकस करना है। 3-4 हरी मिर्च लेनी है, 1-2 सूखी लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच राई, 1 चम्मच चना दाल, उड़द दाल, करी पत्ता, आधा कप मूंगफली, अदरक का टुकड़ा, आधा छोटा चम्मच हल्दी, चुटकी भर हींग और 3 बड़े चम्मच तेल। इसमें भी आपको तड़का तैयार करना है। आपको क्या करना है, उबला हुआ
0: जी
1: चावल लेना है और आप जो आम है कच्चा कद्दूकस किया हुआ वो दोनों मिक्स कर लेना है, और उसके बाद आपको ये तड़का बनाना है, और ये चावल और आपको ये कच्चा आम उसमें मिक्स कर देना है तड़के में, और थोड़ी देर उसको पका लेना है।
0: हमारा मैंगो राइस रेडी है, तो
1: हाँ जी, ये हमारा मैंगो राइस रेडी है।
0: इसको हम किसी दाल के साथ खा सकते हैं कि सिंपल
1: जी
0: ऐसे भी
1: जी
0: खा
1: जी
0: सकते
1: देन
0: हैं
1: ऐसे
0: इसको?
1: भी खा सकते हैं हम, दाल के साथ भी खा सकते हैं।
0: विजेता जी सच में आज आपने हमारे क्रम मेरी पाकशाला में गर्मियों से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज हमारे साथ साझा की जो शरीर को ठंडक रखने के साथ साथ ही हेल्दी भी है। तो बहनों आप भी जरूर एक बार ट्राई करें, और अब हम आनंद लेंगे अपनी बहन के साथ मैंगो लस्सी और रिफ्रेशिंग पुदीना लाइम का। विजेता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, इतनी अच्छी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए।
1: जी आपका भी धन्यवाद प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित अभी हम सुन रहे थे क्रम मेरी पाकशाला, जिसमें हमने गर्मियों के लिए खास रेसिपीज को जाना जो कि टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। और बहनों ठंडी ठंडी रेसिपीज सुनकर सच में आनंद ही आ गया, तो क्यों ना अपने इस आनंद को दुगना करें। हमारी बहनें शायद हमारा इशारा समझ ही गई होंगी। बहनों हम बात कर रहे हैं फिल्म संगीत की, तो चलिए बहनों मिलकर आनंद लेते हैं इस गीत का।

बहनों, इसी प्यारे से गीत के साथ अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है। लेकिन बहनों, जाने से पहले हम जानना चाहेंगे कि आपको महिला जगत कार्यक्रम कैसा लगता है। बहनों, अगर आपकी कोई पसंद ना पसंद है, आपके विचार हैं, वो आप हमें पत्रों द्वारा सूचित कर सकती हैं बहनों। और पत्र लिखने के लिए नोट करें हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम महिला जगत, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763। तो बहनों, पत्र जरूर लिखें और संदेश भेजने के लिए नोट कीजिए हमारा मोबाइल नंबर। हमारा मोबाइल नंबर है 9457078288। तो बहनों, जुड़ी रहिएगा हमारे साथ कार्यक्रम महिला जगत में। और इसी कामना के साथ कि हमारी सभी बहनें स्वस्थ रहें, हंसती मुस्कुराती रहें, आज का महिला जगत कार्यक्रम संपन्न करने की प्रियंका त्यागी को दें अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत, ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुभाष पांडे के गाए गढ़वाली लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा में श्रोताओं इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुभाष पांडे के गाए गढ़वाली लोक गीत।

0: परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिल्का मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। RBI ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोग के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी।

0: राज्यपाल के साथ अपनी इस बहु आयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
2: भारत के 3 दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
3: मेट्रो के लिए 3 न्यू ट्रेन, नई जनरेशन की ट्रेन अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
2: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जल टमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
4: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
5: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
2: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारायकाल में अगले दो दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
6: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
2: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने आईपीएल 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति है और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति है। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरत ही नहीं करता, बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई।

0: स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम एक ही गीतकार में। रेडियो की सुरीली तरंगों पर आपके साथ मैं जुड़ी हूँ। श्रोताओं, आज की इस महफिल में जैसा कि आप जानते हैं कार्यक्रम है एक ही गीतकार, तो हम बता दें आपको कि आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज सिनेमा के सबसे बहुमुखी, सबसे धनी और अद्भुत शब्दों के मालिक गीतकार राजेंद्र कृष्ण जी का जन्मदिन है। तो आज का ये सफर उन्हीं के नाम है। श्रोताओं, राजेंद्र कृष्ण जी का जन्म 6 जून को सन 1919 में पंजाब में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है वो जगह। उन्हें शायरी का ऐसा शौक था कि क्लर्क की नौकरी छोड़कर वो मुंबई आ गए और फिर जो इतिहास लिखा वो आज भी गूंजता है। उन्होंने सी रामचंद्र से लेकर आर डी बर्मन जैसे दिग्गजों के साथ काम किया। चलिए उनकी याद में सबसे पहले सुनते हैं साल 1949 की फिल्म पतंगा से उनका वो जादुई गाना जिसने हर आशिक के दिल की घंटी बजा दी थी।
1: हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म पतंगा का ये गीत। गायक कलाकार थे शमशाद बेगम और सी रामचंद्र।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम, डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही गीतकार, और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं गीतकार राजेंद्र कृष्ण के बारे में। श्रोताओं, राजेंद्र कृष्ण जी सिर्फ चुलबुले गाने ही नहीं लिखते थे, बल्कि उनके शब्दों में देश की आत्मा बसती थी। जब 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का निधन हुआ, तब राजेंद्र जी ने रोते हुए एक गीत लिखा था, सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गाए इस गीत के रिकॉर्ड्स उस दौर में हाथों हाथ बिक गए थे। इसके बाद साल 1954 में फिल्म आई नागिन, जिसके गानों ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। मन डोले मेरा तन डोले और मेरा दिल ये पुकारे आजा, जैसे गीतों ने उन्हें कामयाबी के शिखर पर पहुंचा दिया। चलिए मदन मोहन जी के संगीत और गीता दत्त की आवाज में सजा उनका एक और रुमानी और खूबसूरत नगमा सुनते हैं। फिल्म का नाम है भाई भाई और संगीत है मदन मोहन का।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम एक ही गीतकार में। श्रोताओं, राजेंद्र कृष्ण जी के बारे में एक बेहद दिलचस्प बात मैं आपको बताती हूँ। उन्हें हिंदी सिनेमा का सबसे अमीर लेखक कहा जाता है, और इसकी वजह सिर्फ उनकी फिल्मों की फीस नहीं थी, बल्कि उन्होंने 1970 के दशक में घुड़दौड़ में पूरे 46 लाख रुपए का जैकपॉट जीता था, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी। यही नहीं, श्रोताओं, फिल्म पड़ोसन का वो मशहूर कॉमेडी मुकाबला तो आपको याद ही होगा, एक चतुर नार करके सिंगार, इस गाने के कमाल के बोल भी राजेंद्र जी की कलम से ही निकले थे। लेकिन आज उनके जन्मदिन पर चली सुनते हैं वो गाना जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, साल 1965 की फिल्म खानदान से लता जी की आवाज में ये बेहद पवित्र गीत।

श्रोताओं, राजेंद्र कृष्ण जी के लिखे गीत आज भी हमारी खुशियों, हमारी तन्हाइयों और हमारी मोहब्बत का हिस्सा है। श्रोताओं, साल 1953 में एक फिल्म आई थी अनारकली। इस फिल्म में मोहब्बत की वो दास्तान थी जिसे वक्त भी नहीं मिटा सका। जब इस फिल्म के लिए संगीत सम्राट सी रामचंद्र की धुन पर राजेंद्र कृष्ण जी ने कलम उठाई तो इतिहास बन गया। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर जी की जादुई आवाज में ये सदाबहार गीत, ये जिंदगी उसी की है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही गीतकार आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आज हम याद कर रहे हैं इस कार्यक्रम में गीतकार राजेंद्र कृष्ण को। श्रोताओं, राजेंद्र कृष्ण जी ने हिंदी फिल्मों के अलावा मद्रास के एवीएम स्टूडियोज के लिए भी कई फिल्मों की स्क्रिप्ट और संवाद लिखे। यानी वो जितने बेहतरीन कवि थे उतने ही उम्दा स्क्रीन राइटर भी थे। साल 1987 में वो इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनके लिखे गीत आज भी हर पीढ़ी गुनगुनाती है। तो आइए इस कार्यक्रम में चलते चलते किशोर कुमार जी के अभिनय और पंचमदा यानी आर डी बर्मन की संगीत से सजी फिल्म पड़ोसन का एक और बेहद सीधा सच्चा और प्रेम से भरा गीत सुनते हैं, जो आज भी हर आशिक अपनी महबूबा के लिए गाता है।

क्या बात है, इस खूबसूरत गाने के साथ ही श्रोताओं समय हो चला है कार्यक्रम एक ही गीतकार में आपसे विदा लेने का। श्रोताओं, आज हमने राजेंद्र कृष्ण जी की शानदार सफर को याद किया इस कार्यक्रम में और उनके लिखे अमर गीतों का आनंद लिया। फिर से होगी मुलाकात आपके साथ इसी कार्यक्रम में, लेकिन तब तक हम यही कहेंगे कि आप सुनते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, संगीत से जुड़िएगा और साथ ही साथ हमारे आकाशवाणी नजीबाबाद के साथ भी जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए अब ये कार्यक्रम पूरा हो चुका है और अब दीजिए हमें इजाजत। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही गीतकार। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर। दोपहर के 3 बजे हैं। हमारी इस सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

0: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज रहे हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है। कार्यक्रम रिश्ता ये खास है सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को आपकी रेडियो साथी नसरीन जैदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोता, जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो समय के साथ और भी गहरे होते जाते हैं। ऐसा ही एक रिश्ता है आकाशवाणी और उसके श्रोताओं का। पिछले 90 वर्षों से आकाशवाणी केवल आवाजों का माध्यम नहीं रही है, बल्कि भावनाओं, संस्कारों, ज्ञान और मनोरंजन की विश्वसनीय साथी बनी रही है। गांव की चौपालों से लेकर शहरों के घरों तक आकाशवाणी ने देश को एक सूत्र में जोड़ने का महत्वपूर्ण काम किया है। आज तकनीक के इस आधुनिक दौर में भी आकाशवाणी की आत्मीयता और विश्वसनीयता बरकरार है। इसकी आवाज़ में अपनापन है। लोग आज भी अपनी यादों को इससे जोड़े हुए हैं। इसी अपनेपन, प्यार, एहसास और अनुभव को जन जन तक पहुंचाने के लिए आकाशवाणी नजीबाबाद में विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अपने श्रोताओं के अनुभवों को, उनकी यादों को आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो श्रोता, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के इस गौरवपूर्ण अवसर पर हम सुनेंगे अपनी एक श्रोता मेहर बानू, जो कि ग्राम पुरैनी जिला बिजनौर की निवासी हैं। उनकी यादें, उनके अनुभव और भावनाओं को जो वर्षों से आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये विशेष कार्यक्रम और जानते हैं कि श्रोताओं के दिलों में आकाशवाणी का ये रिश्ता आखिर इतना खास क्यों है।
1: आकाशवाणी के सभी पदाधिकारी एवं श्रोताओं को मेरा प्रेम भरा नमस्कार और साथ ही साथ धन्यवाद। मैं ग्राम पुरैनी की निवासी हूँ। मेरा नाम मेहरबानो है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आप सभी को हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। मेरी मनोकामना है कि सदैव आकाशवाणी हर्षोल्लास के साथ सभी प्रोग्रामों को जन जन तक पहुँचाती रहे। ये सच्चे समाचार, शिक्षा, मनोरंजन का केंद्र है। इसकी उज्ज्वलता व उन्नति दिन दुनी रात चौगनी बनी रहे। इसका विकास श्रेय जो है वो माननीय वरिष्ठ पदाधिकारी जी को पहुंचता है। उन्होंने प्रोग्राम में जो जान डाली है वे सराहनीय है। प्रोग्राम में अब मैं अधिकांश सुनती हूँ, जैसे बाल वाटिका, घर संसार, महिला जगत और ये और सभी प्रोग्राम, भजन आदि आते हैं। अभी जैसे प्रोग्राम प्रसारित हुए उसमें गज़ल, कव्वाली, लोकगीत, उसमें कव्वाली जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, बेपनाह पसंद आई। और ये सब प्रोग्राम मैंने जो लाइव सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आकाशवाणी नजीबाबाद के समस्त केंद्रों को और भारतवर्ष के सभी आकाशवाणी केंद्रों मैं बारंबार बधाई देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। एक बार की बात है, को बहुत ही अच्छी बात सुनाते हैं, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। हम उस समय पढ़ती थी, आकाशवाणी नजीबाबाद की स्थापना हुई थी। हम हमारे काफ़ी क्लास फेलो आकाशवाणी घूमने गए, कमाल का उत्साह था, चाहते थे कि दीक्षा हवाई जहाज़ बन जाए। वहाँ पहुँचे, गेट से गुजरते ही सराना साहब मिल गए। बस फिर क्या था, फिर तो हम उनको देख कर बहुत खुश हुए, पूरी बिल्डिंग को खुशी से देखा। वो बस खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि हमने पहली बार अपने यहाँ आकाशवाणी स्थापित हुई देखी। यहाँ और कुछ था नहीं, वो मज़े से घूमे। सडाना साहब ने क्यारी से एक बहुत खूबसूरत गुलाब तोड़ा और फिर क्या था, हम सभी को बारी बारी से वो गुलाब तोड़ते गए और लड़कियों को भेंट करते गए। और जी कैसे क्या पूछिए, खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि पहली बार हमारा स्वागत हुआ। सदैव हम ही सब बड़ों का आदर सब सम्मान करते थे और हमने जो है बहुत ज़्यादा खुश होकर सडाना जी को धन्यवाद किया। और उन्होंने क्या, ओए गज़ब, ये और भी अच्छा लगा। और मैंने अक्सर उनका प्रोग्राम सुना, अब तो वो ज़्यादातर ये बोलती थी। हाँ, इसके साथ ही एक बात मुझे और याद आई, मेरे जो दो छोटे बहन भाई थे ना, जब ये आकाशवाणी का प्रोग्राम शुरू होता था तो उन्हें ये बहुत अच्छा लगता था, चाहते थे कि हमारी आवाज़ बाहर जाए, हम भी आकाशवाणी में कोई प्रोग्राम दें। तो बच्चों का जो प्रोग्राम होता था उस प्रोग्राम में जाते थे। उस ज़माने में इंदू जी और राकेश साहब थे वहाँ पर, वो प्रोग्राम लेते थे तो दोनों सुनते थे। अब मैं अपनी यहाँ रेडियो पे उनकी आवाज़ सुनती थी, और जब कभी ये देखा कि अब हमारे बहन भाइयों की आवाज़ नहीं आई, वो प्रोग्राम में नहीं पहुँचे, तो मुझे बड़ी चिंता होती थी। तो मैं फिर उनके यहाँ अपने चिट्ठी लिख के और उनसे उनकी कुशल मंगल पूछती थी कि बच्चे वहाँ नहीं गए, क्या बात है, घर में खैरियत है, तबीयत तो किसी की ख़राब नहीं है। तो ये सब जो है मुझे आकाशवाणी के प्रोग्राम से ही पता चलता था कि हमारे घर में सब कुशल मंगल है। ये भी एक अजीब सा अनुभव था। और अब भी जो प्रोग्राम होता है उसमें सभी प्रोग्राम हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और इसी बात को कहते हुए आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मेहरबानो जी, आपने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। श्रोताओं की सहभागिता ही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाती है। इसी विश्वास के साथ कि आकाशवाणी आने वाले समय में भी सूचना, शिक्षा, संस्कृति और मनोरंजन का ये उज्जवल सफ़र जारी रखेगी। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए ये प्यारा सा गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:10 होने को हैं। अब आप दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम सुनेंगे।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सरढ़ी पंचायत के सरपंच रामजी भगत के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
3: श्रोताओं नमस्कार। ग्रामीण विकास, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। आपको बता दें, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में जशपुर जिले की सरढ़ी ग्राम पंचायत को स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। आज हमारे साथ हैं श्री रामजी भगत, जो कि सरपंच हैं सरढ़ी ग्राम पंचायत के। भगत जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
4: थैंक यू सर, धन्यवाद आपको।
3: भगत जी, राष्ट्रीय स्तर पर आपको एक पुरस्कार मिला है, जिसकी उपलब्धि आपकी पंचायत को देश भर में एक अलग पहचान दिलाती है। तो जब इस पुरस्कार की घोषणा हुई थी, तब आपके मन में किस तरह की भावनाएं थी, कैसा महसूस हुआ आपको?
4: मैं तो सरपंच हूं, लेकिन मेरे ग्राम और जितने भी हमारे जन प्रतिनिधि हैं, वो भी खुशी के झूम उठे। और मेरे जनपद के अधिकारी, जिले के अधिकारी ने भी इस राष्ट्रीय लेवल का तृतीय स्थान, जो कि हम छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान ग्राम पंचायत सरडी विकासखंड बगीचा जिला जशपुर को मिला, उसके लिए पूरा अधिकारी भी झूम उठे और ग्रामवासी भी और क्षेत्र के समस्त अधिकारी कर्मचारी और जन प्रतिनिधि सभी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस मुकाम पे पहुंचे उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आने

0: इस काम को करना शुरू किया तो वहां पर किस तरह की परिस्थितियां थी, और फिर आपने स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के लिए किस तरह की गतिविधियों को संचालित किया? और ये भी जानना चाहूंगा कि वित्तीय संसाधन या फिर जागरूकता या फिर तकनीक के स्तर पर किस तरह की बातें आपके सामने आ रही थी, कोई कठिनाई थी या सब कुछ सामान्य था?
1: बहुत सारा कठिनाई था, कठिनाई को झेलते हुए। हम लोग के आदिवासी क्षेत्र है, पहाड़ी कुरवा लोग रहते हैं हमारे पास, हमारे गांव में, और जंगल है, पहाड़ है, फिर भी हम लोग जैसे साथ में समूह को मिलाकर हम लोग का जनप्रतिनिधि और महिला समूह सब साथ मिलके मेरा सपोर्ट किए और उनका मैं सपोर्ट लिया और हर मोहल्ला में लोककर सभा किए, बैठे चर्चा किए कि हमको कचरा का भी प्रबंध करना है, मतलब कचरा के इकट्ठा करना है, कहीं नहीं फेंकना है, और कचरा का कलेक्शन के लिए हम लोग महिला स्वर समूह को दिए, और समूह द्वारा प्रत्येक शनिवार को महीने में 4 बार, और हम लोग पूरे गांव जनभागी के द्वारा सहयोग पूरे गांव के हम लोग साफ सफाई करते हैं। और ये चुनौती बहुत ज्यादा थी, लेकिन हमारे सपोर्ट में जनप्रतिनिधि और पूरे जनता भाई मेरे को साथ दिए, इसलिए इस मुकाम तक हम लोग पहुंचे हैं।
0: यानी कचरा प्रबंधन पर आपने काफी बड़े स्तर पर काम किया, लोगों का सहयोग लिया और लोगों ने बढ़ चढ़कर
1: मेरा सहयोग दिए।
0: अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जो खुले में शौच से मुक्ति वाली बात है, तो 100% सफलता आपने हासिल की है, इसके लिए आपने किस तरह से काम किया, कौन सी चुनौती आपके सामने थी?
1: मेरे पास बहुत चुनौती थी, आदिवासी क्षेत्र है, कोई नहीं मान रहे थे कि ये शौचालय क्या चीज को बोलते हैं, शौचालय के बारे में उनको पता नहीं था, काहे कि हम लोग आदिवासी ट्रेवल क्षेत्र के हैं, पहाड़ी कुरवा लोग निवास करते हैं, और धीरे धीरे हम लोग लोककर सभा, जैसे हम लोग बोलते हैं छोटा छोटा बैठक, हर मोहल्ला में समूह के माध्यम से, अब हम लोग पंच के माध्यम से, अब मैं पिछले बार भी जनपद सदस्य था तो मेरे को इसके बारे में कुछ जानकारी था कि हमको आगे कैसे बढ़ाना है और शौचालय शौच मुक्त कराना है, उस आधार से हम लोग बहुत मेहनत किए, लगन किए, तभी हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं।
0: जल संरक्षण के लिए आपने कौन कौन से काम किए हैं?
1: जल संरक्षण के लिए केरड़ा विभाग मेरा सहयोग किए, और पिछले बार 5 साल जनपद सदस्य था, उस समय मैंने केड़ा विभाग से 109 पंप लगवाया, इस हिसाब से पानी उपलब्ध हो पाया, इसलिए रबी के फसल और खरीफ का फसल दोनों फसल ले सकते हैं।
0: अच्छा, जल संरक्षण के क्षेत्र में आपने तालाबों के पुनर्जीवन पर काम किया, भूजल पुनर्भरण पर काम किया, ड्रिप सिंचाई प्रणाली की हम बात करते हैं उस पर भी आपने काम किया, तो इस तरह के जो कदम आपने उठाए हैं इनमें भी कुछ चुनौतियां आपके सामने आई थी, आपने उनको हल किया?
1: सर, बहुत सारा चुनौती है, जैसे पानी की कमी के कारण ही तो मैं, जैसे हम लोग पहले हैंडपंप लगवाए, उसके बाद पानी की जहाँ कमी रहती है, इसके हम लोग पानी का बचत करने के चक्कर में उसमें हम लोग ड्रिप सिस्टम टपका विधि से हम लोग खेती करना शुरू किए, और पिछले 5-10 साल टपका विधि से खेती हो रहा है ड्रिप के माध्यम से, तो उसमें पानी की बचत हो रही है, और पानी का बचत के लिए और अभी हम लोग ये दूसरा प्लान किए हैं, एक सुक्ता गड्ढा जो बोलते हैं, अभी घर घर हर घर हर परिवार में एक गड्ढा खोद रहे हैं, 2.5 मीटर का, 2 मीटर का, 1 मीटर का, उसमें हम लोग जितना बरसात का पानी चाहिए, अभी वाला जो हम लोग बर्तन उर्तन धोते हैं, नहाते धोते हैं, उस पानी को इकट्ठा सीधा गड्ढा में जा रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग का जल स्तर जो है जो घटने के बजाय बढ़ रहा है।
0: तो मतलब ये जो पानी का दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सोच आपके अंदर कैसे आई कि इस तरह से पानी का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है?
1: सर, मैं पहले माइक्रो वाटर शेड में काम किया था, जल ग्रहण समय में माइक्रो वाटर शेड में काम किया, माइक्रो वाटर शेड कर ही मतलब है कि वाटर वाटर पानी को इकट्ठा करना, और पानी को इकट्ठा जब मतलब कि गांव का पानी को गांव में ही मतलब कि उसको इकट्ठा करके नीचे करेंगे, उसमें क्या है कि पानी का पर्कुलेशन नीचे जाएगा, तो वही पानी हम लोग को मतलब कि उसमें कुआं है, तालाब है, डबरी है, चाहे नलकूप है, चाहे हैडपंप है, उसमें पानी वही पानी आता है, बरसात का पानी।
0: अच्छा सरपंच जी, एक बात ये कही जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो खाना बनाने का काम है वो लकड़ियों पर किया जाता है, चूल्हे पर खाना बनाया जाता है, आपने इस दिशा में भी काम किया है गैस कनेक्शन के लिए?
1: सर, पहले हम लोग के यहाँ भी लकड़ी से खाना बना रहे थे, क्या है कि पुरवा लोग कहाँ से बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं, वो जंगल में रहते हैं, हम लोग जन आंदोलन चलाया कि लकड़ी हमको बचाना है, आने वाला पीढ़ी के लिए हम जब लकड़ी नहीं बचाएंगे तो सांस कहाँ से लेंगे, ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, हम उस हिसाब से हमने उनको भी हम लोग बैठक करके बताए, और हम लोग उस स्थिति में भी अभी हम लोग लगभग 453 परिवार के पास गैस कनेक्शन है।
0: और भगत जी, पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण का एक बड़ा योगदान रहता है, मैंने ये भी सुना है कि आपको वृक्षारोपण से बड़ा लगाव है, तो आपने किस तरह से वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया है अपनी पंचायत में?
1: सर देखिए, मैं जनपद सदस्य ही था उस समय, हम लोग पहले जैसे माइक्रो वाटर शेड में काम किया था, उस समय भी प्लांटेशन हमने लगाया था, उसके बाद में जनपद सदस्य से पिछले पहले वर्ष था, उस समय भी हम लोग प्लांटेशन लगाए, उनमें से हमको जिला प्रशासन की सहयोग से पैसा दिए, और जनपद से भी आया कुछ पैसा, और अपने तरफ जो मनरेगा उसके माध्यम से हम लोग वृक्षारोपण लगाए।
0: कुछ इलाकों में बंजर जमीन जैसी समस्याएं आती है, उनके लिए आपकी क्या योजना है, उन पर आप कैसे काम करेंगे?
1: सर, आपने बहुत सवाल मेरे से अच्छा किए, अगर बंजर

0: मेरे को अगर मिल जाता आने वाला समय में, वो बंजर भूमि में उसको हम लोग वृक्षारोपण आने वाला समय में लगाएंगे।
1: मतलब उसके लिए भी आपने कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। और सरपंच जी, एकल उपयोग प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो भी एक बड़ी समस्या माना जाता है, इस पर आपने काम किया है, तो किस तरह से गतिविधियों को संचालित किया, कैसे लोगों को मोटिवेट किया कि इन चीजों से हमें बचना चाहिए?
0: प्लास्टिक तो हम एकदम मुक्त नहीं कर सकते हैं, क्या उसको हम लोग बनाते नहीं है
1: जी,
0: उसको हम खुद नहीं बनाते हैं, तो हमको उसको मुक्त नहीं करा सकते हैं। लेकिन हम प्रयास किए और प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग प्लास्टिक इकट्ठा करें, कुछ मिनी बैंक के माध्यम से हम लोग को इकट्ठा हर चौराहे पर, हर कहीं दुकान है, किराना दुकान है, वहाँ पर लगा दिए हैं। वहाँ हम लोग का मतलब कि गांव में कोई प्लास्टिक मुक्त तो है, वास्तव में है, बाकी पंचायत में है नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ है, हमारे पंचायत में है।
1: इस तरह की जो गतिविधियां, खासतौर पे ये कचरा प्रबंधन की जहाँ पर बात है, साफ सफाई की बात है, तो इसमें ग्रामीण लोग जो है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी भूमिका किस तरह है, वो लोग किस तरह से आपका सहयोग करते हैं?
0: उसमें भी हम लोग समूह को लिए जिम्मेदारी दिए हैं, स्व सहायता समूह को, उसमें 11-12 जन उसमें कचरा कनेक्शन सप्ताह में करते हैं, और कचरा कनेक्शन करके उनको महीने का 30 रुपया देते हैं हर परिवार, और उनका निजी जिंदगी थोड़ा बेहतर हो रहा है,
1: अच्छे रिजल्ट वहाँ से सामने आ रहे हैं।
0: और सप्ते में हम जैसे हम लोग पूरे गाँव वासी मिल के और बाकी गली का सफाई करते हैं, रोड का सफाई करते हैं।
1: सरपंच जी, आपने हरित अधोसंरचना यानी कि ग्रीनरी को तो बढ़ावा दिया ही, साथ में सौर ऊर्जा पर भी आपका काफी फोकस रहा है, इसके बारे में हमें बताएं।
0: सर, केडा के माध्यम से जो भारत सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो केडा का पूरे राज्य में उसका किसानों के फायदे के लिए सिंचाई के लिए पंप कनेक्शन दे रहा है
1: जी,
0: और दिया है, मैं तहे दिल से श्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों के लिए उतना बड़ा सोच रखते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि किसानों के हित में काम कर रहे हैं और किसानों को लाभ मिल रहा है।
1: सिंचाई पंप की क्या योजना रही आपके लिए
0: विगत आने वाला समय में, और अगर किसान जो छूटे हुए हैं उनके लिए और अगर सिंचाई पंप मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता,
1: यानी प्रयास आपके जारी है। अच्छा, ग्रामीणों ने आपकी काफी मदद की होगी तब जाकर के आपको ये सफलता प्राप्त हुई है, तो उनकी किस तरह की उपलब्धियां रही, कैसे लोगों ने आपको बढ़ चढ़ करके सपोर्ट किया कि आपको लगा कि हाँ इनके साथ मिलकर अब हम ये काम और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर कर सकते हैं?
0: सर, उनको तो मैं जितना मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे ग्रामवासियों के लिए और जनप्रतिनिधियों को, और मेरे जनपद के शासन प्रशासन और जिले के सभी टीमों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरा सहयोग जनपद से और जिले से सहयोग जो मिला उसके लिए भी सभी समस्त अधिकारी कर्मचारी और पंचगण या आम जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।
1: आपकी पंचायत के जो भी लोग हैं, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ समस्याएं हर किसी के सामने आ ही जाती हैं, तो वो अपनी समस्याएं लेकर आपके पास आते हैं या किसी भी तरीके से आप तक अपनी समस्याएं पहुंचाते हैं, तो उसमें किस तरह से आप एक्शन लेते हैं, कैसे लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं?
0: सर, हमारे पास बहुत सारा समस्या है, काहे कि हमारे आदिवासी क्षेत्र है, मेरे पास सुबह टाका लग जाता है, एकदम सुबह जब मैं सो के नहीं उठता हूँ 5 बजे आदमी आ जाते हैं और सारा समस्या का हल मैं इसमें उठता हूँ, बैठने के लिए उनको बोल देता हूँ बैठिए मैं आ रहा हूँ, उसके बाद उनका समस्या को देता हूँ क्या कौन सा समस्या क्या है, तो मैं इसमें उनका समस्या को हल करने का कोशिश करता हूँ। मेरे से नहीं बनता है, जो ऊपर स्तर से चाहे ब्लॉक स्तर से जिला स्तर भी उनका काम को करने के लिए प्रयास करता हूँ।
1: तो कोई खास दिन निर्धारित कर रखा है उनसे मिलने के लिए, या प्रत्येक दिन सभी लोग आते हैं जहाँ पर अपनी समस्याएं वो आपके सामने रखते हैं?
0: हमारे यहाँ प्रत्येक शुक्रवार को भी है, जो लगता है सचिवालय उस दिन अलग है, वो तो सरकारी क्रम शासन
1: अच्छा
0: है। मेरा सोमवार मंगल बुध भी मेरा 3 दिन लगातार बैठक हूँ, अपने घरे में बैठता हूँ और 3 दिन घर में बैठता हूँ और 3 दिन पंचायत भवन में बैठता हूँ, अब 3 दिन मेरा काम हो जाता है, मतलब हमेशा व्यस्त रहता हूँ, किसी पब्लिक को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है,
1: यही कारण है कि आपकी पंचायत को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
0: जी सर।
1: अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि अब आपको क्या लगता है कि जो भी बुनियादी ढांचा आप लगातार बना रहे हैं उससे वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह का परिवर्तन देखने को मिल रहा है, खासतौर पर जब गांवों में सड़कों की बात करते हैं, स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं, या मुख्य सड़क से कनेक्टिविटी की बात होती है, आते जाते हैं कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, उसके लिए किस तरह के प्रबंध है?
0: सर, उसके लिए अभी हम लोग और प्रयास कर रहे हैं, कुछ बहुत काम बचा है, उस काम को भी हम लोग प्लान बना के उसको शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे, जो बचा कुचा है उस काम को आगे बढ़ाएंगे और आने वाला समय जहां हम लोग का कार्य जो बचा है उसको पूर्ण कर सके।
1: तो सरपंच जी, आपने ये जो सफलता हासिल की है, इस उपलब्धि तक आप पहुंचे हैं, तो इसमें आपकी सबसे बड़ी कार्य योजना क्या रही, आपका माइंडसेट क्या था, कैसा आपने सोचा कि इस योजना पे मुझे चलना चाहिए, इससे मुझे काफी कुछ प्राप्त हो सकता है?
0: सर, हम लोग के यहाँ जैसे सबसे पिछड़ा पहाड़ी कोरवा लोग रहते हैं, ना आदिवासी लोग रहते हैं, ना उनको समझाना तो बड़ी मुश्किल था, फिर भी हम लोग सोचे कि पूरे गांव के बैठक करके सोचे और शासन से सहयोग लिए। जिला प्रशासन ने हमको सहयोग दिया, जनपद ने भी मुझे सहयोग दिया, उसी कारण से ओडीएफ

0: पंचायत बना, जैसे शौचालय मुक्त है ना, उसमें 453 हम लोग शौचालय बनाए।
1: सरकार के सहयोग की जब बात आती है तो आजकल सरकार डिजिटल होने पर ज्यादा ध्यान दे रही है, लगातार फोकस कर रही है कि हर एक चीज पर डिजिटल तरीके से काम होना चाहिए। आपको इससे कितना फायदा और आपने अब तक कितना इसे अपनाया है?
0: सर, डिजिटल एक आज के आधुनिक जमाना में बहुत ही अच्छा है। हम बैठे बैठे अपने कार्य को, जिला का हुआ चाहे राज्य का हुआ, हम अपने बैठे बैठे अपने आम जनता को फैसिलिटी दे सकते हैं
1: जी।
0: चाहे जिससे कहा महिला केवाईसी वगैरह कराते हैं, चाहे और बैंक जाना पड़ता है, बैंक वाला जितना काम धाम होता है उसको हम लोग अपने पंचायत में बैठ के उसका काम को निपटा सकते हैं। और हमारे यहाँ भी आने वाला समय में उसको प्रस्ताव मैंने भेज चुका है कि अटल डिजिटल सेवा केंद्र का स्थापना होने वाला है, मतलब का उसके लिए मकान बनने वाला है।
1: तो सरपंच जी, सरकारी योजनाओं का लाभ आपके गांव के हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए कोई खास व्यवस्था की आपने?
0: जिन्होंने मतलब के जागरूक नहीं, तो उसको हम मैंने उनको जगाया, ग्राम सभा में बुला के सब भाइयों को आप लोगों का क्या कमी है, सरकार के एक एक जो भी योजना है उसको सारा योजना का लाभ मैंने उनको बताया कि इस योजना में ये चीज करना है, उस योजना में जो भी लाभ है उस योजना को लाभ आप लोग लीजिए, शासन आपको दे रहा है, उस योजना को कभी भी इधर उधर मत कीजिए, उसका फायदा उठाए, उसका लाभ उठाए।
1: भगत जी, अब आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है तो आपको क्या लगता है कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं या लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई या दोनों चीजें बढ़ गई हैं?
0: सर, राष्ट्रीय स्तर से मेरे को पुरस्कार मिला है तो मेरा भी जिम्मेदारी बनता है और जनता का भी जिम्मेदारी बनता है और शासन का भी जिम्मेदारी बनता है। जो मेरा जब मैं कुछ मेरा जिस लेवल तक नहीं पहुंचा उस लेवल तक मेरे को भी पहुंचना है और जनता को भी पहुंचना है, प्रशासन प्रशासन को भी ध्यान देना है कि मेरा कहीं कमी भी है उसमें फोकस ज्यादा दे तो मैं फिर आगे बढ़ जाऊँ।
1: आपने एक ऐसा काम किया है जो मतलब देश की अन्य पंचायतों के लिए एक तरह से आदर्श बन सकता है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे देश की जो अन्य पंचायतें हैं उनके लिए भी अपना संदेश दें कि आप भी इस तरह से काम कर सकते हैं।
0: मैं तो पूरा भारत के सभी पंचायत चाहे देशवासियों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि अपने भी पंचायत के बारे में जन प्रतिनिधि है या जनता आपको वहां तक पहुंचाया है तो गांव का समस्या के बारे में उन लोग भी सोचे जैसे मैंने सोचा उनको, और मेरे से बेहतर सोचना चाहिए और उनको भी ऐसा करना चाहिए।
1: तो भगत जी, आपने तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया, काफी बातें हुई आपसे, तो हम आपका धन्यवाद करते हैं आपने इस चर्चा में भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार सर।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की सरडी पंचायत के सरपंच रामजी भगत के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:25 हो रहे हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: सुबह होती नहीं, शाम ढलती नहीं, ना जाने क्या खूबी है दोस्तों आप सबके एहसास में। आपको याद किए बिना खुशी मिलती नहीं, इसलिए इतने दिनों के बाद आज फिर से आप सबसे मिलने और प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए आ चुका हूं मैं, आपका दोस्त दीपांशु। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे।
1: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम युववाणी लेकर, आपकी अपनी रेडियो पार्टनर और सखी सहेली वंशिका सोती। क्या बात दीपांशु, काफ़ी अच्छी लाइंस बोली तुमने, लगता है काफ़ी मिस किया है तुमने हमारे लिसनर्स को।
0: बिल्कुल वंशिका, अब हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है।
1: वो तो है ही, हमारा और हमारे लिसनर्स का ये जो बहुत प्यारा सा रिश्ता है, इसको तो हम देखो दिन ब दिन बरकरार रखते ही हैं।
0: बिल्कुल
1: अपने अलग अलग प्रोग्राम्स में जो हम सेगमेंट्स लेके आते हैं उनके थ्रू लिसनर्स को अपने साथ जोड़ते हैं। और आज है दीपांशु सैटरडे, तो सैटरडे में पता है ना कौन सा सेगमेंट होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अच्छे से पता है वंशिका।

0: कि आज हमारा सेगमेंट आपका फेवरेट रहता है गीत आपके नाम, जिसमें आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9457078288 पर, और आपके मैसेजेस को हम करेंगे प्रोग्राम में शामिल और साथ ही सुनवाएंगे आपको आप ही की पसंद के गीत। तो करिएगा आप गीतों को अपने नाम। फिलहाल हम आपको सुनवाते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे हंस हंस कर लोटपोट,
1: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
4: अरे ओ भाग्यवान, सुनती हो?
3: हाँ हाँ, क्या हो गया?
4: अरे आज बड़ा अजीब अजीब लग रहा है।
3: अजीब अजीब? ऐसा क्या अजीब लग रहा है तुम्हें? तुम्हें तो सभी कुछ अजीब लगता है। जब देखो कभी खाना अजीब लगता है, कभी मेरी बातें अजीब लगती हैं, पता ही नहीं क्या ही है तुम्हारा।
4: अरे सुन तो लो महारानी।
3: क्या?
4: मुझे अजीब लग रहा है, मेरी तबीयत खराब है शायद।
3: ऐसा क्या खा लिया अब तुमने?
4: अरे बोलने तो दो, चलो डॉक्टर के ही ले चलो, वो ही बता देंगे।
3: चलो ठीक है, चलो डॉक्टर के पास। मुझे पता है वैसे कुछ होगा नहीं तुम्हें, फिर भी चलो ठीक है।
4: जी मैडम, क्या हुआ?
3: अरे अरे डॉक्टर साहब, मेरे पति को पता नहीं अभी थोड़ी देर पहले से कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, अचानक से बोल रहे हैं कुछ हो रहा है, ठीक सा फील नहीं हो रहा है। प्लीज आप एक बार चेक कीजिए ना कि क्या हुआ है इनको।
4: बिल्कुल बिल्कुल, मैं चेक कर लेता हूँ। मैडम देखिए, वैसे कुछ घबराने की बात तो नहीं है, इन्हें कुछ अच्छा खाने के लिए दीजिए, हमेशा खुश रखो, घर की कोई भी प्रॉब्लम इनसे मत बताइए, कोशिश कीजिएगा कि फालतू की फरमाइश ना करें आप, इनकी चिंता आप ना ज्यादा बढ़ाएं, तो ये जल्द ही 6 महीने में ठीक हो जाएंगे।
3: ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू।
4: अरे भाग्यवान, इतनी इतनी बातें की तुमने, बता तो दो बोला क्या डॉक्टर साहब ने?
3: अरे बस कुछ नहीं, जवाब दे दिया है डॉक्टर साहब ने। अब
4: क्या, मैं मरने वाला हूँ?
1: जी हाँ, मजा आ गया।
4: वेलकम बैक दोस्तों, अब वक्त हो गया है हमारे आज के सेगमेंट कुछ खास है आज का।
3: जी हाँ, जिसमें आज हम बात करेंगे लेट स्टार्ट बेटर है नो स्टार्ट से।
4: वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक दोस्तों, आजकल देखने को मिलता है कि हमारे युवा काफी दुविधा में रहते हैं।
3: बिल्कुल दीपांशु, क्योंकि हमारा यूथ कहीं ना कहीं सोच में रहता है या डर है उसको कि शुरुआत करनी है तो कहाँ से करनी है या क्या करना है, लेकिन इस डर को तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि लेट स्टार्ट से बेटर है, लेट स्टार्ट बेटर है नो स्टार्ट से।
4: बिल्कुल वंशिका, नो स्टार्ट मतलब फिर तो कुछ करना ही नहीं है ना, बस भाग्य के भरोसे रहकर उसे दोष देना ही है।
3: उससे बेटर है लेट शुरू भले

0: लाजवाब निकल कर आए।
1: बिल्कुल, ये तो वही बात है ना, आप फिट भी नहीं रहना चाहते हैं और खुद को सुबह सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करना भी नहीं चाहते हैं।
0: तो फिर तो कैसे फिट रह सकते हैं ना।
1: बिल्कुल, तो इसलिए दोस्तों जरूरी है कि आप एक्सरसाइज भी कीजिए और अपने आप को फिट भी रखिए।
0: हर दिन थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज जरूरी है फिट रहने के लिए।
1: बिल्कुल,
0: एक ही दिन की एक्सरसाइज या नो एक्सरसाइजेस आपको हेल्दी नहीं रख सकती हैं दोस्तों। ऐसे ही हमारे स्टूडेंट्स हैं जो पूरी बुक को या तो एक ही दिन में पूरा करने की सोचते हैं या वो बुक खोल के भी नहीं देखते हैं। तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आप
1: बिल्कुल
0: डेली थोड़ा थोड़ा पढ़िए तो शायद आपको कुछ गेन हो जाए।
1: जी हाँ, रिजल्ट आपको खुद नजर आएंगे। एक एज मायने नहीं रखती, सिर्फ आपका डेडिकेशन और आपके पेशेंस मैटर करते हैं।
0: एग्जैक्टली। और दीपांशु, हमारे दोस्त भी काफी पेशेंस रखे हुए हैं, पता है किस लिए?
1: किस लिए?
0: अरे भाई, उनका फेवरेट सेगमेंट का
1: ओ
0: जो टाइम
1: वाह,
0: हो रहा है, गीतों को उनके नाम भी तो करना है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल वंशिका, मैं तो
0: तो
1: बातों बातों में भूल ही गया था
0: हाँ, भूलो
1: क्योंकि काफी
0: मत,
1: दिन बाद आया हूं ना।
0: कोई बात नहीं, हम याद दिला देते हैं। और बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा सेगमेंट गीत आपके नाम।

0: FM में हमारी गीत
1: आपकी
2: गीत आपके नाम।
3: सो दोस्तों, हमारे पहले गीत की फरमाइश आई है वारसी क्लब सिंदूरी बरेली से। भेजने वाले हैं जिशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान।
4: इन्हीं के साथ फरमाइश करता है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर।
3: अगला मैसेज आया है हमें जलालाबाद वेस्ट से। भेजने वाले हैं सुरेश गगेना जी, पूनम गगेना जी, विशाल प्रिया, दिशानी और निर्मित आहूजा।
4: तो आइए सुनवाते हैं इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर ये गीत।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे एहसास कर लोट पोट,
1: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा।
4: जी हाँ, मजा आ गया।
5: ये देख लो, एमबीए डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स कितना कॉलेज का नाम रोशन कर रहे हैं, और एक है मेरे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, इनको कितना भी पढ़ा लो कुछ समझते ही नहीं है। न कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, ना कुछ, पता नहीं क्या करेंगे। इन्होंने तो नाम डुबो रखा है कॉलेज का।
6: अरे मैडम, आप ऐसे कैसे बोल सकती हो? हमने भी बहुत नाम रोशन किया है अपने स्कूल का।
5: बस और... बस मुझे पता है तुमने क्या नाम रोशन कर रखा है पूरे कॉलेज में ना। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की कोई बात तक नहीं सुनना चाहता है।
6: मैम आप ऐसे मत बोलिए, हमने भी ना बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, एक तो अभी अभी करके आए हैं।
5: बस बस रहने दो, मुझे पता है तुमने क्या ये एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, क्या होगा कुछ ऐसा ही कारनामा।
6: अरे मैडम जी यकीन तो करो, आइए दिखाते हैं आपको, एक बार यकीन करके देखो आप, आपको बहुत फक्र महसूस होगा।
5: अच्छा चलो, जो बच्चे कह रहे हैं तो देख ही लेते। चलो ठीक है, दिखाओ क्या एक्सपेरिमेंट किया है तुमने।

0: दिखाते हैं आपको, एक बार यकीन करके देखो आप, आपको बहुत फक्र महसूस होगा।
1: अच्छा चलो, जो बच्चे कह रहे हैं तो देख ही लेते। चलो ठीक है, दिखाओ क्या एक्सपेरिमेंट किया है तुम। चलो जो बच्चे कह रहे हैं तो देख ही लेते। चलो ठीक है, दिखाओ क्या एक्सपेरिमेंट किया है तुम।

0: वर्मा, करुणा वर्मा, मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी।
1: अगले फरमाइश करता है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां। फिर मैसेज आए हैं हमारे पास रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राज, भेजने वाले हैं जगमाल सिंह ढांगला, हैप्पी ढांगला, जे एस नायक, शोभा नायक एंड समस्त ढांगला परिवार।
0: इसी के साथ पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से मैसेज हमें मिला है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह का। दरियापुर भावली महाराष्ट्र से फरमाइश करता है गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप, अशोक केले, शेरी बंडेर, अकोला से अरुणा बलदेव, दामोदर, आदित्य दामोदर। तो आइए इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को पूरा करते हैं इस गीत के साथ।

0: तो दीपांशु अगले फरमाइशकर्ताओं का नाम पढ़ा जाए अगले गीत के लिए।
1: बिल्कुल, हमारे दोस्त बेसब्री से इंतजार जो कर रहे होंगे
0: बिल्कुल,
1: वंशिका।
0: तो हमारे अगले फरमाइशकर्ता हैं अगले गीत के लिए नगीना से अनिल विनोचा, शमी विनोचा, अक्षय विनोचा, कनिका अरोड़ा, गीत अरोड़ा। गांव नथाना पंजाब से मैसेज हमारे पास आया है हरजिंदर छिंदा, जसवी जस्सी, सीता और गीता का।
1: अगला मैसेज है हमारे पास डोडी लाहौर बलोद छत्तीसगढ़ से, भेजने वाले हैं देवशंकर तामोरिया जी, अजय देव तामोरिया जी, तुषार देव तामोरिया, डोली बेबी पूजा तामोरिया, राधिका और प्रभा देवी तामोरिया और मास्टर अली कबीर जी।
0: वडिंगखेड़ा पंजाब से मैसेज हमारे पास आया है मिंटू टॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा का।
1: अगले मैसेज भेजने वाले हैं हमारे दोस्त आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अरफात अदीब और कादिर चौधरी। इन्होंने हमें मैसेज भेजे हैं शाही मार्केट सिरोहा जिला बिजनौर से। और दोस्तों मैं इनकी कुछ चंद लाइनें भी आप लोगों को बताना चाहूँगा, उन्होंने हमें भेजी हुई हैं। सो लाइनें हैं, काम ऐसा करो जो दुनिया को अच्छा लगे, बुरे काम से बचो जो कोई बुरा ना कहे, गर्मी का महीना चल रहा है, परिंदों को पानी रखें, उनका ख्याल रखें, दाना डालें, काम अच्छा करते रहना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं गीत।

0: तो दोस्तों बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे अगले गीत के फरमाइशकर्ताओं के साथ, जो है मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु सागर और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक।
1: अगला मैसेज आया है हमें जनकपुरी सहारनपुर से, भेजने वाले हैं जॉन डिकोस्टा, रोजी डिकोस्टा, पर्ल डिकोस्टा, विलिस डिकोस्टा।
0: मारहरा दरवाजा एटा से ये मैसेज हमें मिला है नबी हसन अब्बासी, शाहनवाज, नवेद हसन, रसीद वारसी, सुहेल हसन, अनम और यशफ अब्बासी का। सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी और इशरत परवीन।
1: लाल कुर्ती रुड़की कैंट से मैसेज आए हैं हमें, भेजने वाले हैं राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राज।
0: और ये लास्ट मैसेज हमारे पास है जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से, बहरुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ, बिटिया अलिशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी, सुरेश चौहान और अनाबिया सिद्दीकी। तो आइए इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को पूरा करते हैं और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये लास्ट गीत।

0: दोस्तों ये था हमारा आज का कार्यक्रम, हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें खत के जरिए भेज सकते हैं। खत के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युवानी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 246763।
1: इसी के साथ आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं 9457078288। इस पर आप हमें अपने मैसेजेस भेज सकते हैं, साथ ही हमसे कॉल्स के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं अपडेटेड रहने के लिए। हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही हमारे पुराने प्ले, कहानियां, आने वाले प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी नजीबाबाद पर आप सुन सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही हमारे प्रोग्राम्स को इसी तरह से एंजॉय करते रहिएगा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पे। और अब इसी के साथ कि जल्द होगी आपसे एक नई मुलाकात, तब तक के लिए अपनी साथी वंशिका सोती को
0: और दीपांशु सिसोदिया जी को
1: दीजिएगा कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।

अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर। शाम के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी विशिष्टता बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने कहा कि हर घर और हर खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला टीम को भी बधाई दी है। मौसम विभाग ने केरलम और माही में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रही हैं। शाम के 6:05 हो रहे हैं। अब हमारे किसान भाई सुने अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया अंकित कुमार
1: और भैया प्रमोद सिंह की
0: राम राम। और प्रमोद भैया कैसे हाल चाल है थारे?
1: अंकित भैया सब ठीक ठाक हैं, तुम अपने सुनाओ सब ठीक हैं?
0: हाँ भैया हम तो सब ठीक हैं। और भैया हम आशा करते हैं हमारे किसान भाई भी ठीक ठाक होंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया सब ठीक ठाक होंगे। और भैया आजकल खेती बाड़ी में क्या क्या काम चल रहा?
0: देखो भैया हमारा जो गन्ना था ना हमने उसमें तो पहले खरपतवार निकाल ले।
1: अच्छा।
0: और भैया अब जो गूल चढ़ा दी उनके ऊपर।
1: यो बड़ा भारी काम आपने करा। और भैया बहुत जरूरी काम हो ये कर रहे हो।
0: बिल्कुल भैया।
1: और देखो भाई गन्ने की सही तरीके से देखभाल करेंगे उस पे हम गूल पे मिट्टी चढ़ा देंगे तो भैया गन्ने की अच्छी पैदावार तो हमें मिलेगी।
0: बिल्कुल भैया।
1: ये तो रही गन्ने की बात। भैया अब तो धान की फसल को बोने की भी तैयारी चल रही होगी, नर्सरी भी बो दी होगी।
0: बिल्कुल भैया हमने तो खेत अच्छी तरह तैयार करा, गोबर की खाद डाल ली है, फिर भैया उसको दो तीन बार उसकी जुताई करी है, तब भैया बीज बोया हमने धान का।
1: यो बहुत अच्छी बात है भैया।
0: और वो भी भैया बासमती।
1: अच्छी बात है भैया। देखो बासमती धान की तुम खेती करो हो तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन भैया खेती किसी भी फसल की कर लो उसके लिए खेत बढ़िया तरीके से तैयार होने चाहिए। उसके लिए क्या कर रहे हैं तुम?
0: बिल्कुल भैया देखो हम खेत को बढ़िया तरीके से तैयार करने के लिए भैया हम खेत में जैविक खाद का उपयोग कर रहे हैं।
1: बहुत बढ़िया।
0: रासायनिक चीजों पर हम जो निर्भरता धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं भैया।
1: अच्छा जी। चलो ये तो अच्छा है, पर भैया खेतों में पोषक तत्वों की पूर्ति होनी बहुत जरूरी है। जैसे हम भैया स्वस्थ रहने के लिए अच्छा खावे हैं और भैया सभी चीज खाने की हम कोशिश करें कि भैया हम स्वस्थ रहें, हमारे शरीर को सब पोषक तत्व मिलते रहें, वैसे भैया हमारे खेतों को भी तो जरूरत हो कि हमारे खेत भी स्वस्थ रह सके।
0: बिल्कुल भैया हमने भैया जो यूरिया खाद है ना यूरिया के साथ भैया पोषक तत्वों का जो कट्टा था ना वो मिलाकर डाल दिया था।
1: अरे वाह ये तो अच्छी बात है। पर भैया देखो पोषक तत्वों के कट्टे को तो हमने मिलाकर तो डाल दिया, अगर भैया हम अपने खेतों में पोषक तत्वों की पूर्ति मिट्टी की जांच कराने के बाद में करेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है।
0: हाँ भैया बिल्कुल, उसमें हमें ये पता चल जाएगा किस मात्रा में कौन से पोषक तत्व की कमी है और कितनी मात्रा में वो देना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो भाई हम अपने खेतों में पोषक तत्व डाल रहे हैं, जहाँ तक पोषक तत्वों की बात है तो भैया तुम्हें पता है कि सूक्ष्म पोषक तत्व हो ये करे हैं।
0: हाँ।
1: मुख्य पोषक तत्व हो गए जिनमें भैया नाइट्रोजन पोटाश
0: फास्फोरस
1: ये सब आवे हैं, इनकी पूर्ति तो हम करे ही हैं।
0: हाँ हाँ।
1: पर भैया सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी बहुत जरूरत हो ये करे हैं।
0: बिल्कुल भैया जैसे लोहा है, जस्ता है, मैग्नीज हो, तांबा है, बोरोन हो, मोलिब्डेनम हो, क्लोरीन हो, निकेल हो, भैया ये भी हमारी जो फसल के लिए बहुत आवश्यक है।
1: बिल्कुल। और इन पोषक तत्वों की अपने खेतों में सही तरीके से पूर्ति करने की जिम्मेदारी भी हमारी।
0: बिल्कुल भैया देखो अगर हम किसी भी पोषक तत्व की कमी छोड़ देंगे तो हमारी जो फसल का विकास है वो पूरी तरह से नहीं हो पाने का।
1: बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब जब फसल का विकास ठीक नहीं होने का तो उससे क्या उत्पादन हमें मिलेगा?
0: बिल्कुल भैया देखो उससे गुणवत्ता भी हमारी प्रभावित होगी, उत्पादन भी हमारा प्रभावित होगा और भैया आने वाली जो फसल है ना जो हम बोएंगे उस पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा।
1: वही तो बात है भैया। देखो इसीलिए खेतों को हमें सही तरीके से तैयार करना चाहिए, सारे पोषक तत्वों की पूर्ति करने के बाद में अपनी फसलों को बोना चाहिए। जैसे कि भैया अब हमें धान की फसल अपने खेतों में बोनी।
0: बिल्कुल भैया। अब भैया देखो धान की अगर फसल बो रहे हैं ना हमारे किसान भाई तो एक बात का ध्यान रखा।
1: क्या
0: भैया? देखो धान की फसल बोने से पहले भैया हम अपने खेत में जब भी बोमो ना तो बीज उपचार जरूर कर ले।
1: बहुत जरूरी है भैया। देखो बीज उपचार करके बोवेंगे तो जो बीज से लगने वाले रोग हैं जो खेतों में पहुंच रहे हैं वो बिल्कुल नहीं लगने के।
0: बिल्कुल भैया देखो उसकी गुणवत्ता कितनी अच्छी होगी, उत्पादन कितना बढ़िया रहेगा।
1: सही कह रहे हैं। तो देखो ये बात तो है, तुम्हें कुछ और भी पता?
0: हाँ भैया।
1: अरे आज दिन कौन सा?
0: भैया आज है शनिवार।
1: अच्छा तो तुम्हें यू भी पता होगा कि भैया आज अपने किसान भाइयों को हमें कौन सा कार्यक्रम सुनवाना है, किसान भाई क्या पसंद करें भला आज के दिन?
0: देखो भैया आज हमारे जो किसान भाई वो सुनते हैं लोक गीतों पे रागनियों का फरमाइशी सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी।
1: तो इसमें किसान भाई अपनी पसंद की रागनी और लोकगीत सुन सके हैं और भैया अपनी फरमाइश पूरी कराने के लिए हमारे पास में फोन कर सके हैं।
0: बिल्कुल।
1: नंबर बता दो तुम।
0: देखो भैया हमारा जो मोबाइल नंबर है 9457 07 82 88।
1: अरे एक नंबर और है।
0: हाँ भैया।
1: वो है 01341230105।
0: बिल्कुल भैया हमारे किसान भाई 6:45 तक इस कार्यक्रम में फोन करके अपनी मन पसंद का लोकगीत और रागनी सुन सकते हैं।
1: तो देखो भैया जब तक किसान भाइयों के फोन हमारे पास में आवे भाई तब तक हम ये कुछ जरूरी संदेश सुन ले।
0: बिल्कुल भैया।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700001।

0: 4242
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700001 4242।
2: पुलिस?
3: मिस सीमा
2: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1,00,000 दो बन जाओगे।
2: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: अरे भैया, अंकित जी कहाँ चले गए?
8: भैया हाँ, यहाँ थारे पास को बैठे हैं।
7: भैया देखो, ये संदेश तो हमने सुन लिया।
8: हाँ भैया।
7: अब भैया हमें आज अपने किसान भाइयों और बहनों को लोकगीतों और रागनियों का फरमाइशी सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो लोकमंजरी सुनवाना।
8: हाँ भैया बिल्कुल,
7: है ना। तो भैया जरा नंबर एक बार और बता दो उन्हें।
8: बिल्कुल भैया। भैया हमारा मोबाइल नंबर है 9457072888। और भैया हमारा एक लैंडलाइन नंबर है, भैया उसका STD कोड है 01341230105।
7: तो भाई आओ शुरू करते हैं आज का लोकगीत और रागनियों का सजीव फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम, जिसका नाम है
9: हेलो लोक मंजरी।

0: तो स्वागत है हमारे किसान भाइयों का आज के फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी में।
1: और भैया आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका भैया प्रमोद सिंह।
0: और मैं हूं आपका भैया अंकित कुमार।
1: और देखो भाई, हमारे किसान भाई और बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी शुरू हो चुका है। किसान भाई अपनी पसंद की रागनी और लोकगीत इस कार्यक्रम में सुन सकते हैं। नंबर हम एक बार फिर उनको बता रहे हैं,
0: हमारा मोबाइल नंबर है 94-57-07-82-88। और हमारा एक लैंडलाइन नंबर है जिसका स्टेटी कोड है 01341-230-105।
1: और देखो अंकित भैया, इधर आपने नंबर बताया और उधर हमारे एक श्रोता का फोन आया, देखते हैं कौन है लाइन पर।
0: बिल्कुल भैया,
1: हेलो
0: हेलो लोक मंजरी।
1: हेलो
2: हेलो
0: हेलो लोक मंजरी।
2: हाँ जी,
0: हाँ जी, कौन सा बात कर रहे हैं?
2: मैं आप पहले सो प्रमोद सिंह जी को,
0: जी जी
2: कुमार को मेरी राम राम
1: जी। राम राम, राम, राम, राम जी, हमारी भी राम राम। और सब ठीक ठाक हैं? अपना नाम बता दीजिए आप।
2: मैं ग्राम गादरना जिला हरवान उत्तराखंड से मदन गिरी बोल रहा हूँ।
0: जी मदन गिरी जी, कैसे हैं आप?
2: ठीक हूँ जी। मैं, आप सुनाइए, आप कैसे हैं
1: जी? बहुत अच्छे हैं,
2: परिवार में सब कैसे हैं?
1: सब ठीक ठाक हैं जी, बहुत अच्छे हैं। आपकी खेती बाड़ी भी ठीक ठाक चल रही होगी ऐसी हमें उम्मीद है।
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया
1: जी। जी जी, तो धान की नर्सरी तो बो दी आपने?
2: हाँ जी, बो दी, सूडल बासमती लाते हैं।
1: अच्छा जी, अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है।
2: पार्वती,
1: हाँ हाँ हाँ,
2: दोनों चीज लाते हैं।
1: जी जी जी, तो नर्सरी कितने दिन की हो गई आपकी?
2: करीब 10 दिन की होगी जी।
1: जी जी, तो ठीक है, अब आप रोपाई करने की तैयारी कीजिए, खेतों को तैयार कीजिए। बताइए आज क्या सुनना चाहोगे कार्यक्रम में आप?
2: वो महाभारत के किस्से की सुना देना जी।
0: जी जी जी,
2: की आवाज में है।
0: जी बिल्कुल, आपको सुनवा देते हैं महाभारत के किस्से की रागनी।
1: ठीक है जी,
2: तो नाम लेना चाहता
1: हूं। जी जी जी, ले लीजिए ले लीजिए।
2: आचार्य सत्यवीर सिंह जी चौहान है और आसिफ चौधरी जी है
0: जी
2: और प्रकाश चंद जी है।
0: बिल्कुल,
1: जी जी, तो ठीक है, आप अपने इन सब साथियों के साथ में सुनिए अपनी पसंद की ये रागनी।

0: AIR at 90. कम लागत समृद्ध किसान, यही आज का है अभियान।
1: पोषक तत्व बचाएं, मिट्टी को स्वस्थ बनाएं।
0: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
1: खुशहाली का नया प्रयोग।
2: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रमोद भैया, संदेश तुम्हारे किसान भाई ने सुन लिया।
4: बिल्कुल, और देखो हमारे किसान भाई इस समय सुन रहे हैं लोकगीतों और रागनियों का फरमाइशी सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो लोकमंजरी।
3: बिल्कुल भैया,
4: और भाई देखो किसान भाइयों के फोन भी हमारे पास में आ ही रहे हैं। पर हम तो कहेंगे अंकित भैया एक बार उन्हें नंबर और बता।
3: बिल्कुल भैया, देखो हमारा मोबाइल नंबर है 9457072788।
4: हाँ।
3: और भैया हमारा एक लैंडलाइन नंबर है जिसका स्टडी कोड है 0341, नंबर है 230105।
4: तो देखो भैया आपने नंबर बताया और हमारे कोई भाई लाइन पर हैं, फोन कर रहे हैं, उनको देख लेते हैं कौन है।
3: बिल्कुल भैया,
4: हेलो।
3: हेलो लोकमंजरी।
4: हेलो
5: हेलो,
3: हाँ जी, हेलो
4: हेलो हेलो
5: हेलो,
4: हाँ जी,
5: हाँ राम राम जी।
4: राम राम, राम राम जी, राम राम, अपना नाम बता दीजिए।
5: मेरा नाम सोपाल सिंह है, मैं गुनियापुर से बोल रहा हूँ।
3: जी सोपाल जी, कैसे हैं आप?
5: बहुत बढ़िया जी, आप ठीक हैं?
3: हाँ जी,
4: हाँ जी, बहुत ठीक हैं। तो सोपाल जी क्या करते हैं, खेती बाड़ी ठीक ठाक है आपकी?
5: खेती बाड़ी में गन्ना लगा रखा है और धान की जो है नर्सरी कर दी है।
4: जी जी जी, अच्छा अच्छा। तो हमारे इस कार्यक्रम को आप सुनते हैं, कैसा लगता है हमारा ये कार्यक्रम?
5: आपका बहुत बहुत सारे कार्यक्रम सुनता हूँ और बहुत बढ़िया लगता है।
3: जी जी
5: और
3: जी,
5: आज
3: जी।
5: मैं जो हूँ एक देशभक्ति की रागनी सुनना चाह रहा हूँ।
4: कौन सी जी?
3: देशभक्ति रागनी।
5: देशभक्ति की कोई भी अच्छी सी सुना दीजिए।
4: अच्छा, देशभक्ति की कोई भी रागनी आपको सुना दें।
3: ठीक है,
5: तो धन्यवाद
4: जी। जी जी जी, ठीक है, आपने हमारे पास में फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनिए अपनी पसंद की देशभक्ति की ये रागनी।
3: बिल्कुल भाई।

0: देशवासियों अपने देश का मिलकर नव निर्माण करो, सारी दुनिया बदल रही।
1: देशवासियों मिलकर अपने देश का नव निर्माण करो, देखो भैया कितनी देशभक्ति रागनी होगी हमारे किसान भाई ने सुनी।
2: बिल्कुल, और भैया देखो हमारे किसान भाई सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी, और किसान भाइयों के लगातार फोन हमारे पास में आ रहे हैं। हमारे एक और कोई सुनने वाले हमारे पास में फोन कर रहे हैं, देखते हैं कौन है। हेलो
3: हेलो, नमस्कार जी।
1: नमस्कार, कौन सा बात कर रहे हैं?
2: नमस्कार
3: जी, मैं इलियास अंसारी बोल रहा जी, जिला मुजफ्फरनगर कबीर लद्दीन सिंह गांव खेड़ी तकान से जी।
2: जी, जी जी जी जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देखिए आप उस गांव से बोल रहे हैं जहां से कबीर लद्दीन सिंह जी ने बहुत अच्छी अच्छी रागनियां लिखी हैं।
3: जी
2: तो कैसे हैं इलियास जी, आप सब ठीक हैं?
3: बस ठीक है, शुक्र है मालिक का जी। देखो आपका प्रोग्राम जो है बहुत अच्छे दिल से सुनते हैं।
2: बिल्कुल, हमें बहुत अच्छा लग रहा है जी, आप हमारे इस कार्यक्रम को बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो कभी खेतीबाड़ी में जो हम बातें बताते हैं वो इस्तेमाल करते हैं आप?
3: हाँ जी।
2: अच्छा,
1: तो उनसे लाभ मिलता है हमारी बताई हुई बातों से?
3: हाँ हाँ, नहीं बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा।
1: बिल्कुल, तो इलियास जी आज क्या सुनना चाहेंगे?
3: आज ये नैनपाल बसेरा की आवाज में जो है कोई अच्छी सी कभी लद्दीन सिंह की रागनी सुनवा दो।
2: अच्छा अच्छा, देखिए अभी हमने मैनपाल बसेड़ा की आवाज में एक रागनी आपको सुनाई थी, आप भी मैनपाल की ही गाई रागनी सुनना चाहते हैं?
3: हाँ जी
1: बिल्कुल।
3: तो वो शुरू में लद्दीन सिंह की रागनी सुनी थी हमने।
2: जी जी जी जी जी, तो कोई सी भी रागनी सुना दे हम आपको मैनपाल की आवाज में?
3: कोई सी भी रागनी सुनवा दो, और हमारे बहुत सारे साथी हैं।
2: अच्छा
3: हाँ जी, बहुत अच्छी तरह बैठ के सुनते हैं आपका प्रोग्राम।
2: बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो कोई नाम लेना चाहते हैं आप इस कार्यक्रम में?
3: हाँ जी ये इकबाल अंसारी है, शकील अंसारी है, सईद अंसारी है, इस्तकार अंसारी और नदीम अंसारी है जी, एक ये है मुत्तलिफ अंसारी
2: जी। इलियास जी आप जी। अपने इन सभी दोस्तों के साथ में, भाइयों के साथ में बैठकर हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो आप अपनी पसंद पर सुनिए ये रागनी।

0: प्रमोद भैया देखो कितनी अच्छी अच्छी रागनी हमारे किसान भाई सुन रहे हैं और हम फोन भी कर रहे हैं।
1: हाँ भैया देखो, हमारे किसान भाइयों के लगातार फोन हमारे पास में आ रहे हैं। भैया आप नंबर एक बार उन्हें बता दो जरा।
0: बिल्कुल भैया, हमारा मोबाइल नंबर है 9457-07-82-88 और हमारा एक लैंडलाइन नंबर है जिसका एसटीडी कोड है 0-43-41 और नंबर है हमारा 230-105।
1: और देखो, इन दोनों ही नंबरों पर किसान भाई हमें फोन करके अपनी पसंद की रागनी और लोकगीत सुन सकते हैं।
0: बिल्कुल भैया
1: और
0: देखो,
1: भैया आप देखते हैं कि हमारे कौन भाई हमें फोन कर रहे हैं। हेलो।
0: हेलो लोकमंजरी, हेलो
2: लोकमंजरी भाषा, नमस्ते
0: जी।
1: नमस्ते जी,
0: नमस्कार
1: नमस्ते। अपना नाम बता दीजिए।
2: जी, मैं उत्तराखंड से निखाल से निगाह फैक्ट्री से प्रकाश चंद बोल रहा हूँ जी। मैं
0: जी प्रकाश चंद जी, कैसे हैं?
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: भाई साहब धन्यवाद, मैं तो बढ़िया हूँ। भाई साहब आप लोग सब बढ़िया और आकाशवाणी में समस्त स्टाफ सब बढ़िया।
1: जी जी सब बहुत अच्छे हैं। आप बताइए, इस समय उत्तराखंड का मौसम कैसा है?
2: भाई साहब उत्तराखंड में तो इस टाइम आज तो बहुत धूप लगी हुई है।
0: अच्छा,
2: आज तो मतलब अभी भी धूप ही लगी है यहाँ तो, मतलब दिन भर आज बहुत गर्मी हुई, कहीं बादल नहीं दिखाई दिए, आज तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है यहाँ।
1: अच्छा, चलिए खैर, ये तो मौसम है और ये तो सब प्रकृति है जिसको हम झेलते हैं। प्रकाश जी, हम

0: पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए कोई संदेश आप देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से?
1: है जी,
0: साफ सफाई के माध्यम से या इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई साफ सफाई का संदेश आप देना चाहते हैं?
1: साहब यह है कि जो भी मतलब जो भी वहाँ पर्यटन जाते हैं तो वहाँ खैर साफ सफाई तो खैर वहाँ रहती है,
0: बिल्कुल।
1: और वहाँ जो प्रशासन भी इस बात को बहुत ध्यान से रखता है और वहाँ पर बहुत साफ सफाई रहती है,
0: और हमें रखनी भी चाहिए। देखिए, हमें वहां पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। अगर हम वहां घूमने के लिए जा रहे हैं तो साफ सफाई का ध्यान रखें।
1: आगे प्लास्टिक का प्रयोग न करें, वहाँ प्लास्टिक को पानी पुनी न डाले,
0: जी,
1: और न जलाए जो कि वहाँ कोई दिक्कत और परेशानी
2: जी
1: हो।
2: जी तो प्रकाशचंद जी क्या सुनना चाहेंगे आज?
1: भाषा में मेरा पिछवाड़ा ये हरियाणी लोकगीत है।
2: अच्छा, मेरे पाछे पाछे आवन वाला हरियाणी लोकगीत।
1: हाँ जी, हाँ हरियाणी लोकगीत है। भाषा दो तीन नाम ले लूँ मैं?
2: जी जी ले लीजिए, ले लीजिए।
1: कानू प्रिया, उज्जवल कुमार और मंजू देवी।
0: जी जी जी जी तो ठीक है।
1: हाँ जी, हाँ
0: प्रकाश जी, हम आपको आपकी पसंद का ये हरियाणवी लोकगीत सुना रहे हैं। आपने हमारे पास में फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद। नमस्ते जी, नमस्ते भाई साहब।

0: मेरे पाँच छः पाँच छः आवन का देखो कितना प्यारा सा लोकगीत हमारे किसान भाइयों ने सुना।
1: बिल्कुल भैया। और देखो अब एक और कॉल ले लेते हैं।
0: बिल्कुल भैया।
1: हेलो
0: हेलो लोक मंजरी।
2: हाँ जी,
0: हाँ जी कौन?
1: जी, हेलो लोक मंजरी में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
2: मैं सुमित बोल रहा हूँ, जिला बिजनौर से, ग्राम औरंगाबाद सिकंदरपुर।
1: जी जी जी जी जी सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, आप जल्दी से हमें बता दीजिए क्या सुनना चाहेंगे।
2: रागनी सुना दो बढ़िया से।
0: ठीक है ठीक है।
1: जी, कोई सी भी रागनी सुना दें।
2: हाँ जी जी जी
1: अच्छा
0: जी
1: अच्छा अच्छा तो हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है आपको यार?
2: हाँ, हमें तो तेरे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, जोशपुरम वाला भी अच्छा लगता है, रागनी वाला
1: जी,
2: भी।
1: बहुत अच्छी
2: अलग
1: बात है।
2: अलग
1: देखिए, हम बातें आपसे बहुत करते, लेकिन हम अभी हमें आपकी ये फरमाइश पूरी करनी है। कार्यक्रम का समय कम है, हम आपको सुना रहे हैं ये रागनी।

0: विनोद भैया, देखो अब समय तो ज्यादा बातचीत का नहीं दे रहा।
1: बिल्कुल भाई, देखो हमारे किसान भाई सुन रहे थे हमारा आज का ये कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी।
0: बिल्कुल भैया,
1: और भाई देखो अब तो हर शनिवार को किसान भाई अपनी पसंद की रागनी हमारे पास में फोन करके सुन सकते हैं। नंबर उनको पता ही है, आप एक बार फिर बता दो
0: भैया। हमारा मोबाइल नंबर है 9457-07-82-88।
1: भाई देखो इन नंबरों पर हमारे किसान भाई हमारे पास में फोन कर सकते हैं, अपनी पसंद की रागनी और लोकगीत सुन सकते हैं। और भैया देखो हम तो खेती करें, खेती भैया हमें बहुत सुरक्षित ढंग से करनी चाहिए, अपने खेतों की रक्षा भी करनी चाहिए। और भैया रसायनों का इस्तेमाल हमें अंधाधुंध तरीके से बिल्कुल नहीं करना।
0: बिल्कुल भैया, भैया बात ये होगी हम अपने खेतों को बिल्कुल पूरी तरह से बचाना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि हम अपने खेती को जो हमारी जमीन हो बंजर नहीं बनाना।
1: ठीक कह रहे हो भैया। और देखो ये कार्यक्रम उन्हें कैसा लग रहा है भैया यो बताने के लिए किसान भाई हमारे पास में चिट्ठी लिखेंगे, जल्दी से पता बता दो।
0: बिल्कुल भैया, हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद। हमारा पिन कोड है 246763।
1: और इसके अलावा किसान भाई हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, नंबर जानते ही, हमारा नंबर है 9457-78-288।
0: बिल्कुल। और देखो भैया बातचीत अब जा और ना करी जाओ तो इसलिए जल्दी से कर लेते हैं दोनों भैया। राम राम, राम।

0: अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं 90 साल बेमिसाल रेडियो प्रसारण के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष भेंटवार्ता। इस संदर्भ में आप सुनेंगे संतोष सिंह नेगी से रेणु कोटनाला की बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90 साल बेमिसाल के आज के संक में आपके साथ मैं हूं रेणु कोटनाला। श्रोताओं, आज 90 साल के जश्न में हमारे साथ हैं एक बहुत ही काबिल शख्सियत। आइए उनका परिचय उनसे जानते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं।
2: मैं संतोष सिंह नेगी, मैं शिक्षक हूँ राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार में, और आकाशवाणी नजीबाबाद से तो मैं 90 के दशक से जुड़ा हुआ हूँ। और इस दौरान जो है मेरी जीवन की स्मृतियों में रेडियो और आकाशवाणी का बहुत ज्यादा जो है गहरा प्रभाव रहा है।
1: संतोष जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप लगभग कितने वर्षों से आकाशवाणी से जुड़े रहे हैं?
2: मतलब अगर हम आकाशवाणी नजीबाबाद के जो प्रोग्राम की बात करें तो बचपन से ही मतलब मैं आकाशवाणी रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ, और आकाशवाणी नजीबाबाद से मैं 90 के दशक से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरे जीवन में आकाशवाणी की और पर्टिकुलर आकाशवाणी नजीबाबाद की तो बहुत ज्यादा स्मृतियां हैं। पापा फौजी थे तो पापा जब भी आते थे तो अपने साथ रेडियो लाते थे। हमारे घर में टीवी होता था नहीं, मतलब उस दौर के बच्चे देखते थे वो हम सुनते थे। तो आकाशवाणी नजीबाबाद का तो मुझे बहुत सारे अनाउंसमेंट भी याद है कि आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम है 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर, दिन के 12 बज चुके हैं, अब आप नया प्रोग्राम ये सुनेंगे। तो ये चीजें तो मेरे को बिल्कुल याद सी हैं। तो बचपन से आकाशवाणी नजीबाबाद मेरी स्मृतियों पे जुड़ा हुआ है।
1: बहुत अच्छा लगा जान के संतोष जी कि आपको जो आकाशवाणी नजीबाबाद की फ्रिक्वेंसी है वो भी जो है बहुत अच्छे से याद है। अच्छा, आपको याद है कि सबसे पहले आकाशवाणी नजीबाबाद से आपका कौन सा कार्यक्रम प्रसारित हुआ?
2: मैं उस समय युवाणी प्रोग्राम में आता था, तो छोटे छोटे कार्यक्रम मेरे को मिलते थे तो बड़ा उत्साह बढ़ता था। तो कार्यक्रम के अलावा जो मैंने यहाँ पे बहुत कुछ भी सीखा था, कैसे लोग जो है कार्यक्रम करते हैं, कैसे जो हम सुनते हैं वो होता है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग कैसे होती है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। और इसी दौरान फिर धीरे धीरे आप लोग के गाइडेंस में प्रगति भी करता चला गया। 10-20 साल बाद फिर जो है वो और ऊपर लेवल पे बढ़ते चले गए, और आज जो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप रेडियो के कार्यक्रम में मुझे भी याद किया।
1: संतोष जी, आप युवाणी के बाद हिंदी वार्ता में भी आए, इस विषय में कुछ बताएं। कोई विषय याद है आपको कि हिंदी वार्ता में आपने कौन सी वार्ता दी थी?
2: बहुत सारे कार्यक्रम दिए थे आकाशवाणी का। एक जो मुझे याद है, क्योंकि उसके लिए लोगों ने पोस्टकार्ड भी भेजे थे, उसमें ये था कि भारत के देसी जो खेल हैं, पारंपरिक खेल है, उसमें एक आर्टिकल लिखने को कहा गया था। तो वो जो मैंने प्रसारित किया था, तो उसमें मैंने अपने आसपास के जितने छोटे छोटे बच्चे थे उनसे पूछा, और जो भी मतलब देसी खेल थे, तो आकाशवाणी से प्रसारित हुआ था। उसके बाद बहुत से लोगों ने तारीफ की, और मुझे आकाशवाणी द्वारा बताया गया था कि इसके लिए कई लोगों ने पोस्टकार्ड भी भेजे कि वो कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा। तो वो मेरी स्मृतियों में आज भी याद है पूरा मुझे।
1: चलिए, तो बहुत अच्छा लगा कि आप लंबे समय से आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े रहे। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि रेडियो का आपके जीवन में क्या महत्व?
2: बहुत ज्यादा महत्व तो है। जब मैं छोटा था तब से लेके और आज मेरे बच्चे हो गए तब तक जो है मेरे घर में आज भी रेडियो चलता है। तो रेडियो में सुबह सुबह जैसे हम उठते थे, आरती भजन आते थे, तो ये समझिए कि पापा उठे, आरती भजन लगा और वो हमारे लिए अलार्म हो गया,
1: अरे भाई
2: अब आपने उठना है। तो रेडियो भी उनके साथ साथ हमें उठाता था। तो बहुत सारे भजन तो मुझे रेडियो की वजह से याद हो गए। उसके पश्चात फिर और कार्यक्रम भी आते थे, तो थोड़ी सी जगह थी तो पापा खेती बाड़ी करते थे, एक कृषि दर्शन कार्यक्रम आता था,
1: कृषि जगत,
2: हाँ कृषि जगत, तो उसमें खेती बाड़ी के बारे में था। तो मुझे वहां से पता लगा रबी की फसल, खरीफ की फसल क्या होती है, ठीक है, अनाज, मोटा अनाज जो है, बहुत सारी चीजें मतलब मैंने रेडियो से सीखी है। इसके अलावा एक कार्यक्रम आता था कार्यक्रम सैनिकों के लिए, अच्छा उसमें ना फिल्मी गाने आते हैं, पापा थोड़ा स्ट्रिक्ट मिजाज के थे तो वो फिल्मी गाने असर में हमारे यहाँ सुनने नहीं देते थे। हम लोग बच्चे थे तो हमें बड़ा अच्छा लगता सुनने में। पापा बोलते थे पापा पापा वो कार्यक्रम सैनिकों के लिए आ रहा है, बोलते थे, फिर हम रेडियो खोलते तो उसमें कार्यक्रम सैनिकों में भी कई बार फिल्मी गीत आते थे,
1: फिल्मी गीत आते हैं।
2: तो रेडियो में बहुत सारे गीत ऐसे भी होते थे जिसकी फरमाइश भी होती थी, ये भी रहता था कि मैं भी लिखूंगा चिट्ठी। तो पहले मुझे नहीं पता था कैसे लिखते थे, फिर पता किया तो ये पता लगा पोस्ट कार्ड होता है एक, तो उस टाइम 15 पैसे का आता था एक पोस्ट कार्ड
1: जी।
2: तो फिर मैंने वो पोस्ट कार्ड लिया, फिर मैंने आकाशवाणी नजीबाबाद में जैसे कोई गाना जो था वो सुनने के लिए लिखा। तो उसके लिए लिखा। फिर नीचे मेरे भाई था, बहन थी, और जो भी जितने मुझे रिश्तेदार ध्यान है सबका नाम,
1: सबका नाम लिखा,
2: तो वो भेज दिया।
1: यानी कहना चाहेंगे कि आप कार्यक्रमों से जुड़े ही रहे, साथ ही साथ आप पत्रों के माध्यम से भी आकाशवाणी से जुड़े रहे। अच्छा संतोष जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि डिजिटल अब सारी चीजें हो गई हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो पत्र व्यवहार का जो एक हमारे यहाँ चलन था वो कहीं ना कहीं कम हो गया है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
2: पर उसकी अपनी एक अलग ही मिठास थी। मैं एक उदाहरण बताता हूँ, मैंने अपने दोस्तों को जितने लेटर लिखे या उन्होंने जो मुझे लिखे सब संभाल के रखे हुए हैं। तो हमने किसी को लेटर लिखा, फिर 2 महीने तक वेट करते थे, फिर उसका जवाब आता था, तो वो जो देर इंतजार था ना, उस इंतजार में भी अपना एक अपनापन था, एक मिठास थी, बेकरारी में भी जो अपनापन होता था, वो तो अलग ही दौर हुआ करता था।
1: आपसे ये और जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी नजीबाबाद आपके जीवन में अगर उपलब्धि की बात करें तो कुछ आपने क्या सीखा या क्या उपलब्धियां रही यहाँ से, जो नजीबाबाद केंद्र से जुड़कर आपने क्या पाया?
2: बहुत कुछ, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मुझे शेप और साइज करने में आकाशवाणी नजीबाबाद का बहुत बड़ा हाथ है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब

0: आपको तीन चार एग्जाम्पल से बताता हूँ। जब मैं आकाशवाणी नजीमाबाद में आया, हम जैसे बोलते थे किस ढंग से उच्चारण करना है वो मैंने यहाँ से सीखा है। व्यक्तित्व का विकास मैंने यहाँ से सीखा है, ठीक है। और क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, उसमें कैसे कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, उसके लिए मेहनत करनी सीखी है। कंपटीशन में जो है मैंने सब कुछ यहाँ से सीखा। और तो और एक सबसे बड़ा रेडियो का कार्यक्रम आता है मन की बात
1: जी,
0: तो प्रधानमंत्री जी ने मेरा जिक्र मन की बात कार्यक्रम में किया और कहीं ना कहीं आकाशवाणी नजीमाबाद को मैं उसका श्रेय भी देना चाहूंगा।
1: क्या बात है।
0: असल में इसका किस्सा सुनाता हूँ मैं। 2015 के आसपास में ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ तो आकाशवाणी नजीमाबाद की वजह से मेरे घर में तो रेडियो तो था ही, तो मेरे दिमाग में आ गया प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं उसमें मैं भी सुनूं, तो मैं सुनता रहता था। तो उसके बाद फिर मैंने अपने जो मेरे सोशल वर्क था वाटर कंजर्वेशन पे वहां तक बात पहुंचाई तो प्रधानमंत्री जी को बहुत अच्छा लगा। बल्कि जून महीने में ही 2016 में प्रधानमंत्री जी ने वाटर कंजर्वेशन में जो मेरा काम था उसकी तारीफ की और फिर उसके बाद मुझे प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला। तो मैंने तुरंत आकाशवाणी नजीमाबाद को रजिस्ट्री डाक से लेटर भेजा कि मेरा जिक्र प्रधानमंत्री जी ने रेडियो की मन की बात कार्यक्रम में किया है, उसके बाद मेरे को वहां मिलने का भी मौका मिला है और कहीं ना कहीं मैं आकाशवाणी नजीमाबाद का बहुत बहुत आभारी हूँ। बल्कि आकाशवाणी नजीमाबाद ने उस चीज का जिक्र भी किया था।
1: जी जी।
0: तो आज मेरे बारे में जैसे कहीं परिचय होता तो लोग ये बोलते हैं कि ये संतोष नेगी जी हैं और इनका जो है जिक्र प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में किया, आकाशवाणी नजीमाबाद को जाता है श्रेय।
1: आपको याद होगा कि आप कब गए थे ये मन की बात कार्यक्रम में?
0: जून 2016 में प्रधानमंत्री जी ने जल संरक्षण में मेरे कार्यों की तारीफ करते हुए इसका जिक्र किया था। सितंबर में जो है वहां मिलने का मौका मिला और उसके पश्चात जो है जब आकाश मन की बात कार्यक्रम के 50 एपिसोड पूरे हुए तो फिर मुझे दिल्ली बुलाया गया, मेरा भी जो है उन्होंने अनुभव पूरे लिए। उसके पश्चात जब 100वां एपिसोड था तब भी मुझे वहां बुलाया गया था। तो लगातार मतलब मैं जुड़ा हुआ हूँ आकाशवाणी नजीमाबाद से भी और मन की बात से भी।
1: संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि ये आकाशवाणी नजीमाबाद के लिए भी बड़ी उपलब्धि है कि हमारे एक श्रोता, हमारे एक आकाशवाणी नजीमाबाद के वार्ताकार प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम मन की बात तक पहुंचे हैं, तो ये हमारे लिए भी गौरव की बात है। आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपको पहली बार वहां से लेटर आया या फोन आया कैसा लगा?
0: यकीन ही नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी ने उस रेडियो प्रोग्राम में मतलब मेरा नाम लिया, एक बार तो हम भी थोड़ा सा सकपक आ गए, घर में तो मीडिया की भीड़ लग गई फिर कुछ देर बाद, ठीक है कि क्या है क्या कैसा है थोड़ा उसके बारे में बताइए। तो कहीं ना कहीं मैंने तुरंत सबसे पहले तो लेटर आकाशवाणी को भेजा था नजीमाबाद को कि मैं आप लोग का बहुत बहुत आभारी हूँ, मेरी पर्सनैलिटी को पूरा ग्रूम करने में यहाँ तक पहुंचने में आपका एक बहुत बड़ा हाथ है। तो आज भी वो एक स्वप्न जैसा लगता है, मतलब मुझे प्रधानमंत्री जी ने बुलाया और वहां से मिलने का मौका भी मिला, उसके पश्चात जो है 50वां एपिसोड में, फिर 100वें एपिसोड में, इवन आजादी की 75वीं वर्षगांठ में माननीय राष्ट्रपति जी की तरफ से जो है एज ए विशेष अतिथि के तौर पे मुझे भी बुलाया गया था गणतंत्र दिवस में। तो कहीं ना कहीं मन की बात और आकाशवाणी नजीमाबाद को इसका श्रेय जाता है।
1: वहाँ के अनुभवों के विषय में थोड़ा सा बताएं, जब आप मन की बात कार्यक्रम में वहाँ गए तो वहाँ किस तरह के लोग थे और किस तरह से आपकी बातचीत हुई या इंटरव्यू हुए, रिकॉर्डिंग्स हुई?
0: बिल्कुल ही अलग अनुभव था। पूरे भारत से ऐसे लोग आ रखे थे जो आम आदमी थे लेकिन खास काम कर रहे थे, अलग अलग दिशाओं के अलग अलग क्षेत्रों के लोग थे। तो जब उनसे मिला तो मुझे लगा कि मुझे ये भी करना चाहिए था, ये भी अच्छा फील्ड था, मुझे ये भी करना, मतलब सीखने को बहुत कुछ मिला। असल में मैं हर मौके को सीखने के तौर पे भी देखता हूँ, भले मैं शिक्षक हूँ लेकिन खुद को एक विद्यार्थी मानता हूँ। तो मुझे बहुत कुछ वहाँ सीखने को मिला, आम आदमी के आम जरूरतों के खास जो है तरीके से उन्होंने समाधान निकाले, क्या समाधान थे, किस ढंग से थे, विविधता भरे देश के विविध लोगों से मिलने का मौका मिला। इसी ढंग से 100वें एपिसोड में भी हुआ, अलग अलग लोगों से भी मिलने का मौका मिला तो विचारों का आदान प्रदान भी हुआ। राष्ट्रपति जी के माध्यम से गणतंत्र दिवस देखने का मौका मिला तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो एक विद्यार्थी होने के नाते मुझे ये सारे मौकों में हर बार कुछ नया कुछ खास सीखने का मौका मिला।
1: जिस तरह से आपने बताया कि 50वें संस्करण में और 100वें संस्करण में आप वहाँ मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए, तो दोनों संस्करण में कुछ आपको लगा कुछ अंतर था क्या 50वें में और 100वें संस्करण में? जब आप वहाँ गए तो कुछ अलग अनुभव आपको मिले?
0: अलग रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। 50वें के मुकाबले 100वें में ज्यादा प्रतिभागी थे तो हमें ज्यादा विचारों की शेयरिंग की आजादी मिली। पूरा एक दिन तो उन्होंने हमारे बीच में आपस में इंटरेक्शन के लिए दे दिया था, तो हम हर एक के पास जाके पूछे थे आपने क्या किया, कैसे किया, क्या क्या समस्याएं, तो सीखने के लिए बहुत ज्यादा अनुभव थे। तो 100वां एपिसोड और ज्यादा दिव्य और ज्यादा भव्य तो था ही।
1: क्या संतोष ने कभी सोचा था?
0: रेडियो में आता रहता था यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन रेडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक पहुँच जाएंगे ये तो नहीं सोचा था।
1: यानी संतोष जी कह सकते हैं कि अगर आप में लगन है ना, चाह है, तो आपको खुद भी कभी पता नहीं होता कि आप कहाँ पहुँच जाएंगे, आपकी मंजिल आपको कहाँ ले जाएगी।
0: हाँ मतलब लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर सपना तुरंत पूरा हो, कछुए की तरह मतलब लगातार चलते रहे तो मंजिल मिल ही जाती है। और आप जैसे आकाशवाणी के अच्छे मार्गदर्शक हो तो बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाता है।
1: रेडियो के 90 वर्षों की जो ये यात्रा है जिसे हम पूरा कर रहे हैं, आज के डिजिटल युग में रेडियो का कितना महत्व है?
0: बहुत ज्यादा महत्व है। आप ये लगाइए मेरे घर में आज भी रेडियो है। सबसे ज्यादा ऑथेंटिक खबरें अगर किसी पे आप यकीन कर सकते हो तो रेडियो पे कर सकते हो। सबसे ज्यादा समय तक चलने वाला उपकरण अगर कोई देखा जाए तो रेडियो है, जो सिर्फ 3 साल से चल जाता है। तो मेरे घर में आज भी रेडियो है, इसका कारण यही है। इवन अगर आपदा आई और आपको किसी एक उपकरण को लेकर जाना हो तो मुझे लगता है वो रेडियो ज्यादा बेहतर रहता है। दूसरा, मोबाइल में भी अब ऐप के तौर पे रेडियो आ गया, तो रेडियो पहले के मुकाबले ज्यादा आयामों पे काम कर रहा है। और प्रधानमंत्री की मन की बात के बाद तो इसका स्केल भी बहुत बड़ा है। अब लोग रेडियो को पहले से ज्यादा सुन रहे हैं, ज्यादा से लोग उससे और भी ज्यादा जुड़े हैं, अलग अलग विषयों में और गंभीर चर्चाएं होती हैं, तो अब तो आयाम और भी ज्यादा बढ़ गया है।
1: यानी रेडियो का काफी महत्व है।
0: मेरे तो बच्चे जो है दोनों वो रेडियो सुनते हैं और घुमाते रहते हैं घर घर कर कर। तो उसके बाद जहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो खुश हो जाते हैं कि कोई आवाज आने लग गई है।
1: अच्छा, मतलब आपके घर पर बच्चे भी रेडियो सुनते हैं, ये नई पीढ़ी जो
0: नई पीढ़ी, मैं चाहता हूँ कि वो सुने और उसको समझे। वो तभी है कि जब मैं रेडियो रख के उनको सुना रहे हूँ, उनको टच करने का मौका दूँ, उनको हिलाने घुमाने का मौका दूँ, तो वो बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं रेडियो में।
1: और डिजिटल होने के बाद संतोष जी लगता है कि रेडियो तक, आकाशवाणी तक पहुंचना और ज्यादा सरल हो गया है।
0: हाँ बिल्कुल,
1: है ना, क्योंकि हर वक्त आपके पॉकेट में जो है रेडियो होता है फोन के माध्यम से। अच्छा, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, एक शिक्षक के रूप में आपने समाज और विद्यार्थियों के बीच जो काम किए हैं, जैसा कि आपने बताया कि आप जल संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं और भी विषयों पर काम कर रहे हैं, तो उनमें रेडियो और जनसंचार माध्यमों की क्या भूमिका है?
0: बहुत ज्यादा भूमिका रहती है। जैसे मेरे कई प्रोग्राम अगर रेडियो में आते तो मैं बच्चों को बताता हूँ, फिर बच्चे पूछते हैं सर किस विषय में आ रहा है, तो फिर मैं उस विषय के बारे में बताता हूँ और फिर वो एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। फिर बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर क्या हम भी आ सकते हैं रेडियो में, तो उनको बोलता हूँ मैं किसी एक सब्जेक्ट में आप थोड़ा विशेषज्ञता हासिल करो, तो उस सब्जेक्ट में फिर वो थोड़ा अपना लेवल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मैं आभारी हूँ आकाशवाणी का कि वो कई बार हमारी स्कूलों में भी आकर के, बहुत सारी स्कूलों में जाते हैं, तो बच्चों के दिमाग में और क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है। साउंड वेव्स कैसे काम करती है इस टॉपिक में, जो मैं अक्सर जब साइंस में पढ़ा रहा होता हूँ बच्चों को, तो आकाशवाणी नजीम बात का जिक्र भी ले आता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे साउंड वेव्स ट्रैवल होती हैं, ऐसे सिग्नल जाते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं।
1: आज आकाशवाणी नजीबाबाद के श्रोताओं के लिए आप क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे, खासकर उन युवाओं के लिए जो अपने सपनों को साकार करने की दिशा में प्रयासरत हैं?
0: मतलब मेरा जो है सुझाव ये रहेगा कि आप आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े रहें। तो रेडियो को मैंने ज्ञान का एक माध्यम बनाया, युववाणी से और समाचार से मैंने लगातार अपने आप को अपडेट किया और ये जो चीजें इसमें आती थी वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती थी। तो इससे आप लगातार जुड़े रहें, बोलने का तरीका वो इंटरव्यू में आपको काम आएगा, उच्चारण का तरीका वो आपका इंटरव्यू में काम आएगा। तो फैक्ट और फिगर अगर रेडियो में कोई चीज आई है तो वो 100% सही ही होगी। दूसरा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए रेडियो बहुत अच्छा, अलग अलग विषयों में जो है वार्ताएं आती रहती हैं। आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए रेडियो और आकाशवाणी नजमात एक बहुत अच्छा टूल है। मैं नई पीढ़ी से कहूंगा कि आप इनसे जुड़े रहिएगा। तो रेडियो जैसे जब मैं प्रोग्राम सुनता था तो वो सारे ऑथेंटिक होते थे, तो वो जो फैक्ट और फिगर उन्होंने बोल दिए तो मैं तुरंत नोट कर लेता था। इसी ढंग से जब मैं कार्यक्रम देने यहाँ आता था तो एक कार्यक्रम देने के बदले कुछ आर्थिक धनराशि भी मुझे मिलती थी, तो वो मुझे तैयारी करने में भी मदद करती थी। मतलब मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन, किताबें भी जो है आकाशवाणी नजीबाबाद की जो मदद मिल जाती थी उसकी वजह से ली है। कई शब्दों का उच्चारण कैसे करना है ये आकाशवाणी नजीबाबाद से जो है सीखने को मिल जाता है। व्यक्तित्व विकास के लिए इंटरव्यू एक बहुत अच्छा माध्यम होता है, तो इंटरव्यू के बहुत सारे आयाम आपको आकाशवाणी से सीखने को मिल जाएंगे। कार्यक्रमों में विविधता है, मतलब युववाणी है, वार्ता है, कृषि दर्शन कार्यक्रम है, कंप्लीट पैकेज है एक रेडियो। तो मैं नए युवाओं से ये कहूंगा कि आप रेडियो से बिल्कुल जुड़े रहें, आपको आर्थिक से लेकर के व्यक्तित्व विकास तक हर आयाम में आपकी मदद करता है रेडियो।
1: तो संतोष नेगी जी, आपने 90 साल बेमिसाल कार्यक्रम में अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आकाशवाणी नजीबाबाद परिवार का।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत 90 साल बेमिसाल रेडियो प्रसारण के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संतोष सिंह नेगी से रेणुकूट नाला की विशेष भेंटवार्ता। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 7 बज रहे हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं, आकाशवाणी के इस खूबसूरत से

कार्यक्रम छाया गीत में आप सबका हार्दिक स्वागत है। गीत संगीत हमारे जीवन को भावनाओं के रंगों से भर देता है। आज के इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे कुछ ऐसे ही सदाबहार गीत जो आपके मन को तरोताज़ा कर देंगे। तो आइए सुरों की इस खूबसूरत सफ़र का आनंद लेते हैं और शुरुआत करते हैं अपने इस पहले गीत से, जिसको हमने लिया है फिल्म कटी पतंग से। आवाज़ है किशोर कुमार की, गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की है आरडी परमन ने। फिल्म है कटी पतंग।

श्रोताओ, आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, जिसको हमने लिया है फिल्म तीसरी कसम से। आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीत है शैलेंद्र का और संगीत

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत अब यहीं पर समाप्त होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:10 हो रहे हैं।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, आइए आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम और कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों के संदर्भ में जानकारी दे दें। पहले जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की इस प्रकार से रहेगी। आज रात्रि 9:30 पर सुनिएगा राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती, और आज ही रात्रि 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। और अब से कुछ ही देर में यानी शाम 7:32 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुनील मुखर्जी के गाए कुछ भजन। श्रोताओ, ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की, और अब कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा इस प्रकार से रहेगी। कल सवेरे 9:15 पर सुनिएगा लखनऊ केंद्र से प्रसारित सामयिक चर्चा। कल रात्रि 9:30 पर सुनिएगा नेशनल साइंस मैगजीन रेडियोस्कोपी, और कल ही रात्रि 10:00 अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। ये दोनों ही कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

कर 5 मिनट पर सुनेगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, और इसी क्रम में सवेरे 6:30 पर श्री रामचरितमानस गान की संगीतमय प्रस्तुति। कार्यक्रम धरती गाती है में कल सवेरे 9:50 पर आनंद लीजिएगा कुलदीप सिंह आर्या और साथियों की गाई रागनी का, और इसी क्रम में कार्यक्रम लोकधारा में सुनिएगा अनीता सिंघल से बुंदेलखड़ी लोकगीत कल दिन में 1:45 पर। भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में सुहाना सफर रोजाना की तरह सवेरे 10 बजे पेश किया जाएगा।

आपके पत्रों के उत्तर पर आधारित कार्यक्रम आपका पत्र मिला, आप सुनेंगे कल दोपहर 12:05 पर। फिल्मी संडे में कल दोपहर 12:30 पर हम आपको सुनवाएंगे 1992 में बनी फिल्म बेटा की कहानी। बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम बाल वाटिका कल दिन में 1:15 पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है सुनिएगा कल शाम 5:05। युवा श्रोता सुनेंगे अपना पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम युववाणी कल शाम 5:15 पर। कार्यक्रम कृषि जगत में अपने निर्धारित समय पर हमारे किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम कृषि जगत। कल शाम 7:50 पर कार्यक्रम अदबी दुनिया में सुनेगा दीपक अरोड़ा के कलाम। कल शाम 6:45 पर कार्यक्रम विविधा में सुनेगा विभा पांडे से कहानी हौसलों की उड़ान। श्रोताओ, ये थी आज और कल प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों के संदर्भ में जानकारी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:18 हो रहे हैं। कुछ ही देर में आप लखनऊ केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में 516 करोड़ रुपए की 262 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बिना भेदभाव के सरकार पहुंचा रही है योजनाओं का लाभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया भर में छाई आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक आर्थिक शक्ति में बदला भारत। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज में गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। कहा, 12 वर्षों में देश में हुआ शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन। और वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के बाद विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने आज भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ का किया भ्रमण। समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के अनुभव को बताया अविस्मरणीय। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री

0: आदित्यनाथ ने आज गोंडा से कुल 516 करोड़ रुपए की लागत की 262 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें कटरा विधानसभा क्षेत्र में 256 करोड़ रुपए और करनैलगंज में 260 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और 9 वर्ष में डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का परिणाम है कि प्रदेश की नई पहचान बनी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास विजन के तहत सरकार बिना भेदभाव घर घर तक विकास योजनाएं पहुंचा रही है।
1: हर पात्र व्यक्ति को, वह किसी जाति का हो, किसी मत संप्रदाय का हो, अगर वह पात्रता की श्रेणी में आता है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उसको योजना का लाभ दिया जाएगा। और यही तो मोदी जी ने कहा था, सबका साथ और सबका विकास।
0: इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने सुबह तुलसीपुर में देवी शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन पूजन किया और मां से सुखी स्वस्थ और समृद्ध उत्तर प्रदेश की कामना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इस बीच 3 दिवसीय दौरे पर कल लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दौरे के दूसरे दिन विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने हरदोई रोड स्थित मिलेनियम पैलेस में पश्चिम मंडल 2 के प्रबुद्ध नागरिकों और गणमान्य व्यक्तियों के साथ संवाद बैठक की। केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकास तीर्थ कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज जिले में संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। श्री चौधरी ने जनपद के प्राचार्य एवं शिक्षकों के साथ संवाद कार्यक्रम में सहभागिता भी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। नई शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण, रोजगारपरक एवं तकनीक आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत तथा नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ प्रत्येक परिवार तक शीघ्रता से पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वाराणसी में आयोजित पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री श्री शर्मा ने योजना की प्रगति, उपलब्धियों और आगामी कार्य योजना की विस्तार से समीक्षा की। एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और प्रोत्साहन से देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है।
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा और प्रोत्साहन से पूरे देश में सोलर रिवोल्यूशन हो रही है, सौर क्रांति हो रही है। उसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा लगभग 2 साल पहले की गई थी और उस योजना के क्रियान्वयन में पूरे देश में काम हो रहा है। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी हम लोग पीएम सूर्य घर को लेकर के प्रगति कर रहे हैं।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर आज बस्ती पहुंचे। मीडिया से बातचीत में श्री राजभर ने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करती है, इसलिए वो इतने लंबे समय तक शासन करने वाले प्रधानमंत्री बने हैं।
4: मोदी जी पर देश के 140 करोड़ जनता

0: विश्वास कर रही है और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाया। 10 जून को 12 साल कार्यकाल पूरा उनका होगा और देश में आजादी के बाद पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी होंगे जो लगातार लंबे समय तक देश में शासन करने वाले प्रधानमंत्री गिने जाएंगे।
1: प्रदेश में सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार आज परीक्षा की तैयारियों का पूर्वाभ्यास किया गया। इसी क्रम में अमरोहा में आज जिलाधिकारी डॉ नितिन गौड़ एवं पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने परीक्षा की तैयारियों को परखा। कानपुर में प्रशासन ने व्यवस्थाओं को लेकर गोष्ठी आयोजित की। साथ ही रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परिवहन निगम रियायती दरों पर परीक्षार्थियों को सेवा उपलब्ध कराएगा। वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के सफल समापन के बाद विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने आज वाराणसी में दीनदयाल हस्तकला संकुल का दौरा किया। सदस्यों ने यहां भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा की समृद्ध विरासत को दर्शाने वाले संग्रह को देखा। इससे पूर्व प्रतिनिधिमंडल ने भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ का भ्रमण किया। बौद्ध तीर्थस्थल के दर्शन के दौरान प्रतिनिधि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित नजर आए। ब्राजील से आए प्रतिनिधि लुकास ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि ये अनुभव उनके लिए बेहद प्रेरणादायक और अविस्मरणीय रहेगा। प्रतिनिधियों ने बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर का भी भ्रमण किया। इस अवसर पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ अरविंद कुमार ने बताया कि इस भ्रमण का उद्देश्य विदेशी प्रतिनिधियों को भारत की वास्तविक सांस्कृतिक धरोहरों और जीवंत परंपराओं से रूबरू कराना है।
2: ब्रिक्स मीटिंग उसमें कई सारे ट्रैक्स होते हैं, उसमें ट्रेड है, एनवायरमेंट है, कल्चर इज आल्सो वन ऑफ द ट्रैक ऑफ ब्रिक्स मीटिंग्स। तो कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट ट्रैक है और कल्चर के हम बातें तो करते हैं मीटिंग में, जब तक दिखाएंगे नहीं तो उनको शायद उतना समझ भी नहीं आए। तो हम चाहते हैं कि हम जो भी कल्चर के बारे में बात करते हैं उसको हम दिखाएं भी।
1: अयोध्या के श्रीराम मंदिर परिसर में स्थित शेषावतार मंदिर के शिखर पर 23 जून को ध्वजा स्थापना होगी, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं।
3: प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उनके करकमलों के द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम सम्पन्न और इसके लिए जो है कार्यक्रम की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। लोगों को निमंत्रित किया जा रहा है और यह संख्या भी जैसा बताया गया ट्रस्ट के द्वारा 3000 से ऊपर संख्या होगी और हम सब उसके साक्षी बनने जा रहे हैं, क्योंकि अब यह शेषावतार का जो मंदिर है, जो शिखर है, वह बहुत लंबे प्रतीक्षा के बाद अब उस पर ध्वजारोहण होने जा रहा है।
1: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज प्रयागराज में वाराणसी विंध्याचल एवं प्रयागराज मंडल की संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2026 का उद्घाटन किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज सर्वाधिक अनाज उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में आज मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भी प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में 516 करोड़ रुपए की 262 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बिना भेदभाव के सरकार पहुंचा रही है योजनाओं का लाभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया भर में छाई आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक आर्थिक शक्ति में बदलाव भारत। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज में गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। कहा, पिछले 12 वर्षों में देश में हुआ शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन। और वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के बाद विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने आज भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ का किया भ्रमण। समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के अनुभव को बताया अविस्मरणीय। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं।

श्रोताओं, आइए आपको एक बार फिर से याद दिला दें अपने विशेष कार्यक्रमों के विषय में। आज रात्रि सुनिएगा 9:30 पर राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती, और आज ही रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओ, अब हम आपको सुनवा रहे हैं सुनील मुखर्जी के गाए कुछ भजन, और कार्यक्रम है सुगम संगीत। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये पहला भजन सुनील मुखर्जी की आवाज में।

श्रोताओं, इस समय आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रही हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और इसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं सुनील मुखर्जी के गाए कुछ भजन। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में कार्यक्रम का ये अगला भजन।

श्रोताओ, आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत सुनील मुखर्जी के गाए भजन। श्रोताओ, भजन केवल गीत नहीं बल्कि ईश्वर से जुड़ने का एक मधुर माध्यम है। जब मन में भजन रम जाता है तब चिंता और अशांति स्वयं ही दूर हो जाती है। भजन की मधुर धुन आत्मा को शांति और हृदय को सुकून प्रदान करती है। तो आइए सुनते हैं ऐसी ही एक सुकून देने वाला भजन सुनील मुखर्जी की आवाज़ में।

सुमिरन कर ले मेरे मना। जी हाँ श्रोताओ, ईश्वर का स्मरण और भजन जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। भजन वो दीपक है जो श्रद्धा और विश्वास की ज्योति से जीवन को प्रकाशित करता है। जहाँ भजन की गूंज होती है, वहाँ भक्ति, प्रेम और आनंद का वातावरण स्वतः ही बन जाता है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम भजन सुनील मुखर्जी की आवाज़ में।

श्रोता सुनील मुखर्जी के गाए इसी भजन के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के रात्रि के 8 बज रहे हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। श्रोता संगीत वो भाषा है जिसे समझने के लिए शब्दों की नहीं बल्कि एक संवेदनशील दिल की जरूरत होती है। श्रोता आप सुन रहे हैं गीत संध्या। दिन भर की भागदौड़ के बाद ये शाम लेकर आई है सुरों भावनाओं और यादों से सजी एक खूबसूरत महफिल। आज की इस संगीत में सफ़र में हम सुनेंगे ऐसे गीत जो कभी मुस्कान बिखेरेंगे, कभी पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे और कभी दिल के तारों को छू जाएंगे। तो आइए सुरीली शाम का आगाज़ करते हैं और कदम बढ़ाते हैं गीतों की उस दुनिया की तरफ जहां हर धुन कुछ कहती है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत जिसको हमने लिया है फिल्म नवरंग से। आवाज़ है महेंद्र कपूर और आशा भोसले की। गीत के बोल लिखे हैं भरत व्यास ने और संगीत दिया है रामचंद्र ने।

देख चंद्रमा आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म नवरंग में महेंद्र कपूर और आशा भोसले को, गीत था भरत व्यास का और संगीत था रामचंद्र का। श्रोताओं, कभी कभी किसी खास इंसान की मौजूदगी ही जीवन को रोशनी से भर देती है। उसकी एक मुस्कान से उदास शाम भी जगमगा उठती है और दिल को नया सुकून मिल जाता है। ऐसे ही भावों को बड़े खूबसूरत अंदाज में ये बयां करता है हमारे अगला गीत, जिसको हमने लिया है फिल्म आंधी से। आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेश की। गीत को लिखा है गुलजार ने और धुन तैयार की है आरडी परमन ने। लीजिए सुनिए फिल्म आंधी का ये गीत।

श्रोताओ, फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओ, जीवन के रास्ते में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ साथ ही नहीं निभाते बल्कि हर खुशी और हर मुश्किल में हमारे हमसफर बन जाते हैं। दोस्ती और प्यार का यही खूबसूरत एहसास लिए हुए है हमारे कार्यक्रम का अगला गीत, जिसको हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, फिल्म है गीत। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी को फिल्म गीत में।

श्रोता, दिल के आंगन में कोई चुपके से उतर जाता है, बिना हट के सपनों में बिखर जाता है। न जाने कैसी होती है मोहब्बत की ये डोर, कोई अपना बनकर मन का नगर लूट जाता है। आइए सुनते हैं फिल्म अभिमान का ये खूबसूरत गीत, जिसे अपनी सुरीली आवाज से अमर बनाया है लता मंगेशकर ने, और इस गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने, और संगीत है एस टी बर्मन का। फिल्म है अभिमान।

श्रोता, अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मनहर उदास को फिल्म अभिमान में। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। श्रोता, पढ़ते हैं कार्यक्रम में अगले गीत की ओर। सौंदर्य की प्रशंसा जब शब्दों में ढलती है तो कविता बन जाती है, और जब सुरों में सजती है तो गीत का रूप ले लेती है। किसी प्रिय के अनुपम रूप और आकर्षण का ऐसा ही मनोहारी चित्र प्रस्तुत करता है हमारा ये अगला गीत, जिसको हमने लिया है फिल्म एक बार मुस्कुरा दो से। आवाज़ है किशोर की और गीत लिखा है इंदिवर ने और धुन तैयार की है ओपी नैयर ने। तो आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म एक बार मुस्कुरा दो से ये गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है एकल फिल्म के गीतों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत। श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रही हैं फिल्म झुक गया आसमान के कुछ यादगार गीत। ये फिल्म 1968 में बनी। इसके निर्देशक थे लेख टंडन और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राजेंद्र कुमार और सायरा बानो ने। तो आइए सुनते हैं इसी फिल्म का ये बेहद खूबसूरत गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: श्रोताओ, एकल फिल्म के गीतों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। मीडिया वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म झुक गया आसमान के कुछ यादगार गीत। श्रोताओ, फिल्म झुक गया आसमान का संगीत जो दिया है वो दिया था शंकर जयकिशन ने, और जबकि उनके गीतों को स्वर दिया मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और अन्य प्रसिद्ध गायकों ने। आज भी इस फिल्म के गीत श्रोताओं के दिलों में अपनी खास जगह बनाए हुए हैं। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

सूचना ज्ञान एवं मनोरंजन से भरपूर प्रसारण के 90 वर्षों से हम हैं आपके साथ, क्योंकि हम हैं आकाशवाणी।

श्रोता, झुक गया आसमान के गीतों में प्यार भावनाओं और मधुर संगीत का सुंदर संगम देखने को मिलता है। यही वजह है कि दशकों के बाद भी ये संगीत और संगीत प्रेमियों की पसंद बने हुए हैं। उम्मीद है आपको आज की ये संगीत में प्रस्तुति पसंद आई होगी। तो श्रोताओं, अब हमारे कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, तो आइए आपको सुना देते हैं इसे फिल्म का एक और गीत, और ये गीत है हमारे कार्यक्रम का अंतिम गीत।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कल फिल्म के गीतों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। अब आप दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की, देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा, दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
2: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि

मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम 500 ग्राम 1 से 5 किलो 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
2: मेट्रो के लिए 3 न्यू ट्रेन, नई जनरेशन की ट्रेन अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारको दुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारको दुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 4th लेवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लेवेंडर गोल्स ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लेवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लेवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लेवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
4: खाड़ी देशों और अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमरीकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
5: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
6: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है. यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है. मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा. पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी.
1: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है. किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है. उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है. प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है. आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए. महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया. मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया. 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है. CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपनी आवेदन जमा कर सकेंगे. इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी. मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है. पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है. इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है. जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है. फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया. आशीष तानीपूति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है. प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया. उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है. गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है. फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया. भारत ने 6ठी बार ये खिताब अपने नाम किया है. अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है. भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है. पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है. न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं. कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं. केएल राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली. ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है. और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद

0: for the next 2 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds meeting with the Economic Advisory Council, reviews country's economic transformation and long-term development priorities. Centre introduces standard edible oil pack sizes to enhance transparency and promote uniform packaging practices. External Affairs Minister S. Jaishankar holds talks with his Nepalese counterpart Shishir Karnal in New Delhi, says India and Nepal collaborate closely to maintain security along their open border. Tensions across West Asia escalate as Iran launches ballistic missiles towards U.S. military facilities in Kuwait and Bahrain. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल के साथ मीटिंग की और मुल्क के मौशी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात का जायजा लिया। मरकज ने खुर्दनी तेल के पैकेट के मियारी साइज का सिलसिला शुरू किया है ताकि शफाफियत बढ़ाई जा सके और पैक करने के तौर तरीकों में यकसानियत को फरोग दिया जा सके। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नेपाल के अपने हमनसब शिशिर खनाल के साथ बातचीत की और कहा कि भारत और नेपाल अपनी खुली सरहद पर सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए करीबी इश्तराक से काम करते हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीका के फौजी ठिकानों पर ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। और हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने जापान को हराकर 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप जीत लिया है, जबकि भारतीय खवातीन टीम ने कांसे का तमगा हासिल किया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल के अरकान के साथ मीटिंग की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म और इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल ने आलमी उथल पुथल के दौर में भारत की मुआशी तरक्की को मजीद फरोग देने की खातिर मुख्तलिफ इकदामात और तजवीजों पर तबादला ख्याल किया। इस मीटिंग में रहन सहन में सहूलत और कारोबार करने में सहूलत को और ज्यादा बेहतर बनाने की खातिर मुख्तलिफ इस्लाहात पर भी गौर किया गया। अरकान ने भारत और दुनिया पर मगरबी एशिया मुहाजराई के असरात के ताल्लुक से अपनी अपनी राय का भी इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज की इस मीटिंग में भारत की इक्तिसादी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात से मुतालिक मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा मीटिंग के शुरका ने इस्लाहात के सफर में और तेजी लाने, नीज रहन सहन और कारोबार करने में सहूलत को यकीनी बनाने के बारे में भी अपने अपने नुक्ते नजर पेश किए। इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल एक आजादाना इदारा है जो इक्तिसादी और मुतालिका मामलात पर भारत सरकार खास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म को सलाह देता है। आज की मीटिंग में इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल के अरकान के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म के दो प्रिंसिपल सेक्रेटरियों डॉक्टर पी के मिश्रा और शक्तिकांत दास ने भी शिरकत की। मरकज ने वजन से मुताल्लिक कानूनी फ्रेमवर्क के तहत खुर्दनी तेल के लिए पैकेट के मयारी साइज का सिलसिला शुरू किया है, जिससे मार्केट में और ज्यादा शफाफियत और यकसानियत आ सकेगी। सारिफीन के उमूर के महकमे ने मजकूरा फ्रेमवर्क के तहत खुर्दनी तेल और फैट्स के लिए मजमुई मकदार और पैकेट के मयारी साइज का तायुन करने से मुताल्लिक तरीक़ाकार में तरमीम की है। सारिफीन के उमूर खुराक और तकसीम आमा महकमे की वजारत ने कहा है कि नजरसानी शुदा जाब्तों के तहत बड़े खुर्दनी तेलों के लिए पैकेट के मयारी साइज तजवीज किए गए हैं, जिनमें पाम ऑयल, पामोलिन, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, चावल की भूसी का तेल, कपास के बीज का तेल और मकई का तेल शामिल है। खुर्दनी तेल के मंजूर शुदा पैकेट 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से लेकर 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम तक के होंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में एक सड़क हादसे में लोगों की मौत पर दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया, नायब सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने इस हादसे में हलाक होने वालों के कुनबों से ताजियत का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने

नरेंद्र मोदी ने इक्तिसादी सलाहकार काउंसिल के साथ मीटिंग की और मुल्की मुआशी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात का जायजा लिया। मरकज ने खुरदनी तेल के पैकेट के मयारी साइज का सिलसिला शुरू किया है ताकि शफाफियत बढ़ाई जा सके और पैक करने के तौर तरीकों में इंसानियत को फरोग दिया जा सके। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नेपाल के अपने हम मनसब शिशिर खनाल के साथ बातचीत की और कहा कि भारत और नेपाल अपनी खुली सरहद पर सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए करीबी इश्तराक से काम करते हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीका के फौजी ठिकानों पर ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है और हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने जापान को हराकर 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप जीत लिया है जबकि भारतीय खवातीन टीम ने कांसे का तमगा हासिल किया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। हिंदी पत्रकारिता अपने 200 वर्ष पूरे कर रही है। उन महिला पत्रकारों को याद करना जरूरी है जिन्होंने पर्दे के पीछे नहीं बल्कि मोर्चे पर खड़े होकर कलम उठाया। रोशनी गुलाबी रोशनाई की आज का हमारा संपादकीय इसी यात्रा को सलाम करता है। आज से लगभग 200 साल पहले 30 मई 1826 को कलकत्ता के एक तंग गली में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में उदंत मार्तंड का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। लेकिन इस सूर्योदय की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम उन महिलाओं के योगदान को स्वीकार नहीं करते जिन्होंने पितृसत्तात्मक समाज की बेड़ियों को तोड़कर कलम उठाया, पत्रिकाएं निकाली और हिंदी पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया। भारत की पहली महिला पत्रकार के रूप में हेमंत कुमारी देवी चौधरानी का नाम अंकित है। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतेंदु हरिश्चंद्र के कलम का चर्चा चारों ओर था, हेमंत कुमारी देवी उनकी समकालीन लेखिका और संपादिका के रूप में सक्रिय थी। सन 1888 में उन्होंने सुगृहिणी पत्रिका का संपादन किया। सन 1909 में प्रयाग से स्त्री दर्पण पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसकी संपादिका थी रामेश्वरी देवी नेहरू और प्रबंधक थी कमला देवी नेहरू। ये महज एक पत्रिका नहीं थी, भारतीय नारी की सामूहिक चेतना का प्रथम मुद्रित स्वर था। इस पत्रिका ने बाल विवाह, विधवाओं की दयनीय स्थिति, स्त्री शिक्षा के अभाव और पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को अपने पैने कलम का निशाना बनाया। आधुनिक हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का नाम यदि केवल कविता तक सीमित रखा जाए तो ये उनके साथ अन्याय होगा। फ्रांसीसी लेखिका सिमोन डी बोवार की प्रसिद्ध पुस्तक द सेकंड सेक्स आने से कई वर्ष पहले ही महादेवी वर्मा ने 1930 के दशक में चांद जैसी पत्रिकाओं के लिए महिलाओं के उत्पीड़न पर शक्तिशाली निबंधों की एक श्रृंखला लिखी थी। ये निबंध केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं थे, सामाजिक पत्रकारिता के उत्कृष्ट उदाहरण भी थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हिंदी पत्रकारिता ने राष्ट्रीय चेतना की मशाल थामी। इस मशाल को थामने में महिला पत्रकारों की मुट्ठियां भी लगी थीं। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी कविता झांसी की रानी आज भी रक्त में उबाल लाती है, उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में अपनी लेखनी से स्वाधीनता की अग्नि को भड़काया। इसी श्रृंखला में प्रताप, अभ्युदय और हिंदुस्तान जैसे पत्रों में महिला लेखिकाओं की सक्रिय भागीदारी रही। स्वतंत्रता के बाद हिंदी पत्रकारिता के विस्तार के साथ महिला पत्रकारों की भूमिका भी बदली। प्रभा दत्त जैसी संपादक ने ये साबित किया कि हिंदी के बड़े समाचार पत्र का नेतृत्व एक महिला भी उतनी ही सक्षमता से कर सकती है या शायद बेहतर कर सकती है। तब से लेकर आज तक प्रखर पत्रकार

0: ये संपादकीय कक्ष तक सीमित नहीं है, लेकिन श्रोताओं, ये संपादकीय केवल उपलब्धियों का गान नहीं है, ये एक ईमानदार आत्म परीक्षण भी है। 200 सालों के उत्सव के बीच संख्याओं का उपलब्ध आंकड़ा असहज करता है। क्या ये उन महिलाओं की विरासत के साथ न्याय है जिन्होंने लगभग 200 साल पहले समाज की परवाह किए बिना कलम उठाया था? आकाशवाणी, जिसकी आवाज ने दशकों से इस देश के घर घर को जोड़ा है, गांव की चौपाल से लेकर शहर के दफ्तर तक रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं, एक रिश्ता रहा है। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस अनूठी यात्रा पर आज अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली।
1: मैं पिछले 40 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूँ, ऑल इंडिया रेडियो में भी काफी आता रहा हूँ। जो पिछले 90 वर्षों का ब्रॉडकास्टिंग का इतिहास है, खास करके जो हिंदी, उर्दू और इलाकाई जबानें हैं उनमें ब्रॉडकास्टिंग का, उसका बड़ा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। और आज़ादी के वक्त से लेकर और अब तक, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत देश की आज़ादी से पहले हो गई थी, देश के नवनिर्माण से लेकर के आज तक 80 बरस हो गए हैं देश की आज़ादी को भी, तो उसमें ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही कारगर योगदान है। न सिर्फ ये कि उसने लोगों को खबरें पहुंचाने का काम किया है, बल्कि उन्हें एजुकेट करने का और उनका एंटरटेनमेंट करने का भी काम किया है। ये एक बहुत बड़ा रोल है। और चूंकि एक जमाना था कि जब सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो ही हुआ करता था, 90 तक मैं समझता हूं कि ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए रहा है और उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।
0: वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली, उनके अनुभव, उनकी स्मृतियाँ और उनका विश्लेषण निश्चित ही हमें रेडियो की उस आत्मा तक ले जाएगा जो आज भी धड़क रही है। सच में जिस माध्यम ने आज़ादी की आवाज को सहेजा, देश की भावनाओं को बोली दी, वो आकाशवाणी कोई यंत्र नहीं, एक जीवंत परंपरा है।

0: जब समाज से कट जाता है तो केवल शब्दों का खेल बन जाता है, लेकिन जब साहित्य की जड़ें जमीन से जुड़ी हों तो वो एक नया अर्थ पा लेता है। आज की हमारी अगली प्रस्तुति में हम एक ऐसी ही जरूरी बातचीत लेकर आए हैं वरिष्ठ साहित्यकार पंकज बिष्ट के साथ। उनसे बातचीत कर रहे हैं प्राध्यापक और साहित्यकर्मी विशाल पांडे। तो सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, साहित्य समाज और सरोकार।
1: पंकज बिष्ट अपनी कहानियों और संपादन के लिए हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। उनकी कहानियां 15x25, बच्चे गवाह नहीं हो सकते, उपन्यास लेकिन दरवाजा, उस चिड़िया का नाम, पंख वाली नाव, गोलू और भोलू से हिंदी साहित्य हम सभी समृद्ध हुए। मैं जानना चाहूंगा पंकज जी कि लेखन की ओर आपका पहला झुकाव कब और कैसे उत्पन्न हुआ?
2: देखिए, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है कि मैं ये नहीं मान के चलता था कि मैं कहानीकार बनूंगा या उपन्यासकार बनूंगा, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं लिखने पढ़ने का काम चुनूं और करूं। बहुत संभव है कि अगर मैं पत्रकारिता वगैरह में नहीं आता तो हो सकता था मैं टीचिंग के काम में चला जाता, अध्यापन में जाता, तो जो कि उतना ही बहुत बड़ा होता। क्योंकि मैं लिखने के प्रति मेरा जो अनुराग था वो ज्यादा था, तो मैंने जब लिखना शुरू किया और वो थोड़ी इधर उधर उसके लिए कोशिश करी तो मुझको ये रास्ते ज्यादा बेहतर दिखाई देगा। तो उसमें ये हुआ कि जैसे मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ एक जर्नलिज्म का स्कूल खुला तो उसमें एडमिशन लिया, उसमें मैंने पढ़ा। वो यहाँ के जर्नलिज्म के भारत में स्कूलों में शुरुआती था, वो बाद में खत्म हो गया,

0: उससे मुझे मेरा एक्सपोजर हुआ और मैं डेली वगैरह में जाने लगा, और जैसे मैं हिंदी में लिखना नोवेल टाइम्स विशेषकर उस दौरान के एडिटर उनके, इनका नाम अक्षय कुमार जैन था, वो भी जुड़े हुए थे, तो वहां मुझको एंट्री मिल गई, यानी कि मेरे लिए उन्होंने कहा, वो एडिटर वगैरह देख लेते थे वह। फिर वहां दो एडिटर रहते थे, उनमें एक महिला थी, रविवारी संस्करण देखती थी, तो वो बेचारी भली भली औरत थी, तो वो मुझसे फिर धीरे धीरे वो जब काम करवाने लगी तो मैं अभी अच्छा काम कर, रिलेटिवली उनको ठीक लगने लगा, तो उससे मैं मुझे लिखने की और चीजों को समझने की और विषय कैसे चुनना चाहिए इस बात की मेरी समझ थोड़ी बनी, तो ये मुझको फायदा हुआ कि बाद में अपने कैरियर को उसी तरफ बढ़ाने में मुझे उसका मदद मिली।
1: पंकज जी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, आपकी पहली कहानी 1967 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी। क्या आपको याद है कि पहली बार अपनी किसी रचना को प्रकाशित देखकर आपने क्या अनुभव किया था?
0: वो जो एक कहानी छपी उसका अनुभव जो है बड़ा बहुत मजेदार है। हुआ ये था कि मैंने उन दिनों एक लेखिका होती थी सची रानी गुड्डू, उन्होंने मेरे ख्याल से आर्ट वाइट पर बहुत लिखा है, उनका बेटा वो साप्ताहिक हिंदुस्तान में काम करता था, उससे कहीं मेरी मुलाकात हो गई, बातचीत, यंग था वो मेरी तैसा, तो मैं थोड़ा छोटा था, तो उसने बातचीत में तुम क्या करते हो, मैंने कहा लिखने के कर। उसने कहा यार तुम लिख हमारे यहाँ दिखाओ, तुम क्या कहानी लिखते हो, मैं देखो तुम्हारी कहानी, तो मैं डर के मारे मैंने कहा नहीं, तो बड़ा मैगजीन है कौन छापेगा क्या करेगा, तो मैंने लिखा हुआ था उसको देखने को दे दी, उसने जी उसने कहा तुम्हारी कहानी ठीक ठाक है, तुम ऐसा करो हमारे एडिटर को दो, मैं देता हूँ। तो उन दोनों एडिटर कोई सज्जन थे, अब वो याद नहीं आ रहा, पहले भटनागर जी हुआ करते थे, उनके बाद कोई थे, तो वो उन्होंने वो देखी और उन्होंने मुझे पत्र लिखा, जिंदगी में पहली बार आप हैं और कोई संपादक आपको पत्र लिख रहा है कि आप आगे मिलिए और मैं आपसे चर्चा करने, मैं बड़ा उत्साहित और रोमांचित कि भाई ये क्या कहने वाले, मैं वहां गया, उन्होंने कहानी की बड़ी तारीफ करी और उसके बाद मुझसे कहा कि देखिए आपकी कहानी इतनी अच्छी है कि हम अपने पत्र का हमें हमारे पाठकों के जिससे ऊपर की है तो इसलिए हम नहीं छापेंगे, तो मैं खैर कहानी लेकर वापस आ गया। सौभाग्य से वो एडिटर जो है बदल गए और वहां मनोहर श्याम जोशी आए, हाँ उसने मुझसे कहा अब दे दो, फिर से देते हैं, तो मैंने उसको दिया, वही फॉरवर्ड कर देता था, तो फिर मुझे वहां से लेटर आया मिलने आओ, यार फिर ये क्या तमाशा है, पहली बार तो मैंने सोचा कि उन्होंने मुझे बुलाया और कहानी छापी नहीं और अब ये फिर कुछ ऐसे ही होगा, फिर वो मरे मन से वहां पहुंचा, पहली बार मैं मनोहर श्याम जोशी से मिला, तो जोशी बोले तुम यार ये क्या कहानी लिखते हो, थोड़ा सा और जो जिंदगी चीजें हैं उसको देखो, ये क्या रोमांटिक कहानी वाली लिख रहे हो तुम, अब मैं समझ गया कि कहानी छापेंगे नहीं, जाते हुए बोले मैं तुम्हारी कहानी तो छाप रहा हूँ लेकिन तुम जो है ना और फिर कुछ चीजें देखो, तो एक तरह से मेरे लिए उसका प्रोत्साहन भी हुआ और कहानी छप भी गई। हाँ मतलब एक चीज ये थी उसमें एक फोटो भी छपता था, तो फोटो छपने से जो अतिरिक्त आनंद आया तो वो अतिरिक्त था।
1: मैं जानना चाहता हूँ कि आपके लिए साहित्य केवल अभिव्यक्ति है या सामाजिक हस्तक्षेप का माध्यम भी है?
0: असल में मेरे लिए दोनों एक से जुड़े हुए हैं, समाज और रचनात्मकता, क्योंकि मैं व्यक्ति हूँ, एक मनुष्य हूँ, एक खास समाज में रहता हूँ, उसकी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं जिस तरह से उसको देखता हूँ, उसकी अच्छाइयों को बुराइयों को अपनी निकटता से, वो मेरी रचनाओं में आएंगी आएंगी, वो आती है। और अगर कोई चीज ज्यादा चुनौतीपूर्ण है जो लगता है कि समाज को पिछड़े करने में या किसी एक सेक्शन के साथ अन्याय करने में अगर वो दिखाई दे रही है, तो ऐसा है कि एक लेखक के रूप में आप उद्वेलित होते हैं, क्योंकि आप अपने लेखन से आपको चीजों को जो देखने का आपकी जो दृष्टि होती है मुझे बनती है कि वो समझे कि आखिर जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, एक खास तरह का व्यवहार कुछ के साथ हो रहा है कुछ के साथ नहीं हो रहा, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है ये आपको देख, तो लेखक के रूप में ये सब कुछ आप देखते हैं, तभी अगर आप उपन्यास लिखना चाहते हैं और समाज से जुड़ा हुआ लिखना चाहते हैं या आप वास्तविक समस्या को लेकर लिखना चाहते हैं तो आपको समाज को समझने का दृष्टि तो होनी चाहिए, बिना उसके तो आप नहीं कभी भी ढंग के उससे नहीं लिख पाएंगे। तो अब मैं अपनी रचनाओं में जो कुछ भी वो आ रहा है तो एक तरह से वो रचनात्मकता का हिस्सा है, वो अतिरिक्त तो कुछ नहीं।
1: पंकज जी, आपकी कहानियों को पढ़ते हुए लगता है कि उसमें आम आदमी की पीड़ा और व्यवस्था के प्रति एक तीखा असंतोष है, ये दृष्टि आपके भीतर कैसे विकसित होती है?
0: देखिए कारण वही है, जब मैंने चीजों को देखने का और जो स्थितियां हैं उनको समझने का कि आखिर क्यों जो इस असमानता है, जो अन्याय है, जो कुछ लोग

0: के साथ जो भेदभाव है वो क्यों और है, तो वो क्यों नहीं बदल रहा है अब तक, क्यों उससे कोई प्रयत्न नहीं दिखाई दे रहा, वो सारी चीजें मुझे प्रेरित करते रहे, देखते रहे। तो मैंने कोशिश करी कि अब एक तरह से चूंकि मैं जिन स्थितियों में शुरुआत में कुछ दिनों रहने के हुआ पड़ा हमको, तो जो चीजों का ना होना, आपके पास पैसे की कमी होना, आपको एक बेहतर स्थिति में नहीं रहने देने का ना, जो अभाव जिसको कहते हैं, अभाव की जो स्थिति है आपने सहा है, तो आप उससे औरों के साथ आइडेंटिफाई करने में आप मदद मिली, तो मतलब एक लेखक के रूप, और एक लेखक के रूप में मेरा ख्याल से एक रचनाकार के रूप में या कलाकार के रूप में ये भी होता है कि जो उसकी संवेदनशीलता है वो उसकी अपनी जो अनुभव है उनके परे भी जाते, वो औरों से भी सीखते हैं, औरों को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जो भी मैंने जिस तरह से मैं जिंदगी को देखा है, जो अभिव्यक्त करने की कोशिश करी है, उसमें यही तरीका हो यही है। जो
1: पंकज जी आपकी रचनाओं में संवेदना और प्रतिरोध दोनों साथ साथ चलते हैं, क्या यह आपके लेखन की सचेत रणनीति है?
0: ऐसा कुछ नहीं है, होता क्या है कि आप चीजों को देखते हैं, जब आप किसी मान लीजिए कोई खास स्थिति को देख रहे हो, कोई अपंग है मान लीजिए जो नहीं चल सकता है, उसको चलने की मदद नहीं मिल रही है और लोग उसकी मदद नहीं कर, ये जब आप देख रहे हैं तो इससे आप जो अर्थ निकाल रहे हैं और जो जिस तरह से उसको आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं या जिस तरह से आप उसको बदलना चाहते हैं, ये सारी प्रतिक्रियाओं को आप एक लेखक के रूप में लेना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपकी दृष्टि संवेदनशील है, आप अगर मानवीय हैं, तो आपको जो भी तकलीफ दूसरे आदमी की होगी आप उससे जरूर अपने को आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वैसे मेरे ख्याल से लेखक होना एक अतिरिक्त जिम्मेदारी हो सकती है, मतलब एक आदमी होने के कारण, ह्यूमन बीइंग होने के कारण हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो भी हमसे कमजोर हो, जिसको जरूरत हो, उसकी मदद करें।
1: पंकज जी आज के समय में कहानी और उपन्यास के स्वरूप में आप क्या परिवर्तन महसूस करते हैं इस बदलते हुए समय में?
0: देखिए हो क्या रहा है कि कहानी का जो महत्व है, वो कहानी चूंकि बहुत छोटे दायरे में चीजों को देखने की कोशिश करती है, तो मेरे ख्याल से ये कहानी की जगह टेलीविजन, रेडियो, जो और जो एंटरटेनमेंट के माध्यम है उन्होंने ले ली है। अब जो माध्यम बचता है वो बड़े नैरेटिव में बचता है, वो उपन्यास है। अब उपन्यास इसलिए शायद मेरे ख्याल से कहानियों में अब उतना लेखन नहीं हो नजर आता है मुझको, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक और बात भी है, जो श्रव्य या दृश्य माध्यम है उनकी अपनी सीमा है, उनमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और वो जो कह रहा है वो आप पे यथावत, क्योंकि वो दृश्य आपके सामने एक तरह से साकार है, तो वो पूरी तरह आप पे छाए रहे, जो भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी वो बना रहा है उसको, या एक्टर मेरा मतलब एक्ट कर। लेकिन जो रचनात्मक है, जो लिखना है, उसमें यह है कि लेखक जो लेखन के साथ यह है कि आपको जो लिखने में कहा जा रहा है उसको अपने दिमाग में, अपने अपने चेतना में, अपनी संवेदना में एकाकार करना है, उससे तालमेल बैठाना है और उसको उस तरह से दुनिया को समझने की कोशिश करनी है। तो वो जो है, जो इन्वॉल्वमेंट का लेवल है, सेंसिटिविटी का लेवल है, वो डिफरेंट है, तो वो ज्यादा सक्रिय है, वो एक तरफा नहीं है। ये इसका वो महत्व यह है।
1: बहुत सारी खट्टी मीठी यादों के साथ आकाशवाणी का आपका सफर रहा है पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आकाशवाणी का धन्यवाद।
2: पंकज बिष्ट और विशाल पांडे का ये संवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, क्या वो उस जिंदगी से जुड़ा है जो हमारे आसपास सांस ले रही है। हर दौर में साहित्य को एक नई पीढ़ी, एक नई ऊर्जा की जरूरत होती है और ये काम आकाशवाणी और साहित्य अकादमी जैसे संस्थान लगातार करते चले आ रहे हैं। हमारी अगली प्रस्तुति सृजन की अगली पंक्ति में सुनते हैं विकास दवे, निदेशक मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से चंद्रशेखर शर्मा की बातचीत।
3: हमारे साथ हैं लब्ध प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दुबे। सर
4: आज बहुत अच्छा लग रहा है और आकाशवाणी के इस पटल पर विशेष करके मुझे इस बात को लेकर के बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है कि चूंकि आकाशवाणी और साहित्य समाज ये एक ही परिवार के दो हिस्से हैं।
3: अक्सर रेडियो को हम बोलते हैं एक दृष्टिहीन कला, ब्लाइंड आर्ट। और अज्ञेय जी ने कहा है कि रेडियो ने साहित्य में श्रव्य बिंबों की नई दुनिया रची है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या विचार श्रृंखला इस बारे में कहती है।
4: अज्ञेय और मुक्तिबोध दोनों को हमको स्मरण करना चाहिए।
3: बिल्कुल।
4: और लगभग दोनों ने समान धर्मी विचार व्यक्त किए थे, विशेष करके आकाशवाणी के इस माध्यम को लेकर के।
3: जी।
4: उससे पहले तक रंग कर्म और नाटक विधा, ये चूंकि दृश्य विधा के अंतर्गत आया करते थे। जब आकाशवाणी का प्रणयन हुआ उसके पश्चात रेडियो रूपक जैसे शब्द समाज ने सुने।
3: जी।
4: और रेडियो रूपक ने दरअसल साहित्य क्षेत्र में इन मान्यताओं को एक प्रकार से आश्वस्ति दी, यदि आप आंखों के सामने दृश्य उपस्थित न भी करें तो भी केवल स्वरों के उतार चढ़ाव से, स्वरों का जो पूरा भाव भंगिमाएं अभिव्यक्त करने का जो सौष्ठव है, उसके माध्यम से भी एक पूरे के पूरे नाट्य विधा को आप स्थापित कर सकते हैं।
3: शब्द चित्र
4: अद्भुत, वो शब्द चित्र के ही माध्यम से एक प्रकार से। और सबसे बड़ी बात ये कि आकाशवाणी ने जिस ढंग से भाषा को अपने साथ सहेजने का प्रयत्न किया, भारतीय समाज में जो आक्रांताओं का जो युग था, उस औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आने के लिए और विशेष करके हम सब पर पड़ा हुआ जो भाषाई प्रभाव था, किसी शब्द की, वाक्य विन्यास की, व्याकरणगत वाक्य विन्यास की, उसमें निश्चित तौर पर एक वैक्सीन का काम किया है आकाशवाणी ने।
3: साहित्यिक शुचिता बनाए रखते हुए मर्यादित और सुगम भाषा के माध्यम से साहित्य को रेडियो ने जन जन तक पहुंचाया है। इस संदर्भ में सर विष्णु प्रभाकर जी को हम याद करते हुए एक बात कहना चाहेंगे कि रेडियो ने साहित्य में संवादात्मक रूप को निखारा है। हम इस संदर्भ में सर आपके विचार जानना।
4: स्वाभाविक रूप से साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का काम आकाशवाणी ने सर्वाधिक किया ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि हमारे यहाँ पर साहित्य क्षेत्र में दो शब्द प्रचलन में आते हैं, लोक और शास्त्र, तो शास्त्रीय अवधारणाओं को लोक तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आकाशवाणी ने किया है। और विशेष करके ये जो साहित्य की जो भिन्न भिन्न विधाएं हैं जिनसे सामान्य जन को परिचित कराने का काम किया, इसके साथ साथ मुझे लगता है कि साहित्यकारों को भी परिचय दिलाने का काम आकाशवाणी ने बड़ी मात्रा में किया है। तो ये जो साहित्य जगत को लोक से जोड़ना, लोक को साहित्य से जोड़ना और उन सबके बीच में सेतु का काम करना, और ये सब करते हुए व्याकरण भी सिखा रही है आकाशवाणी, भाव पक्ष भी समझा रही है। आप देखिए, चाहे हम लोगों को कई बार लगता होगा कि वे जब सी रामचंद्र की बात करते हैं, हमारे जो उद्घोषक होते हैं, वो जब कहते हैं कि भरत व्यास ने कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया है, इंदिवर ने इस गीत में ऐसा ऐसा हुआ, या किशोर दा ने गाते समय इस शब्द को इस तरह से गाने की कोशिश की, लेकिन फिर गीतकार वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा नहीं, इस शब्द का उच्चारण भोजपुरी में ऐसा होता है, अवधी में ऐसा होता है, इसलिए आपको इस ढंग से करना है। तो ये जो सिखाने का क्रम था, ये मुझे लगता है कि आकाशवाणी एक प्रशिक्षक की भूमिका में रही है समाज में साहित्य और व्याकरण और भाषा की दृष्टि से।
3: जी। अमृतलाल नागर जी का सर एक कोटेशन है कि रेडियो जनमानस तक साहित्य की पहुंच का सबसे सशक्त माध्यम है। क्या आप मानते हैं सर कि रेडियो ने साहित्य को लोकधारा से जोड़ा?
4: तकनीकी रूप से इस बात को हम इस दृष्टि से भी स्वीकार कर सकते हैं कि रेडियो अभिजात्य वर्ग की पहचान तो था ही। आज यदि हम अनुभव करते हैं कि आज हमारे ड्राइंग रूम में बड़े बड़े थिएटर्स बना करके लोग बैठे हैं और एक दीवार के आकार के टेलीविजन सेट लगे हुए हैं, कमरे के चारों कोने में स्पीकर लगे हुए हैं, उस स्थिति से निकलने वाले लोगों को शायद ये कल्पना भी नहीं होगी कि आकाशवाणी या रेडियो को सुनने के लिए एक जमाने में लाइसेंस लेना पड़ता था। मैंने आकाशवाणी के 50 वर्ष जब हुए थे तब एक लेख लिखा था और उस लेख में मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि आकाशवाणी की भले ही वह यात्रा इतिहास रही हो, लेकिन आकाशवाणी का आज हमको क्या दिखाता है? आज हमको दिखाता है कि खेत में हल जोतता हुआ किसान जो है, वह दोनों बेलों की घंटियों की आवाज के बीच में, वो जो दोनों बेलों के कंधे पर जुआ रखा है, उस जुए के सेंटर में रस्सी से बांध करके एक रेडियो लटका करके रखता है, और खेत में अनाज बोते हुए भी, बीज बोते हुए भी, वो आकाशवाणी के माध्यम से सुरीले गीत सुन रहा है, देश भर की खबरों से अपने आप को जोड़ रहा है। और इतना ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कृषि के क्षेत्र में जिस तरह से जानकारियों का प्रदाय का काम आकाशवाणी ने किया है, वो तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंत्योदय की पराकाष्ठा मानता हूं मैं इसको। अब कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा इतने सारे जो शोध कार्य संपन्न होते हैं, उन्हें एक अनपढ़ किसान तक पहुंचाने का काम भी अगर कोई कर पाता है तो वो निश्चित तौर पर आकाशवाणी कर रही है।
3: हम आपसे सर जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी के मंच ने किस प्रकार से साहित्यकारों की पहचान और लोकप्रियता में श्रीवृद्धि करने में अपना योगदान दिया है।
4: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हों, महादेवी वर्मा जी हों या सुभद्रा कुमारी चौहान हों, हम देखते हैं कि इन सब रचनाकारों ने जिस ढंग से आकाशवाणी को अत्यंत श्रद्धा के साथ अपनाया और उनकी उन कालजयी रचनाओं को अगर जनसामान्य ने कंठस्थ किया, मुखाग्र किया, तो उसमें निश्चित तौर पर आकाशवाणी का एक बड़ा हाथ था। अमिताभ बच्चन जी चूंकि सदी के महानायक कहलाते हैं और उन्होंने जब पहली बार मधुशाला को अपने स्वर देकर के और एक कंपनी के माध्यम से एक एल्बम तैयार किया था। तब एक पत्रकार ने उनसे पूछा था, तो उन्होंने यही कहा था कि भाई इस काम को आकाशवाणी बहुत पहले कर चुकी है और विशेष करके इसमें मैं आंचलिक साहित्यकारों को पहचान दिलाने के काम में आकाशवाणी का जो अवदान है वो तो अद्भुत है।
3: इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी ने साहित्य की नई विधाओं को भी जन्म दिया है, जैसे रेडियो रूपक हुआ, रेडियो नाटक हुआ, और आकाशवाणी का एक गर्विला सफर रहा है जिसमें भारत भूषण अग्रवाल, अमृतलाल नागर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और पीएल देशपांडे जैसे ये साहित्यकारों ने काम किया है यहाँ पर और इन नई विधाओं के उन्नयन में अपना योगदान दिया है।
4: चाहे वो कृषि जगत में नंदाजी भेरा जी के माध्यम से कृष्णकांत जी दुबे, नरहरी पटेल जी, स्वतंत्र कुमार जी ओझा को मैं इस समय स्मरण करना चाहता हूँ, ये एक पूरी की पूरी जो पीढ़ियां थी उन पीढ़ियों ने अपने आप को एक प्रकार से होम किया। उन्होंने अपने जीवन का कण कण और क्षण क्षण लगा करके इस आकाशवाणी की विधा को इतना उदात्त स्तर पर पहुंचाया कि लगता है कि सचमुच इन लोगों ने एक तप की तरह इस काम को किया था। और जिन नई विधाओं के संदर्भ में आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आकाशवाणी के माध्यम से नाटक से इतर भी अगर हम चलें तो जिसे कथा कथन की शैली को विकसित करना, कहानी लेखन भले ही साहित्य का विषय होगा लेकिन कथा कथन साहित्य का विषय नहीं है, वो एक प्रकार से कला का विषय है। लेकिन साहित्य और कला को सेतु बना करके उन्होंने जिस ढंग से कहानियां पढ़ना प्रारंभ की, मैं इस दिशा में कई बार इस बात का उल्लेख भी करता हूं कि सुबह का जो चिंतन आता है, चिंतन का प्रत्येक एपिसोड जो होता है वो अपने आप में ललित निबंध होता है एक प्रकार का, और इस ललित निबंध को सुनना यानी केवल वो कानों को सुख देता है, मानस को सुख देता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल आत्मा भी उसमें तृप्त हो जाती है। मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि इसको लेकर के आकाशवाणी के इस अवदान को लेकर के जितना कहा जाए उतना कम होगा। आकाशवाणी के जो संग्रहालय है, आर्काइव्स है, उनमें इतनी अभूतपूर्व सामग्रियां हैं। अगर मैं चाहूं कि किसी युग में लता जी मुंबई के आकाशवाणी स्टूडियो में बैठ करके केवल अभ्यास कर रही थी और मशीन पर बैठे हुए उस समय के तकनीशियन ने रिकॉर्ड कर लिया उनको, केवल अभ्यास की वाणियों को या आपस की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और वो सब के सब आज, चाहे वो शुभा मुद्गल हो, चाहे हरिप्रसाद चौरसिया जी हो, चाहे छन्नू मिश्रा जी हो, उन सब की सामान्य बातचीत जो कि ऑफिशियली आकाशवाणी पर कभी प्रसारित नहीं हुई, लेकिन वो सब चीजें आज भी हमारे पास उस मैग्नेटिक टेप पर रिकॉर्डेड हैं। और मुझे कहते हुए गर्व है कि वर्तमान में प्रसार भारती ने अपने ऐसे सारे संग्रहालयों को एक प्रकार से, चूंकि जो क्लाउड है वो क्लाउड को मैं आधुनिक युग का कालपात्र ही मानता हूं, वो अब अक्षय भंडार हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए जो ओपन फॉर ऑल कर दिया है, मैं तो कई बार उस आर्काइव पर जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं घंटों उससे बाहर ना हूं। तो मुझे लगता है कि उसका लाभ हम सब लोगों को लेना चाहिए और विशेष करके साहित्य क्षेत्र के साहित्यकारों से मैं आग्रह करूंगा, केवल नवोदित पीढ़ी से नहीं, पुरानी पीढ़ी के साहित्यकारों से भी, कि वे कभी माखन दादा को, वीरेंद्र मिश्र जी को, महादेवी वर्मा जी को, इन सबको उनके मूल स्वर में सुने तो हमारे ध्यान में आता है कि उनकी सोच कितनी उदात्त थी, कितने उदार हृदय से वो साहित्य की समीक्षाएं किया करते थे। आज जिस ढंग से एक दूसरे को प्रशंसित करने का काम हम लोग कर रहे हैं, उस युग में आकाशवाणी हमारे लिए एक अच्छा प्रशिक्षक इस मामले में भी हो सकता है।
2: सृजन की अगली पंक्ति, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक विकास दवे से चंद्रशेखर शर्मा की ये बातचीत आपने अभी सुनी, सौजन्य आकाशवाणी भोपाल। और अब स्मृति नमन, वो जो चले गए लेकिन अपने शब्दों से, अपनी कृतियों से हमेशा के लिए जी गए। आज हम याद कर रहे हैं ऐसी ही तीन महान विभूतियों को, जन कवि नागार्जुन, जिनकी कविता धरती की तरह थी, ठोस, उर्वर और सच्ची, जो हाशिए के इंसान की आवाज बने। काजी नजरुल इस्लाम, जो बांग्लादेश के राष्ट्र कवि भी हैं, जिनकी विद्रोही कविता ने एक पूरी पीढ़ी को जगाया। मुद्रा राक्षस, हिंदी के वो फक्कड़ रचनाकार जिनके कलम ने कभी सत्ता से समझौता नहीं किया। नाटक, उपन्यास, आलोचना, हर विधा में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। नागार्जुन, काजी नजरुल इस्लाम और मुद्रा राक्षस की ये त्रयी हमें याद दिलाती है कि साहित्यकार मरता नहीं, वो अपनी रचनाओं में बार बार जन्म लेता है। इस त्रयी को साहित्य भारती का विनम्र स्मृति नमन। इसी के साथ साहित्य भारती का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। अगली बार फिर मिलेंगे नए शब्दों के साथ, नई संवेदनाओं के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, सोचते रहिए। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज सुनते हैं ऋषिकेश गांगुली जी का शास्त्रीय गायन।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ वोकल रिसाइटल बाय ऋषिकेश गांगुली।
0: पुणे के एक संगीत प्रेमी परिवार में जन्मे ऋषिकेश जी को 5 वर्ष की अल्पायु में ही अपने पिता श्री पुरुषोत्तम गांगुली से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई। इसके पश्चात उन्होंने डॉक्टर विकास कशालकर और पंडित यशवंत बुआ जोशी से 8 वर्षों तक ग्वालियर घराने के गायकी को बारीकियों से सीखा। इसके बाद ऋषिकेश जी ने ITC संगीत रिसर्च अकादमी की प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति प्राप्त की और कलकत्ता में ग्वालियर, जयपुर, आगरा घराने के दिग्गज पंडित उल्लास कशालकर के सानिध्य में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 6 वर्षों तक गहन प्रशिक्षण लिया। उन्हें बनारस घराने की विदुषी गिरिजा देवी जी से ठुमरी, दादरा और कजरी जैसे उपशास्त्रीय रूपों को सीखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ।
1: Born into a music loving family in Pune, Rishikesh was initiated into vocal music at the tender age of 5 by his father, Shri Purushottam Gangurde. He later received extensive training for 8 years from Dr. Vikas Kashalkar and Pandit Yashwant Bua Joshi, learning the intricacies of the Gwalior Gharana. Thereafter, Rishikesh received the prestigious ITC Sangeet Research Academy scholarship, coming under the tutelage of the stalwart Pandit Ullas Kashalkar. For 6 years, he underwent intense training in the pure Gharana Gayaki of the Gwalior, Jaipur and Agra traditions. He was also fortunate to learn semi-classical forms like Thumri and Dadra from the legendary Vidushi Girija Devi of the Banaras Gharana.
0: Rishikesh Gangurde, Akashwani ke A Shreni ke Gayak Kalakar hai. उनकी गायकी में संगीत का सौंदर्य, भव्यता और माधुर्य झलकता है जो सीधे श्रोताओं के मन को छू लेता है और यही उनके गायकी की विशेषता है। गायन के साथ साथ वे एक कुशल तबला वादक भी है और उन्होंने कई कार्यक्रमों में अपने गुरु पंडित उल्लास कशालकर के साथ तबले पर संगत की है। वर्तमान में वे भारतीय विद्यापीठ पुणे के स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है।
1: ऋषिकेश गांगुर्डे इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड इज स्टेडली कार्विंग अ निश फॉर हिमसेल्फ एज अ घरानेदार वोकलिस्ट हु ट्राइज टू गिव एक्सप्रेशन टू द ब्यूटी, ग्रैंडियर एंड स्वीटनेस ऑफ म्यूजिक सो एज टू टच द ह्यूमन हार्ट एंड दिस इज द हॉलमार्क ऑफ हिज सिंगिंग। बियॉन्ड हिज वोकल प्रोवेस, he is an accomplished tabla player and has even accompanied his guru Pandit Ullas Kashalkar in various concerts. Currently, he serves as an assistant professor in the School of Performing Arts at Bharati Vidyapeeth Pune.
0: आज के कार्यक्रम में ऋषिकेश गांगुली जी को तबले पर संगत कर रहे हैं आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं मकरंद खरवंडीकर। अपने गायन का आरंभ वे कर रहे हैं राग बिहागड़ा से। विलंबित रचना 3 ताल में निबद्ध है। बोल है प्यारी पग होले होले। इसके पश्चात वे 3 ताल में ही 2 द्रुत बंदिशें प्रस्तुत करेंगे, निरख छब देखत और रैन दिन कैसे कटेरी।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय श्री आशय कुलकर्णी एंड ऑन द हारमोनियम बाय श्री मकरंद खरवंडीकर। Rishikesh begins his vocal recital with Raag Bihagda. The Vilambit composition is set to Teen Taal. This will be followed by Druta compositions in Teen Taal.

0: ये था राग बिहागड़ा।
1: That was राग बिहागड़ा।
0: ऋषिकेश गांगुड़े अपने गायन का समापन राग बागेश्री से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है, जिसके बोल है लाल मनावे। गायन का समापन वे तीन ताल की द्रुत बंदिश पहरवा घर आओ से करेंगे।
1: नेक्स्ट ऋषिकेश गांगुड़े विल प्रेजेंट राग बागेश्री। द विलंबित ख्याल इज सेट टू तिलवाड़ा ताल। ही कंक्लूड्स द रागा विथ द्रुत कंपोजिशन इन तीन ताल।

0: राग बागेश्री अभी आपने सुना।
1: That was राग बागेश्री।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप ऋषिकेश गांगुलडे जी का शास्त्रीय गायन सुन रहे थे। उन्हें तबले पर श्री आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर श्री मकरंद खरवंडेकर जी ने संगत की। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी पुणे केंद्र के स्टूडियो में किया गया और यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: You are listening to a classical vocal recital by Rishikesh Gangurde in the National Program of Music. He was accompanied on the tabla by Ashay Kulkarni and on the harmonium by Makaranda Kharvandikar. This program was recorded at the studios of Akashwani Pune and this program was broadcast from Akashwani Delhi.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की।

0: प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। इस देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister, on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P. K. Mishra and Shaktikant Das, also attended the meeting. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils, including palm oil, palmolin, soybean oil, sunflower oil, mustard oil, groundnut oil, sesame oil and rice bran oil. The approved pack sizes are 200 gram, 500 gram, 1 to 5 kilograms, 15 kilograms and 20 kilograms. The ministry said this will also help consumers make more informed and transparent purchasing decisions. It added that the initiative will benefit the edible oil industry by bringing greater uniformity in packaging practices. Railway Minister Ashwini Vaishnaw has said that resolving long-pending railway projects in West Bengal will usher in a new era of railway infrastructure development in the state. Addressing a joint press conference with Chief Minister Subhendu Adhikari at Nabarna in Kolkata, Mr. Vaishnaw said that 14,205 crore rupees have been allocated to West Bengal in the railway project for 2026-27. He said 10 Amrit Bharat stations have already been completed in the state, while 9 Vande Bharat Express trains and several Amrit Bharat trains are currently in operation.
4: 60 new generation trains we are planning. In coming 4 to 5 years, these trains will be inducted and Kolkata Metro will get a totally new generation of trains. As the work gets completed on Chingrighatta area, other sections, a lot of improvement will happen in the mobility in Kolkata.
3: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said India and Nepal collaborate closely to maintain security along their long and uniquely open border, and the two countries have always stood by each other in times of need. In his opening remarks during a meeting with his Nepalese counterpart Shishir Khanal in New Delhi this evening, Dr. Jaishankar said India and Nepal share a very special relationship. The External Affairs Minister said the bilateral ties have steadily developed in areas like trade, commerce, investments, energy, development, cooperation, education, disaster response and culture. Mr. Khanal said India is Nepal's most important partner and Nepal has placed highest priority to India. He said Nepal and India are not merely two countries but stakeholders of a proud ancient civilization. He thanked India for fuel and fertilizer supply amid the West Asia crisis. Tensions across West Asia escalated sharply on Saturday after Iran launched ballistic missiles toward United States military facilities in Kuwait and Bahrain, prompting a coordinated air defense response by Gulf states and American forces. According to the U.S. Central Command, Iran fired 7 ballistic missiles following U.S. strikes on Iranian coastal surveillance and radar installations at Keshm Island and Goruk near the Strait of Hormuz. Initial assessments indicated that 6 missiles were intercepted while a 7th failed to reach its target. There were no immediate reports of casualties among U.S. personnel. In tennis, Russian eight-seeded Mira Andreeva won her maiden Grand Slam title after getting the better of Maya Szwalanski of Poland in straight sets in the women's singles final of the French Open. And that is the end of this news bulletin.
5: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारी सभा के प्रसारण अब यहीं पर समाप्त होते हैं। कल प्रातः 5:55 पर अपनी प्रातःकालीन सभा में पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए